भारत हर भाए हर भारत महला पहला सिमर रुख सरायरा हत दीर्घत मुच जया व्यास कर जाय रस कित फल फिके फुल बक बके कम नया पत मिठत नीवी नानका गुण चंगे तत सबको निवे आपको पर को निवे ना कोए तर तरा जू तो लिया निवे सगोरा हो अपराधी दुना निवे जो हम तमर गाए शीस बनाया क्या थी है जारे देख सुधे जाहे महला पहला पुस्तक संध्या बादन सिल पुसुब दुस्मादन मुक्तूर विभुखन सारं प्रपाल ते हाल विचारं गलमाला बिलकलला तुम तो तोहती वस पाटन जे जानस परमं करमं सफो कुन हिचो करमं कहो नानक ने जो ध्यावे विन सत गुरुवाट न पावे कोड़ी कपड़ू सहवना छड़ दुनिया

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी के फतेह श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जैसे डिठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे कर नौ ने दयावै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके। बोलो जे वाहे गुरु। बोलो जे पंजा प्यारिया चौहान साहिबजादिया चालिया मुगतिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अनडिड कीता। तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके। खालसा जे बोलो जे वाहे गुरु। बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत सीस दिते। बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चढ़ाए गए। गुरुद्वारिया दी सेवा ले कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी कैसा सुहासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके। खालसा जे बोलो जे वाहे गुरु। बोलो जे पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके। बोलो जे वाहे गुरु। बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे। चेते आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचया रियायत। तेग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले। बोलो जे वाहे गुरु। बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान। श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकिया झंडे बोंगे जुग जुग अटल। धर्म का जय।

गर्मी हमेशह तव्हां भगत करण साहब जन जे सदाबहार आवाज़ में कलाम ॿुधंदा, तंहिंखां पोइ तबसरो पेश कंदो ऐं पोइ प्रोग्राम नशर कयो वेंदो। सुञाण तोखे ख़बर कहिड़ी, ख़ासि ख़ासि ख़बरूं प्रोग्राम जे आख़िर में ब्रॉडकास्ट कयूं वेंदियूं। इहा त असांजी प्रोग्राम जी डिटेल्स तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस ॿुधी रहियो। हींअर अचो त भगत कोराम साहब खे ॿुधूं।

करम साहब जन जी सदाबहार आवाज में कलाम दे रहे हैं आकाशवाणी जी सिंधी सरस आए हिंसर पेश है तबसरो तजारत के काबीना वजीर श्री पीयूष गोयल ग्रुप वह व्यापार वजीर जी गडजानी में अमेरिका में हिस्सों वरतो तई में अड़ावती कोत ए पैदावार के बधाण ते उन गाल चाहे थे मुल्क के देश के उसूल ते तंखा अलावा आलमी सप्लाई चेन्स में जोरी पोरत के खत्म कर इजलास के खत्म थे वक्त उन खिताब कर अडावती कोत ए प्रोडक्शन ते गालाईंदे श्री गोयल चयो त भारत हिन वक्त आलम की तेज रफ्तार ते उभरंदड़ इक़्तिसाद आहे तंहिंमें ॾेई तलब असांजी इकानमी 1.4 बिलियन माण्हुनि जी घुर्जनि खे पूरो करे रही आहे इन खां अलावा पैदावार वैल्यू चेन्स तयारु करे रही आहे जंहिंसां तयारु थियल शयूं आलमी सप्लाई चेन्स में मैसर कराए थी सघजनि हुन चयो त भारत जी पैदावार सघ ॾेई ऐं आलमी घुर्जनि खे पूरो करे रही इन खां अलावा संदसि ग्रुप बी सेटेलाइट दौरान ॼातल सेक्टर्स खे तंखे पिणु पूरो करे रही आहे श्री गोयल चयो त भारत मेंबरनि जे गणतियुनि खे ध्यान में थो रखे ख़ासि करे वापार सां वाबस्ता की कंहिं इक़्तिसादतूं पंहिंजूं शयूं ॿियनि मुल्कनि ते डम थियूं कनि या ज़ोरे थोपनि थियूं हुन चयो त अहिड़नि गणतियुनि खे WTO सां वाबस्ता कारवाइनि ज़रिए हल कयो पियो वञे ज़ोरे माल थोपींदड़नि जे मथां डलूं खाइणी पियूं वञनि ऐं हुननि जो वक़्तु वक़्तु जाइज़ो वरितो पियो वञे हुन चयो त हुनरी कोत पंहिंजो पाण में मुदो कोन आहे पर जोग्राफ़ी पैदावार जी जोग्राफ़ी कॉन्सेंट्रेशन सां परेशानी थिए थी हुन चयो त प्रोडक्शन जे ऐं सप्लाई चेन जे फैलाव सां काई तकलीफ़ कोन आहे पर WTO क़ाइदनि खे नज़रअंदाज़ कंदे ॿियूं कारवाइयूं जेके आहिनि से परेशानियूं पैदा थियूं कनि चाहे थे मुल्क के उसूल से गालाईंदे श्री गोयल चयो त भारत जो ग्रुप वी मेंबरन से व्यापार पारदर्शी है बिना ब्याई वारो है इन अलावा कायदे कानून ते निजाम आधार ते मदार रखे तो चाहे थे मुल्क जो जो दर्जो है सो इन शर्त की गारंटी है इनमें साग शर्त नंढन ए वडन व्यापारियों ते लागू थियन था सेशन जे आख़िर में सप्लाई चेन से ॻाल्हाईंदे श्री गोयल चयो त भारत जी वचनबद्धता आहे कि ज़ोरी पोरत खे पूरी तरह सां ख़तम करण हुन चयो त असांजे आइन जो Article 23 ज़ोरी पोरे वठण जे ख़िलाफ़ आहे इन ॾिस में सुप्रीम कोर्ट जो पिणु फ़रमान आहे हुन चयो त भारत ILO में दुरुस्ती आंदी आहे कन्वेंशन 39 ऐं 105 में ऐं July 2025 में पंहिंजे पढ़े वापारी पॉलिसी में पिण दुरुस्ती आंदी आहे श्री गोयल ग्रियर ऐं अमेरिका जे एम्बेसडर जा शुक्राना मञिया जो ग्रुप वी सरबराही दौरान मुनासिब इंतज़ाम कया विया हुआ हुन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जे लफ़्ज़नि खे यादि करायो त मुद्दा पंहिंजे पाण में हल कोन थींदा आहिनि पर वेही करे दूर कया वेंदा आहिनि गॾजाणियूं थींदियूं आहिनि ऐं सभई गॾिजी करे ॻाल्हियुनि ज़रिए हिननि खे दूर करे सघंदा आहिनि वज़ीर भारत जी वचनबद्धता खे दोहिरायो त क़ाइदे कानून ते आधारित फेयर बराबरी वारो गैर ब्याई पारदर्शी खुलियल समय शुमार कंदड़ ऐं बहुतरफ़ी वापारी सिस्टम आलमी वापार जमायत जे मर्कज़ में आहे गॾजाणी जे साइलेंस ते श्री गोयल घणनि वापार ऐं सैर सफ़र जे वज़ीरनि सां ॿिए तरफ़ियूं गॾिजाणियूं कयूं तंहिंमें अची थो वञे ऑस्ट्रेलिया सऊदी अरब इन खां अलावा फ्रांस कोरिया ऐं कैनेडा तव्हां तबसरो ॿुधी रहिया हुआ

سوال توکي خبر کړي سمي پروگرام خاني کي رواني کي سوند ۾ هڪ دفعو بيهر کان حاضر ٿي آهيان. اسان جي پاڙيسري سنڌ ۾ پولوشن سان وابستہ انوائرمنٽ سان وابستہ جيڪي خرابي هلي رهيون آهن تنهن دھيان چڪايو ويو آهي سنڌ ايڪسپريس ۾ شايد ٿيل ايڊيٽوريل جنهن جو ٽائيٽل آهي شيشي جي بٽن جو زهريلو دونهن. ان ايڊيٽوريل ۾ لکيل آهي ڪي ماحولات سڄي دنيا ۾ هڪ گنڀير مسئلو آهي ऐं सभई मुल्क इन नतीजे ते पहुता आहिनि त गुज़िरियल सदीअ ऐं हाणोकी सदी में असां माहौल खे तमामु घणो नुक़सान पहुचायो आहे, जंहिं जे लाइ घणाई उपाउ वरिता आहिनि, से पिण घटि आहिनि ऐं अञा पिण घणा कदम खणी करे एनवायरमेंट खे बचाए सघिजे थो. पर हिते हिन देश में यानी असांजे पाड़ेसरी मुल्क में अहिड़ी का बि सूरत हाल ॾिसण में कोन पई अचे. माण्हुनि जी बहितरी लाइ कॉन्फ्रेंस ऐं सेमिनार थींदा आहिनि, पर अमली तौर ते कुझु थींदड़ ॾिसण में कोन ईंदो आहे, जंहिं करे माहौल ते गदलाण ॾींहों पटे वधे पई. सभ में माहौलियत खे बदिलण करण ते नाले मात्र बि ध्यानु कोन आहे. वणनि जे वाढी खां वठी करे ट्रैफिक जी गदलाण ऐं दूहे जे करे आम शहरी हलाक आहिनि. माहौल वधीक ख़राब थी रहियो आहे. सिंध में सिरनि जे भठनि मां जेको दूहो थो निकिरे सो पिण इंसानी हयाती लाइ ख़तरनाक आहे. इन्हनि भठनि में गंद कचरो साड़ियो वेंदो आहे, जेको इंसानी सिहत लाइ ख़तरनाक आहे. पर इन पासे कंहिं बि इदारे जो ध्यानु कोन थो वञे, न ई का सरकार रोकण लाइ उपाउ पई वठे. एडिटोरियल में अॻिते लिखियलु आहे की सिरनि जे बटन खां सवाइ हाणे शीशे जे बटन वसीले गदलाण पखिड़िजी रही आहे. ताज़ो रिपोर्ट में ॿुधायो वियो आहे त हैदराबाद बहरारीअ में गैर कानूनी शीशे जूं भठियूं क़ाइमु कयूं वियूं आहिनि, जंहिं करे शहरनि में बीमारियूं वधी वई रहियूं आहिनि. पण होसरे में क़ाइमु कयल शीशे जे बटन मां निकरंदड़ दूहों गदलाण फैलाए रहियो आहे. खंघ, साह खणण में तकलीफ़, दम ऐं अखियुनि में साड़े समेत ॿियूं बीमारियूं फैलजी रहियूं आहिनि. दूहों ऐं बदबूदार गैसूं खारिज थियण सबबि घर अंदरि माण्हुनि जो रहणु ॾुखियो थी वियो आहे. शहरनि घुर कई आहे त भठियुनि जो मुआइनो कराए कानून हैसियत ऐं माहौलियात इजाज़त नामनि जी जांच कराई वञे. अॻिते लिखियलु आहे की का बि इंडस्ट्री लॻाइण या रिथा शुरू करण अॻु में पहिरीं त सर्वे कई वेंदी आहे ऐं बचावदार कदम खया वेंदा आहिनि, पर हिते अहिड़ो कुझु बि ॾिसण में नथो अचे, जंहिं करे आम माण्हू परेशान आहे. सरकार जी ज़िमेवारी आहे त उन्हनि माण्हुनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जेके गदलाण खे फैलाइनि था ऐं बीमारियुनि खे पिया जनम ॾियनि. पर हिते कंहिं बि क़िस्म जो कानून ॾिसण में न पियो अचे. नतीजनि आम माण्हू भठियुनि मां निकिरंदड़ दूहे सबबि बीमार थी रहिया आहिनि, जंहिं करे सननि मईशत में योगदान ऐं मुल्क जे तरक़ीअ में योगदान न जे बराबरि थो थिए. तव्हां सिंध एक्सप्रेस में शाया थियल एडिटोरियल ॿुधी रहिया, जंहिंजो टाइटल हो शीशे जे बटन जो ज़हरीलो दूहों.

पेशेंट खास खास खबरों भारत स्विट्जरलैंड पंजन एकड़ नामन से सही कई वे तैमे अची तो वे हमदरफत टेक्नोलॉजी में तावन के मजबूत करण बुनियादी ढांचो ए मोबिलिटी तंखा अलावा बचाव सहकार ए न्यूक्लियर एनर्जी में सहकार के ऊनो करण नवन वजन के गोलण पारे मामले के वजीर डॉक्टर एस जयशंकर भारत की बहु तरफी हालत खेस मुख्य आलमी ताकतन से ठहकाए थी हले तमें अची तो वे अमेरिका रशिया ए चीन श्री पीयूष गोयल अमेरिका के व्यापारी अगुणन से गाल भारत में सीड़प ए भाईवारी के ऊनो बणाया वे यमन की आलमी मंजा मिलल सरकार होती हलचल के खिलाफ वसीय फौजी कार्रवाई शुरू कर रखी है। मर्दन के क्रिकेट में भारत जो मुकाबलो वेस्टइंडीज से सदन पंजन मैचन के टी ट्वेंटी इंटरनेशनल सीरीज में अज लखनऊ में वेस्टइंडीज से थन्द

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरा हींअर असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थी रहियो आहे. वरी अवां सां मुलाक़ात थींदी सुभाणे सुबुह जो, यानी के भारतीय वक़्त मुताबिक़ 6:30 अॻे तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त सदाई कर.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। विधानसभा की 5 सीटों में तमिलनाडु की मदुरार्दकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टा चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट शामिल हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी आज मतदान जारी है। मतगणना 9 अक्टूबर को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा

0: चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों ने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA देशों के बीच एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया, जो यूरोप के किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ भारत का पहला FTA है। यह इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, जॉब्स और साझा समृद्धि का एम्बिशियस ब्लूप्रिंट भी है। इसे हम अगले 15 वर्षों में भारत में $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 10 लाख डायरेक्ट जॉब के लक्ष्यों को साकार करेंगे।
0: श्री पहमला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहमला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000 एरो इंजन के हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये कार्यक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को दर्शाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। रक्षा मंत्री आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-1 का जलावतरण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप FSS-5 की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष रशद अल अलीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। पुरुष क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Polling has begun for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and 1 Lok Sabha seat in Assam. Voting is taking place at Madhuran Takam and Dharapuram assembly seats in Tamil Nadu, Thattanchavadi in Puducherry and Rajinagar and Nondigram in West Bengal. The lone Lok Sabha seat where voting is taking place is Naugaon in Assam. The counting of votes will be taken up on Friday. BJP has announced the name of 8 candidates for upcoming Rajya Sabha polls for Uttar Pradesh. Party has fielded Dharampal Singh, Radhakant Ojha, Prakash Pal, Vidyasagar Sonkar, Gopi Krishna Pandey, Priyanka Singh Rawat, Ram Pratap Singh Chauhan and Shruti Gangwar. The names were approved by the BJP Central Election Committee. Today is the last day for filing nominations for the biennial elections. Polling for the Rajya Sabha seats across Uttar Pradesh, Uttarakhand and by-election to a lone seat in West Bengal will be held on the 16th of this month. President Draupadi Murmu will be on a three-day visit to Himachal Pradesh from today. During the visit, President Murmu will attend the convocation ceremony at AIIMS Bilaspur as a chief guest and confer degrees to trainee doctors. The President will also travel to Manali, where she will visit the Hidimba Temple and the Atal Tunnel Rohtang tomorrow. Security measures have been stepped up in hotel areas along major roads and in the vicinity of event venues. Defence Minister Rajnath Singh will mark the delivery of the 2000 Aero engine by Korapur Division of Hindustan Aeronautics Limited in Odisha today. The Defence Ministry said the event will also highlight the establishment of a second production line for Shakti engines with an investment of over 200 crore rupees. The Defence Minister will also launch Fleet Support Ship 1, FSS-1, and lay the keel of Fleet Support Ship 5, FSS-5, at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam today. He will also inaugurate the upgraded Slipway 4 and 300-ton Goliath crane. India and Switzerland have inked 5 agreements following bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Swiss President Guy Parmelin in New Delhi yesterday. These agreements are on migration and mobility partnership, exchange of young professionals, promotion and collaboration on transportation technologies, mobility systems and infrastructure in identified areas, letter of intent between Department of Science and Technology and Swiss National Science Foundation, and implementation arrangement for cooperation in innovation, technology, transfer and entrepreneurship. In a joint press meet, Prime Minister Modi appreciated Swiss President Guy Parmelin's commitment to India-Switzerland relations. India has voiced support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirming its commitment to the welfare of the Afghan people at the 8th Moscow Format Consultations on Afghanistan hosted by Russia in Moscow. Indian delegation was led by Ambassador to Russia Vinay Kumar and Joint Secretary PAI Dr. M. Suresh Kumar. The consultations were attended by representatives from Russia, India, Iran, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan and Uzbekistan, with Afghanistan represented by Foreign Minister Amir Khan Mutaki. Belarus and Egypt participated as guests. The India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over parts of Kerala, Mahe, South Interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. IMD has also predicted thunderstorms with lightning and gusty winds over Jammu and Kashmir, Ladakh, Delhi, Punjab, Haryana, Chandigarh, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Odisha and West Bengal today. Meanwhile, the Met Department has said that the national capital is expected to witness very light rain or drizzle today and a few places accompanied with thunderstorms and lightning during afternoon or evening. In men's cricket, the first T20 international of the 5-match series between India and West Indies to be held in Lucknow today. The match will start at 7 p.m. IST. In China Open Tennis, Serbian Novak Djokovic has stormed into the men's singles final after Daniil Medvedev of Russia was defaulted during the semi-final clash in Beijing. The record 6-time champion was serving for the match at 7-5, 5-3, 15-15 when a ball rebounded off the back wall. Medvedev instinctively struck the ball, sending it into the crowd where it hit a spectator, resulting in his default. Djokovic has now reached his first ATP final since winning the title in Astana in 2022. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर. समय हुआ है सुबह के 7:10 लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आप सुनेंगे आस्था गोस्वामी के गाए भजन.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आपने सुना आस्था गोस्वामी से भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। समय हुआ है 7:33 और ये वक्त होता है गीतों भरे गुड मॉर्निंग का।

श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का गीतों भरे गुड मॉर्निंग में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कुसुम पवार, लेकर आई हूं बहुत सारे सुरीले गीत। लीजिए, एंजॉय कीजिए इस गीत को जो भी आप सुन रहे हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं गीतो भरी गुड मॉर्निंग। और कहते हैं ना दोस्तों कि हर सुबह जिंदगी हमें एक नया मौका देती है, कल जो नहीं कर पाए उसे आज करने का और जो अच्छा है उसे और बेहतर बनाने का। जी हाँ, इसीलिए हम सुनते हैं संगीत। संगीत जो होता है ना हमारे मूड को और बढ़िया कर देता है, हमारा पूरा दिन सुहाना हो जाता है। संगीत में वो जादू होता है जो पल भर में हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आता है। और कुछ पसंदीदा गीत सुनकर हम खुश भी हो जाते हैं, मन तरोताजा हो जाता है। और कभी कभी खूबसूरत गीत हमारी पूरी सुबह का मूड ही बदल देता है।

तो दोस्तों, यदि आप घर पे हैं तो चाय पीते हुए सफर की शुरुआत कीजिए। घर के काम कर रहे हो या ऑफिस आने की तैयारी कर रहे हो, जहां भी हो आप, बस जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग गीतों भरी।

जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से श्रृंगार हमारे व्यक्तित्व में खूबसूरती और निखार भर देता है, उसी तरह संगीत भी हमारी भावनाओं का श्रृंगार करता है। एक अच्छा धुन हमारे मन को सजा देता है, हमारी थकान दूर कर देता है और हमें उन खूबसूरत एहसासों तक ले जाता है जहां हम शायद हकीकत में कभी पहुंच भी ना पाए। वाकई संगीत की खूबसूरती ही कुछ ऐसी है दोस्तों कि हम बैठे बैठे उन जगहों तक पहुंच जाते हैं जहां शायद हकीकत में कभी ना जा पाए। कभी कोई गीत हमें बीते हुए समय में ले जाता है, कभी अपने ही खूबसूरत एहसासों से मिला देता है और कभी ऐसा लगता है जैसे हम सचमुच उन हसीन वादियों में घूम रहे हों।

जी हाँ दोस्तों, हंसी वादियों में घूमते घूमते अब जरा लौटते हैं उस खूबसूरत एहसास की ओर जहां कदम कदम पर संगीत सुनाई देता है। दोस्तों, कभी हवा की सरसहराहट में कोई गीत हमारे कानों में मधुर आवाज छोड़ जाता है तो कभी पायल की छनछन में संगीत का एहसास होता है। दोस्तों, संगीत भी ऐसा ही होता है, कभी हमें दूर हसीन वादियों में ले जाता है तो कभी हमारे कदमों की आहट को भी एक सुरीला धुन बना देता है।

दोस्तों, इस सुरीली मुलाकात के साथ अब वक्त आपसे विदा लेने का है। सुबह की खूबसूरत महफिल यही विराम देते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इन गीतों की मिठास आपके दिन भर साथ रहेगी। दोस्तों, आपसे मुलाकात फिर होगी इसी तरह किसी और दिन, नए गीतों और नई बात और नई सुबह और नई मुलाकातों के साथ। और हमारी मुलाकात तो आपसे होती ही रहती है, फिर कभी हम मिलेंगे आपके साथ, लेकिन आप तो रोज मिलते हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग में किसी न किसी से और अच्छे अच्छे गीत सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। 8 बजने को है, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम

0: दारापुरा विधानसभा सीटों, पुदुचेरी की ततान सावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नागांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। इन नामों को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव भी शामिल है। इन सीटों पर मतदान 16 अक्टूबर को होगा। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच कल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें प्रवासन, युवा पेशेवरों के आदान प्रदान, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कल नई दिल्ली में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामला के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
1: हम स्विट्जरलैंड की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भारत में बड़े लेवल पर निवेश करने और कैपेसिटी बिल्डिंग, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में भागीदारी के लिए आमंत्रित करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी सहयोग भी हमारी साझेदारी का एक मजबूत स्तंभ है। मुझे बहुत खुशी है कि हम जल्द ही हेल्थ, क्लीन एनर्जी और स्पेस जैसे प्रायोरिटी एरियाज में नए ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: श्री पहामला ने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों की साझेदारी के महत्व को दर्शाने का अच्छा अवसर है। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहामला से मुलाकात की और उनके सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। भारत में राष्ट्रपति पहामला का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी रात्रि भोज में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि रहेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दीक्षांत समारोह के बाद राष्ट्रपति का मनाली जाने का कार्यक्रम भी है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन आज बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी और प्रशिक्षु डॉक्टरों को डिग्रियां भी प्रदान करेंगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति आज सुबह करीब 10:30 बजे एम्स पहुंचेंगी। दीक्षांत समारोह में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के दौरे के दूसरे दिन 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर और अटल टनल रोहतांग भी जाएंगी। इस बीच राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए बिलासपुर और कुल्लू जिलों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। एम्स परिसर के अलावा राष्ट्रपति के आने जाने वाले मार्गों पर भी अतिरिक्त पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। राष्ट्रपति का 8 अक्टूबर को सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने बताया कि दीक्षांत समारोह में 1300 से अधिक विद्यार्थी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कोरापुट के करीब 6 दशकों के योगदान को उजागर किया जाएगा। देश की एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण क्षमता तथा सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत करने में इसके योगदान को भी सामने रखा जाएगा। कार्यक्रम में शक्ति इंजन के लिए दूसरी उत्पादन क्षमता की स्थापना भी प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप

0: एसएसएसए का जलावतारण करेंगे और फ्लीट सपोर्ट शिप एफएसएस-5 के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। वे उन्नत स्लिपवे 4 और 300 टन क्षमता वाली गोलियत क्रेन का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लंबाई बढ़ाए जाने और भार वहन क्षमता में वृद्धि के बाद उन्नत स्लिपवे 4 और गोलियत क्रेन की मदद से शिपयार्ड 45,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले जहाजों का निर्माण और जलावतारण कर सकेगा। इससे बड़े और जटिल जहाजों के निर्माण की शिपयार्ड की क्षमता बढ़ेगी। गोवा में पोरवोरेम में विधानसभा परिसर की रजत जयंती के अवसर पर आज से 9 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के दौरान विधायकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से विधानसभा परिसर के इतिहास को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
1: रजत जयंती समारोह का उद्घाटन आज शाम 4 बजे विधानसभा परिसर में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गोवा के राज्यपाल कुलपति अशोक गजपति राजू उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और विपक्ष के नेता यूरी आलेमाओ भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर विधानसभा भवन को समर्पित विशेष डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया जाएगा। स्मारिका और कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा। समारोह के चारों दिन आम जनता के लिए कार्यक्रम खुले रहेंगे। समापन समारोह में केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात केरलम के विजयम सी पोर्ट पर हुए विकास कार्यों की। विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट 2047 तक विकसित भारत के विजन को सपोर्ट करने वाले एक अहम समुद्री गेटवे के तौर पर उभर रहा है। इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के पास रणनीतिक रूप से स्थित इस पोर्ट की गहराई लगभग 20 मीटर है, जिससे ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम है। कमर्शियल ऑपरेशन दिसंबर 2024 में शुरू हुए और मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पोर्ट का उद्घाटन किया। विजिंजम ने अपने पहले साल में ही 8 मिलियन TEU यानी 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट और सिर्फ 18 महीनों में 2 मिलियन TEU का आंकड़ा पार कर लिया, जो एक ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर इसके तेजी से उभरने को दर्शाता है। अगस्त 2026 में पूरी तरह से एक्जिम ऑपरेशन शुरू होने के साथ ये पोर्ट अब भारतीय निर्यातकों और आयातकों के लिए एक सीधा समुद्री गेटवे उपलब्ध करा रहा है।
2: न्यू एज डेवलपमेंट का सिंबल ये विजिंजम डीप वाटर सी पोर्ट है। इस सी पोर्ट को 8,800 करोड़ रुपीज की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांसशिपमेंट हब की जो क्षमता है वो भी आने वाले समय में बढ़कर के 3 गुनी हो जाएगी।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दक्षिण भारत के एक प्रमुख निर्यातक श्री सुरेश मैथ्यू ने कहा,
3: इन माई ओपिनियन विजिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल इज गोइंग टू बी ए गेम चेंजर नॉट ओनली फॉर Antrim of Kerala, but for the whole of India. If even a fraction of shipments presently handled through the foreign ports like Colombo, Jebel Ali in Dubai or Singapore could be brought back to Vizhinjam, I'm sure that we can create enormous value within India through trade, logistics and employment, even allied industries.
0: अपनी बढ़ती क्षमता, सीधे एक्जिम कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे के साथ विजिंजम वैश्विक समुद्री व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुमरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर उपलब्ध हैं। तो शुरू करें इन्वेस्ट।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पर जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए डाउनलोड सभी सारथी ऐप दाग खाज खुजली में आराम हानी रहे बेदाग दालिम लोशन।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता एकता

0: और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। भारत ने ये बात रूस के मॉस्को में आयोजित 8वें मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान में कही। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार और संयुक्त सचिव डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने किया। बैठक में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने किया। बेलारूस और मिस्र ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। रूस के विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रतिभागियों ने काबुल के साथ समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सहयोग बढ़ाने तथा अफगानिस्तान को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने की दिशा में समर्थन देने की जरूरत दोहराई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि यह मंच उन देशों को एक साथ जोड़ता है जो अफगानिस्तान के साथ समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी की उम्मीद करते हैं। मॉस्को फॉर्मेट की स्थापना वर्ष 2017 में अफगानिस्तान में सुलह और शांति को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया है। सरकारी बलों ने लाल सागर के तट पर प्रमुख रणनीतिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया है। राष्ट्रपति परिषद के अध्यक्ष राशिद अल अलमीमी ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन नाम दिया है। इसका उद्देश्य हूती नियंत्रण वाले इलाकों को वापस लेना, सरकारी संस्थाओं को बहाल करना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। क्रिकेट में भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मुकाबला आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौतों को हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने सुर्खी बनाया है। लोकसत्ता ने लिखा है स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा समझौता, 10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का होगा निवेश, महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते यौन अपराधों और दुष्कर्म पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्ती को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। माहौल अमर उजाला, न्यायालय ने कहा कानून का खौफ पैदा करे पुलिस तब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध, अपराध रोकना महत्वपूर्ण बात की कार्रवाई नहीं। तनाव के इलाज की राह खोजने वालों को नोबेल, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है। 3 वैज्ञानिकों को कोशिकाओं पर नियंत्रण से जुड़े काम के लिए चिकित्सा का संयुक्त पुरस्कार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की 5 विधानसभा सीट और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति समर्थन दोहराया। अफगानिस्तान के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Polling begins for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and known Lok Sabha seat in Assam. BJP announces names of 8 candidates from Uttar Pradesh for Rajya Sabha elections. President Draupadi Murmu to be on a 3-day visit to Himachal Pradesh beginning today. India voices support for Afghanistan's sovereignty, unity and territorial integrity, reaffirms its commitment to welfare of Afghan people. Yemen's internationally recognized government launches major military offensive against Houthis. And in men's cricket, first T20 international of the 5-match series between India and West Indies to be played in Lucknow today. Polling has begun for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry in West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. In Tamil Nadu, voting is taking place for Madhuran Thakam and Dharapuram assembly seats in Puducherry, for Prathan Chowri assembly seat and Rajinagar and Nandigram assembly seats in

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत स्वरगंगा के एक कार्यक्रम में उदय कुमार मलिक का धमार गायन। राग था ललित। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में होने वाला शोध नहीं है। जब वैज्ञानिक ज्ञान किसी समस्या का समाधान करता है, नई तकनीक को जन्म देता है और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, तभी उसका व्यापक सामाजिक महत्व सामने आता है। विचार से नवाचार, नवाचार से सामाजिक बदलाव, इस विषय पर सुनिए डॉक्टर कमलिका बैनर्जी और दिलीप झा की ये बातचीत।
1: जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं कि हम अपने इन पत्रिका कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह नई नई जानकारियां नए नए विषयों पर उन तक पहुंचाते रहते हैं, ताकि वो उन जानकारियों का लाभ उठा सकें और अपने आसपास के लोगों को, चाहने वालों को भी लाभान्वित कर सकें। हम सब जानते हैं कि आज बात हो रही है नवाचार की, नवाचार से बदलाव की, एक विचार परिवर्तन की, और बदलाव एक सामाजिक समझ के लिए भी, असामाजिक दायरे में रहने वाले लोगों के जीवन शैली के लिए भी। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में होने वाला शोध नहीं है। जब वैज्ञानिक ज्ञान किसी समस्या का समाधान करता है, नई तकनीक को जन्म देता है और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव और प्रभाव लाता है, तभी उसका व्यापक सामाजिक महत्व सामने आता है। आज के समय में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति, इन सब के बेहतर तालमेल विकास की आवश्यकता है। इसमें एकेडमी का, इंडस्ट्री का, गवर्नमेंट का, सोसाइटी के बीच किस तरह की साझेदारी हो, किस तरह की एक अंडरस्टैंडिंग, कोऑर्डिनेशन हो कि एक इनोवेशन इकोसिस्टम

0: की बात करते हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा और वर्तमान में उसका क्या महत्व देखते हैं आप इनोवेशन कल्चर की और एक सोशल अंडरस्टैंडिंग की?
1: जैसे आपने शुरुआत अपने इंट्रोडक्शन में ही विस्तृत तरीके से और अच्छे से बताया कि कैसे जो लैब में शोध हो रहा है उसको हम सामाजिक कार्यों में समाज के फायदे के लिए कैसे लेके जा सकते हैं, उसी में मेरा भी काम रहा है। आप उसे सामाजिक उद्यमी के तरीके से बोलिए या भारत सरकार के साथ जो मैंने काम किया है। तो बात यह है कि हम लैब में बहुत टाइम से बहुत अच्छा शोध हो रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं लैब में ही रह गया है और वो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आज के दिन में ये गवर्नमेंट के तरफ से बहुत ज्यादा आया है और लोगों को भी लगता है कि ये जो शोध हो रहा है वो हम मार्केट तक कैसे लेके जाए। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी उसमें मुश्किलें हैं, पॉलिसीज या जो आप कहें कि सिस्टम्स आर नॉट इन प्लेस, सिस्टम्स है ही नहीं जो मार्केट में ले जाने के लिए आसानी हो। वही चीज आज गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज और चेंजेस और रिफॉर्म्स लाई है जिससे ये चीज हो सके। और अभी भी बहुत समय है कि हम उस चीज तक पहुंच पाए, थोड़ा बहुत काम हुआ है लेकिन अभी भी काफी रास्ता बाकी है, लेकिन भारत सरकार का एक पूरा प्रॉपर इंटेंट है कि हम ये कर पाएंगे और करेंगे और जरूर करेंगे।
0: आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि लैब टू सोसाइटी की बात की है आपने, कि लैब में जो काम हो रहा है सोसाइटी को उसकी जानकारी हो, उस कार्य का जो प्रतिफल है, रिजल्ट है, आउटपुट है, उसका फायदा समाज के लोगों को मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोशल रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंटिस्ट की बात की कि जिस तरह से कारपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी था उस तरह से साइंटिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात होती है उससे आगे बढ़ के भी कि एक एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस की भी बात की जा रही है। इन सब में आपको क्या लगता है कि किस तरह के बदलाव हुए हैं या बदलाव किए जाने की जरूरत है?
1: तो जैसे आप जानते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे और वो पूरे विश्व में इम्प्लीमेंट होने की बात होती है। तो जो भी कोई प्रोग्राम या कुछ होता है, आपने जैसे ESG की बात की तो वो भी UN SDG गोल्स के उसमें अंतर्गत ही आता है और हर जो एक एप्लीकेशन, हर एक जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, शोध से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें ESG और जो UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को माध्य में रख के और उसको एक सेंटर प्वाइंट रख के सारा कार्य किया जाता है। अब जैसे हम पिछले उसमें बताएं कि जैसे शोध हुआ है प्रोडक्ट, लेकिन एक शोध को प्रोडक्ट बनाने में और उसको फिर मार्केट में पहुंच तक एक बहुत लंबी जर्नी होती है और उसमें बीच में कहते हैं एक वैली ऑफ डेथ आता है, मतलब रिसर्च फ्रॉम लैब टू सोसाइटी पहुंचने में ही वो खत्म हो जाता है कहीं ना कहीं बीच में। तो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, पॉलिसीज हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है लेकिन अल्टीमेटली ये बात है कि ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, उसका इम्पैक्ट सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चीज समझना, देखना, करना जरूरी होता है। जो मैं इस कार्य में इन्वॉल्व रही हूं और इसमें जरूरी है कि हम हर लेवल पे देखें कि कहां पे ये डेथ हो रही है और उसको हम रिकवरी में ला सके और चीजें एक्चुअली में एंड पॉइंट तक लोगों के इम्पैक्ट में पहुंच सके।
0: आपने बात की विज्ञान और नीति की, पॉलिसी की बात की थी और साइंस है और जो इनोवेशन इकोसिस्टम है उसकी बात की है। विज्ञान नीति के क्षेत्र में आपने काम भी किया है तो आपको क्या लगता है कि जो वैज्ञानिकों और पॉलिसी मेकर्स के बीच बेहतर संवाद क्यों जरूरी है और अगर कुछ गैप्स हैं तो कहां आपको वो गैप दिखाई देता है और कैसे उसको प्रभावी बनाया जा सकता है?
1: ये गैप बहुत ज्यादा है, केवल विज्ञान और नीति के क्षेत्र के बीच में ही नहीं, आप इंडस्ट्रीज की बात करें, जो बिजनेसेस करते हैं, साइंटिस्ट की बात करें और पॉलिसी, इन तीनों में ही बहुत ज्यादा गैप्स है। और जो ऑडियंस है, मतलब जो एक्चुअली में वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, उनको भी समझ नहीं है। तो पूरे जो इकोसिस्टम के जो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है सब में बहुत ज्यादा गैप है और उसी को जोड़ना, उनको साथ लाना कि सब एक दूसरे की भाषा समझे, सब एक दूसरे की मदद कर पाए, जब भाषा समझेंगे तभी मदद कर पाएंगे। और वही मेरा भी काम रहा है अभी तक, जो मैं ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम किया है और आगे भी जो मेरा काम रहा है उसमें एज अ सोशल एंटरप्रेन्योर मेरा यही कोशिश रहा है कि मैं बिजनेसेस, साइंटिस्ट, आप जो CSR की बात कर रहे थे पहले, CSR और साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, कि हम हर एक डीप टेक साइंस, विज्ञान को लैब से बाहर निकालने के लिए समाज तक पहुंचे और ये जो गैप्स है, लोग जो एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हैं उनको साथ में कैसे लाया जाए, उसमें मेरा काम रहता है।
0: आपने बताया कि आपने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में भी काम किया है, उस अनुभव का लाभ वर्तमान में देखेंगे तो जो हमारी युवा है इन लोगों को किस तरह से क्रिएटिविटी, इनोवेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एक संस्कृति है उसको विकसित करने के लिए उपयोग किया जाए, और इसके लिए क्या शिक्षा व्यवस्था में आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए?
1: जैसे आपको पता होगा कि नीति आयोग का एक स्कीम रहा है अटल इनोवेशन मिशन, जहां पे उन्होंने

0: AIM के थ्रू बहुत ऐसा काम किया है जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि हम क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन के तरफ और मूव कर पाए। केवल ये स्कूल के लेवल पे ही नहीं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया था इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल्स। तो मैं दोनों में जुड़ी रही हूँ एज अ मेंटोर फॉर अटल इनोवेशन मिशन एंड ऑल्सो आई हैव बीन एसोसिएटेड विद इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये जो प्रोग्राम रहा है उसमें मैंने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और स्कूल में अभी भी मैं जाके मेंटोरशिप करती हूँ। जो आप कह रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, क्रिएटिविटी कैसे लाए, और वही चीज कि हम अब नई सोच और नए इनोवेशन और क्रिएटिव तरीके से डीप टेक साइंस के बारे में सोच सके, विज्ञान को बहुत अलग तरीके से सोच सके, वही मैं उन दो चीजों से करने की कोशिश करती रही हूँ।
1: आज का जो युवा है वो केवल रिसर्च करने तक नहीं रहना चाहता है, वो चाहता है कि उसके पास जो आइडियाज हैं उसको सॉल्यूशन में भी बदला जाए और इनोवेशन में भी बदला जाए, और इनोवेशन के बाद वो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम से भी जुड़े रहना चाहते हैं। इसको लेकर के आप एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट और एक इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है कॉरपोरेट में, किस तरह के कोऑर्डिनेशन की जरूरत महसूस की जाती है आपको लगता है, और गैप अगर है तो कहाँ है?
0: जैसे आपने पिछले एक दशक में देखा होगा, 10 सालों में गवर्नमेंट के बहुत सारे स्टार्टअप के स्कीम्स आए और हमारे देश में स्टार्टअप्स की बहुत बढ़ोतरी हुई है। पहले जैसे ई कॉमर्स बेस्ड एप्स बहुत अच्छे हुए, फिर उसके बाद धीरे धीरे डीप टेक स्टार्टअप्स आने लगे, और आज के दिन में जो रिफॉर्म्स आए हैं और बहुत गवर्नमेंट फंड्स दे रही है इन कोलैबोरेशन विद वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स को मिला के, नए रिफॉर्म्स, नए पॉलिसीज आए हैं गवर्नमेंट के, जैसे आरडीआईएफ फंड आया है डीएसटी का बोलिए, या डीपटेक फंड्स ऑफ फंड्स आया है, या डीपीआईआईटी भी अपने फंड्स लाया है डीपटेक के, कि अब केवल हम सिंपल स्टार्टअप्स की बात ना सोचे, डीपटेक साइंस और डीपटेक स्टार्टअप्स को हम मार्केट में कैसे ला सके, तो ये गवर्नमेंट कर रही है। और मैं अपने पर्सनल फ्रंट में भी क्या कर रही हूँ कि जैसे मैंने आपको सीएसआर की बात की, कि मेरा ये मानना है कि सीएसआर का जो पैसा है वो ऐसा पैसा है कि वो आपको लगाना ही है, तो उसको हम सीएसआर को केवल थोड़ी थोड़ी छोटी छोटे प्रोजेक्ट्स में लिमिटेड ना रखे, उसमें डीप टेक साइंस को कैसे लाके उन प्रोजेक्ट्स को और अच्छा बना सके। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे एक हमने प्रोजेक्ट किया था सीएसआर इम्प्लीमेंटेशन में कि घर घर में तेल बच जाता है, खाने का तेल बच जाता है। मान लीजिए कि हर घर में 10 ml का तेल बच गया, तो आप मान लीजिए दिल्ली में कितने घर होंगे, कुछ 60 लाख घर हैं, तो टोटल आपके पास कितना तेल बच गया, से 10-10 ml हर घर से बचा और हमने कलेक्ट किया, तो हमारे पास कुछ 60,000 लीटर तेल रह जाता है, उसको आप बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। वही चीज अभी हम क्या करते हैं, ड्रेन्स में डाल देते हैं और तेल है उसमें पानी रहता है, बायोडाइवर्सिटी आपकी अफेक्ट होती है, जो आपके माइक्रोब्स है वो मर जाते हैं। 60,000 लीटर अगर हम इसको बचा के बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करें तो क्या वो फायदा नहीं देगा लोगों को? तो ये एक सीएसआर का हमने प्रोजेक्ट किया था, वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो पोल्यूशन डिटरेंट स्कीम, जिसको हमने कहा था ग्रीन सखी, हमने उसको लागू किया था। ये सोच कैसे आ सकती है, और इसको इम्प्लीमेंटेशन करते समय बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, विज्ञान लोगों तक पहुंचे और अच्छा विज्ञान से हमारे देश का बहुत फायदा हो।
1: भारत सरकार ने अनुसंधान रिसर्च फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपया रखा है, और जो आरडीएस सिस्टम है वो उसको सिलेक्शन ऑफ कंपनी स्टार्टअप के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी वो मिलता रहा है इंडिविजुअल साइंटिस्ट सबको। अब बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, खास करके विज्ञान के क्षेत्र में, तो इनोवेशन के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में तो वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रही है, महिलाओं की प्रतिभागिता बढ़ रही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इन महिला वैज्ञानिकों या इनोवेटर्स जो हैं, इन लोगों को एक नेतृत्व का अवसर देने के लिए कुछ संस्थागत स्तर पर भी प्रयास किए जाने की जरूरत है, ताकि वो एक डिसीजन मेकिंग में भी आगे आ सके?
0: जी, और इस चीज में गवर्नमेंट हमेशा चाहते हैं कि विमेन आगे आए, और इस चीज पे हमेशा एफर्ट्स रहा है। देखिए, ये ऐसी जर्नी है कि इसको काफी समय लगेगा, और अगर हम कुछ सालों से ही कंपेयर करें, हर बार हम देखते हैं कि नंबर बढ़ते हैं, हर बार हम देखते हैं कुछ ना कुछ विमेन एम्पावरमेंट या विमेन को सपोर्ट करने के लिए स्कीम्स आती हैं, प्रोग्राम्स आते हैं, फंड्स आते हैं, जिससे विमेन आगे बढ़ पाए। तो ये चीज हो रही है, स्टार्टअप्स में भी कितने विमेन को अवार्ड्स मिले हैं, फंड्स मिले हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, स्टार्टअप हो, साइंटिस्ट लेवल हो, सबको सपोर्ट मिल रहा है। और आज के दिन में तो ये घर घर में बातें होगी कि लड़कियों को आगे लेके जाना। आज के दिन में अगर आप बिजनेसेस भी देखें, कितनी लड़कियां आगे आई है, या आप गांव में भी देखिए कि लड़कियां ही सोशल ग्रुप्स बना के आगे लेके जा रही है और खुद ही नेतृत्व कर रही है, तो देश बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है।
1: और निश्चित रूप से इसके लिए कुछ दायरों को भी तोड़ना पड़ेगा, और बढ़ते हुए सामाजिक सुधार और नीतिगत सुधारों की भी जरूरत पड़ेगी। ज्ञान तब और अधिक सार्थक बन जाएगा जब वह नवाचार का रूप लेकर समाज की वास्तविक समस्याओं के समाधान में योगदान देना शुरू करेगा, जिसके प्रयास अभी चल रहे हैं, कुछ सफलताएं भी दिख रही हैं। डॉक्टर कमलिका बनर्जी जी, आपने विज्ञान, नवाचार, नीति, युवाओं और महिलाओं से जुड़े हुए विज्ञान के क्षेत्र में उनके अवसरों, नीतियों और सफलताओं की बात की। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और अब कुछ विज्ञान जगत की बातें। चमगादड़ दुनिया के इकोसिस्टम में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वे पौधों में परागण करते हैं, बीज फैलाते हैं और बड़ी संख्या में कीड़े मकौड़े खाते हैं। पृथ्वी के इतिहास में उड़ने वाले रीढ़धारी जीवों के केवल 3 समूहों में से एक चमगादड़ों की आज 1500 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए उनका विकासवादी इतिहास एक पहेली जैसा रहा है। चमगादड़ों के जीनोम और जीवाश्म पर अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त स्टडी से अब कुछ स्पष्टता मिल रही है। इसके नतीजों से पता चलता है कि उड़ने वाले ये स्तनधारी जीव सबसे पहले यूरोप में लगभग 6.5 करोड़ साल पहले दिखाई दिए थे। स्पेसएक्स का एक रॉकेट गुरुवार 1 अक्टूबर को फ्लोरिडा से 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों, 1 कनाडाई अंतरिक्ष यात्री और 1 रूसी अंतरिक्ष यात्री के दल के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ। ये मिशन कक्षा में मानव स्वास्थ्य और प्रदर्शन को समर्पित एक वैज्ञानिक मिशन के लिए है। मेडिकल साइंस और न्यूरो साइंस की दुनिया में क्रांति लाने वाली खोज के लिए साल 2020 का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन के लिए इस साल का कार्ल डिसेरोथ, पीटर हेगमैन और जॉर्ज नागेल को संयुक्त रूप से दिया गया है। इन वैज्ञानिकों का ये सम्मान ऑप्टोजेनेटिक्स और लाइट गेटेड आयन चैनल्स पर उनकी खोजों के लिए मिला है। इसकी मदद से वैज्ञानिक अब रोशनी के जरिए मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं को ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जिससे पार्किंसंस और डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की दिशा में नए रास्ते खुल गए हैं। उन्होंने शैवाल से मिले प्रोटीन की मदद से रोशनी द्वारा न्यूरॉन सेल्स को नियंत्रित करने की तकनीक विकसित की है। इन वैज्ञानिकों ने ये साबित किया कि आनुवांशिक रूप से संशोधित करके मस्तिष्क के विशिष्ट न्यूरॉन्स में इन लाइट गेटेड आयन चैनल्स को डाला जा सकता है। इसके बाद सिर्फ लेजर या ऑप्टिकल फाइबर की एक साधारण फ्लैश से पलक झपकते ही इन न्यूरॉन्स को ऑन या ऑफ किया जा सकता है। अब ऑप्टोजेनेटिक्स की मदद से वैज्ञानिक पार्किंसंस रोग, मिर्गी, डिप्रेशन, अंधापन और नशे की लत जैसी जटिल न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का सटीक अध्ययन कर पा रहे हैं। इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का

आइए अब नजर डालें आज की मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से थोड़ी ही देर के बाद सुबहगाही प्रोग्राम होगा। आज के प्रोग्राम में आप भजन सुन सकेंगे।

9:45 पर सुनिएगा प्रोग्राम आज सवेरे। खबरें नशर होंगी 9:50 पर और 10 बजे अखबार जर्री का प्रोग्राम शमी फरोजा नशर किया जाएगा। 10:05 पर हुस्न गजल प्रोग्राम में गैर फिल्मी गजलें नशर होंगी और 10:30 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम में सुनिएगा फिल्मी नगमे। 11:30 पर हम आपको सुनवाएंगे गीतों भरी कहानी फासले। दिन में 12 बजे खबरें नष्ट होंगी और 12:10 से आप सुनेंगे फिल्मी दो गानों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। दौरानी प्रोग्राम तारीख साज प्रोग्राम नष्ट होगा। 1 बजे आलमी खबरें नष्ट होंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस का वक्त खत्म हो जाएगा। ये थी एक नजर इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश है प्रोग्राम सुबह का ही, आज सुनिए भजन।

0: सुबगाही प्रोग्राम के तहत अभी आपने भजन सुना। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है प्रोग्राम आज सवेरे,
1: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के जिक्र का। आज 6 अक्टूबर है, देश और दुनिया के इतिहास में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। 1860 में आज ही के दिन भारतीय दंड संहिता को 6 अक्टूबर 1860 को कानून के रूप में पारित किया गया। ये बाद में 1 जनवरी 1862 से लागू हुई। 1987 में आज ही के दिन फिजी को गणराज्य घोषित किया गया, और 1989 में आज ही के दिन न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी। और अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है। आज पुण्यतिथि है नाना साहब की। उनका जन्म 19 मई 1824 को वेणुग्राम महाराष्ट्र में हुआ था। वे सन 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे। उनका मूल नाम भोंदू पंत था। स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहेब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट द्वितीय ने नाना साहब को गोद ले लिया था। इतिहास में नाना साहेब को बालाजी बाजीराव के नाम से भी संबोधित किया गया है। 1 जुलाई 1857 को जब कानपुर से अंग्रेजों ने प्रस्थान किया तो नाना साहब ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी तथा पेशवा की उपाधि भी धारण की। नाना साहब का अदम्य साहस कभी भी कम नहीं हुआ और उन्होंने क्रांतिकारी सेनाओं का बराबर नेतृत्व किया। अब एक कविता। कोटि कोटि कंठों की भाषा, जन गण की मुखरित अभिलाषा, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सब की परिभाषा, आजादी के दीप्त भाल की, बहुभाषी वसुधा विशाल की, सहृदयता के एक सूत्र में ये परिभाषा देश काल की। ये काव्य रचना है लक्ष्मी मल सिंघवी की। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका जन्म 9 नवंबर 1931 को जोधपुर में हुआ था। वे जाने माने भारतीय कवि, लेखक, भाषाविद, संविधान विशेषज्ञ और प्रसिद्ध न्यायविद थे। उन्होंने हिंदी के वैश्वीकरण और हिंदी के उन्नयन की दिशा में सजग, सक्रिय और ईमानदार प्रयास किए। वे भारतीय संस्कृति के राजदूत, ब्रिटेन में हिंदी के प्रणेता और हिंदी भाषियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। जैन धर्म के इतिहास और संस्कृति के जानकार के रूप में मशहूर लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें से अनेक हिंदी में है। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आज जयंती है ब्रिज मोहन सदाना की। उनका जन्म 6 अक्टूबर 1933 को गुजरांवाला ब्रिटिश भारत में हुआ था। जिन्हें ब्रिज के नाम से जाना जाता है, वे एक भारतीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 1960 से 1980 के दशक की कुछ सबसे यादगार बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों जैसे दो भाई, ये रात फिर न आएगी, उस्तादों के उस्ताद, नाइट इन लंदन, विक्टोरिया नंबर 203, चोरी मेरा काम, एक से बढ़कर एक यकीन और प्रोफेसर प्यारे लाल के लिए जाना जाता है। उन्होंने लगातार अपनी फिल्मों में संगीत निर्देशक के रूप में कल्याण जी आनंद जी को चुना। आइए सुनते हैं उनकी फिल्मों के कुछ गीत।

0: Vinod Khanna. Today is his birth anniversary. The great actor, film producer. Born in Peshawar in 1946, on this day, Vinod Khanna went on to become one of the most admired actors of Indian cinema.
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा. 1968 में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से विनोद खन्ना ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था. विनोद खन्ना का नाम ऐसे अभिनेताओं में शुमार था जिन्होंने शुरुआत तो विलन के किरदार से की थी लेकिन बाद में हीरो बन गए. अमिताभ बच्चन के साथ की गई फिल्म परवरिश ने उन्हें बड़ा ब्रेक दिलाया. पहली बार इसी फिल्म से उन्होंने स्टारडम का स्वाद चखा. विनोद खन्ना को 1971 में पहली सोलो लीड फिल्म हम तुम और वो मिली. बाद में गुलजार के मेरे अपने में शत्रुघ्न सिन्हा के अपोजिट निभाए गए उनके किरदार को आज भी लोग याद करते हैं. 140 से अधिक फिल्मों में विविध किरदार निभाने वाले विनोद खन्ना को 2017 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. आइए सुनते हैं उनके कुछ गीत और संवाद.
2: हेलो, याद है तेरे लिए मैंने एक बार जेल काटी थी, याद है ना? तेरे लिए मेरी सारी जिंदगी बदल गई, तबाह हो गई. लेकिन इस बार मैं जेल नहीं, तुझे मार कर सीधा फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगा. रघु, छोड़ दो उसे, चल गमार कहीं का. आइंदा ऐसी हरकत की तो खुद ही बांध के डाल दूंगा तुझे. चलो, अब ये लड़ाई झगड़ा और अच्छा नहीं लगता, छोड़ दे, खत्म कर दे दुश्मन.

0: आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब अहमद अम्मार से खबर सुनिए। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल के 5 संभली हलकों और आसाम की 1 लोकसभा सीट पर जिमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है। बीजेपी ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए उत्तर प्रदेश से अपने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सगरे मौर्य द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। भारत ने अफगानिस्तान के इख्तदार आला, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इजहार किया है और अफगानिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने अज़्म का यादा किया है। बैन अल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमन की हुकूमत ने हौसियों के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू की है। और मर्दों की क्रिकेट में आज लखनऊ में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में 1 लोकसभा सीट पर आज ज़िमनी इंतखाबात मुनाकिद किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में मदुरंतंकाम और धरापुरम, पुदुचेरी में और मगरबी बंगाल में राजीनगर और नंदीग्राम असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा आसाम की नगांव लोकसभा सीट के लिए पोलिंग जारी है। वोटों की गिनती जुमे के रोज की जाएगी। मगरबी बंगाल के नंदीग्राम और राजीनगर असेंबली हलकों में वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से आइंदा राज्यसभा इंतखाबात के लिए 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, रामप्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को मैदान में उतारा है। बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने मजकूरा नामों की मंजूरी दी। आज कागजाती नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी बंगाल में राज्यसभा सीटों के लिए इंतखाबात इस महीने की 16 तारीख होंगे। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों और उत्तराखंड की 1 सीट के लिए इंतखाबात होंगे। इसके अलावा मगरबी बंगाल की 1 सीट के लिए भी जिमनी चुनाव होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। सदर जमहूरिया आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज एम्स बिलासपुर के पहले जलसे तकसीम असनाद में शिरकत करेंगी। जलसे तकसीम असनाद की तकरीब के बाद सदर जमहूरिया का मनाली जाने का

program here. नायब सचिव सी पी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के दूसरे तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करेंगे। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक ने कहा कि जलसे तकसीम असनाद में 1300 से ज्यादा तलबा की शिरकत मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि नायब सचिव बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 3 होनहार तलबा को शंकर दयाल शर्मा मेडल से भी नवाजेंगे। इन तलबा ने तालीम मैदान में सबसे ज्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज ओडिशा में हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के कोरापुट डिवीजन के तैयार करदा 2000वें एयरो इंजन की हवालगी के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत करेंगे। वजारत दिफा ने कहा है कि यह तकरीबन 6 दहाइयों पर मुहित खिदमात और भारत की फजाई व दिफाई साजो सामान की तैयारी की सलाहियतों और मुसल्लह फौज की ऑपरेशनल तैयारी में उसके रोल को उजागर करेगी। तकरीब में शक्ति इंजनों की तैयारी के लिए दूसरी प्रोडक्शन लाइन के क्याम को भी नुमाया किया जाएगा, जिस पर 200 करोड़ रूपये से ज्यादा की सरमायाकारी की गई है। इजाफी पैदावारी सलाहियत से मुल्क में तैयार किए जाने वाले हेलीकॉप्टरों की बढ़ती हुई जरूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी, जिनमें ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और प्रचंड लाइट हेलीकॉप्टर शामिल हैं। यह तकरीब हुकूमत के इस नजरिए की अक्कासी करती है, जिसके तहत भारत को दिफाई साजो सामान खरीदने वाले मुल्क से बदलकर दिफाई निजाम का डिजाइन तैयार करने, उन्हें तरक्की देने और खुद तैयार करने वाला मुल्क बनाना है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम में वाक हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में बहरी बेड़े की मुआवनत करने वाले जहाज FSS-1 को पानी में उतारेंगे और बहरी बेड़े की मुआवनत करने वाले जहाज FSS-5 की तैयारी के बाजाबता आगाज की तकरीब में शिरकत करेंगे। वो जदीद तर बनाए गए स्लिप वे 400 और 300 टन वजनी गोलियात क्रेन का भी इफ्तिताह करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के सदर गाय पारमेलिन ने कल नई दिल्ली में दो तरफा बातचीत की, जिसके बाद दोनों के दरमियान 5 समझौतों पर दस्तखत किए गए। इनमें माइग्रेशन और मोबिलिटी से मुतालिक साझेदारी, निशानजद किए गए इलाकों में मोबिलिटी सिस्टम और बुनियादी ढांचे और इख्तरा, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और सनअतकारी के सिलसिले में ताउन के लिए अमल दरामद के इंतजाम और दिगर मुआहदे शामिल हैं। एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई ताउन और न्यूक्लियाई तवानाई से मुतालिक इश्तराक को मजीद उसत देने के इम्कान की निशानदेही की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने स्विट्जरलैंड के सदर के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया। सदर का इस्तकबाल करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि तारीखी भारत यूरोपी आजाद तजारत और शराकतदारी से मुतालिक मुआहदे पर अमल दरामद के बाद दो तरफा तजारत और सरमायाकारी में मजीद उसत पैदा करने के इम्कान मौजूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि स्विट्जरलैंड के कंपनियां माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और मसनू जहानत जैसे उभरते शोबों में मवाक़े का जायजा भी ले सकती हैं। इस इशाइये में नायब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन ने भी शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो इस जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस अंतक अजम का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। भारत ने अफगानिस्तान के इख्तदार आला इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के तहत अपनी हिमायत का इज़हार किया है। भारत ने रूस के ज़ेर एहतमाम मॉस्को में मुनक़िदा अफगानिस्तान से मुतालिक 8वें मॉस्को फॉर्मेट मुशावरतों के मौके पर अफगान के अवाम की फलाह बहबूद के तहत अपने अज़्म का इज़हार किया। इस मौके पर भारतीय वफद की क़यादत रूस में भारत के सफीर विनय कुमार और ज्वाइंट सेक्रेटरी PAI डॉ एम सुरेश कुमार ने की। इस मीटिंग में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदों ने शिरकत की। रूस की वजारत खारजा के मुताबिक शुरका ने मसावी और बाहमी तौर पर मफादात की बुनियाद पर अफगानिस्तान के साथ ताउन और आलमी मईशत में उसकी शमूलियत की हिमायत की जरूरत पर जोर दिया। अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका जाती तौर पर ख्याल है कि दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाई दुबई की परवाज में ओमान से ताल्लुक रखने वाले
معاون

0: पायलट की तरफ से किए गए दहशतगर्दाना हमले के लिए ईरान जिम्मेदार है। ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कही। भारतीय महकमा मौसमियात ने आज केरलम, माहे, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और मगरब बंगाल में भी आज गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। सिक्किम, छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, वस्ती, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार जजायर और शिमाल मशरकी रियासतों में भी इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। इसी दौरान मौसमियात के महकमे ने कहा कि कौमी राजधानी में आज दोपहर या शाम के वक्त चंद मकामात पर बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ गरज चमक और बिजली कड़कने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर में आज से 10 अक्टूबर के दौरान बाला इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। मौसमियात के मुताबिक आइंदा 4 रोज में जम्मू कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं बारिश होने का इम्कान है। यमन की बैन अक्वामी सतह पर तस्लीमशुदा हुकूमत ने हौसियों के खिलाफ एक बड़ी फौजी कार्रवाई का आगाज किया है। हुकूमती फोर्सेज ने बहर अहमर के साहिल से मुत्तसिल अहम स्ट्रेटेजिक चौकियों के नजदीक पेशकदमी का दावा किया है। मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अक्वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरब बंगाल के 5 असेंबली हलकों और आसाम की 1 लोकसभा सीट पर जिमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। बीजेपी ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए उत्तर प्रदेश से अपने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। सगरी मुहरिया द्रौपदी मुर्मू आज से हिमाचल प्रदेश के 3 रोजा दौरे पर रहेंगी। भारत ने अफगानिस्तान के इकदार आला, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की हिमायत का इजहार किया है और अफगानिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए अपने अज़्म का अदा किया है। बैन अक्वामी तौर पर तस्लीमशुदा यमन की हुकूमत ने हौसियों के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू की है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश है अखबारी जरी का प्रोग्राम शम्मी फरूजा।
2: किसी मुफलिस या मोहताज शख्स को कर्ज देकर उसकी मदद करना बाइस सवाब है। कर्ज लेने और अदा करने में चंद उसूलों का लिहाज रखना बहुत लाजिमी है। कर्ज वसूल करने में 3 तरीकों से एहसान बरता जाता है, कुछ कम करने में, किसी हद तक के लिए सहूलत देने में, या कीमत मुकर्रर करे सहूलत बरतने में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम करे जो लेन देन में कर्ज देने और तलब करने में नरमी से काम ले। रूथ बैंडिट का कॉल है कि किसी से कर्ज लेना खूबी नहीं, लेकिन कर्ज लेकर बर वक्त अदा करना खूबी है। शेक्सपियर कहते हैं, कर्ज लेने और देने में एहतियात से काम लो, कर्ज दोस्ती को खत्म कर देता है और मकरूज जिल्लत महसूस करता है। एक और मुफक्किर कहते हैं, मैंने जंगी औजार उठाए, भारी बोझ उठाया, लेकिन कर्ज से ज्यादा वजनदार मुझे कोई बोझा नजर नहीं आया। बेंजामिन लिखते हैं, जो शख्स मकरूज होता है बाज़ औक़ात अपनी तंगदस्ती उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देती है। इंसान पहले कर्ज उठाता है फिर झूठा साबित होता है। एक अंग्रेज मुफक्किर जॉनसन का कौल है, दुनिया में सबसे बड़ा सदमा यह है कि जब कोई फयाज शख्स बकरी के सामने कर्जे के लिए हाथ फैलाए और उसे जवाब इनकार में मिले। जॉनसन ही ये भी कहते हैं, गुरबत सिर्फ एक मुश्किल है लेकिन कर्ज लेना खतरनाक चीज है जो जिल्लत का बाइस भी बन सकती है। एक मुफक्किर कहते हैं, जब कर्ज अदा नहीं होता है तो मकरूज 3 तकलीफों में मुबतला होता है, शर्मिंदगी, झूठ और खौफ। अल्लाह आप हम सबको इस चीज से बचाए।
1: अभी आप सुन रहे थे अकबाल जरी का प्रोग्राम शमी फरोजा। आज का मौजू था मुफलिस की मदद। पेश कर रहे थे बशीर आरिफ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1000

71 किलोहर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की नशरियात का सिलसिला जारी है। पेशो खिदमत है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्ने गजल। कमल हंसपाल से आप सुनेंगे दाग दहलवी और डॉक्टर बशीर बद्र का कलाम और जुनैद से आगा बिस्मिल और मखमूर दहलवी का कलाम।

0: इस गजल के साथ ही आज का हुस्ने गजल प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है प्रोग्राम पूर्वोत्तर डायरी।
1: उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर डायरी का नया संस्करण। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जुड़ी विकास की नई पहल, बदलती तस्वीर, संस्कृति, परंपरा और उन लोगों की कहानियाँ जो अपने काम और जज्बे से समाज में बदलाव ला रहे हैं, इन्हीं पहलुओं को सामने लाता है हमारा आज का कार्यक्रम। आज की यात्रा में सबसे पहले चलेंगे पूर्वोत्तर के खान पान और संस्कृति की एक विशेष यात्रा पर। इसके बाद जानेंगे रेशम उत्पादन के क्षेत्र में हुई नई पहल, नागालैंड में हिंदी व स्थानीय भाषाओं के संरक्षण के प्रयास और सिक्किम के नाद बैंड की संगीतमय उपलब्धि और असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन की स्वर्णिम सफलता की प्रेरणादायी कहानी भी आपके सामने होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत की पहचान यहाँ की विविध संस्कृतियों, परंपराओं और विविध समुदायों से गहराई से जुड़ी हुई है और यहाँ की समृद्ध पाक परंपरा यानी खान पान भी इस विविधता की एक बेहद खूबसूरत झलक पेश करता है। इसी अनोखी विरासत और स्थानीय जीवन को देश भर के दर्शकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से डॉक्यूमेंट्री सीरीज द एन्चेंटिंग एट अ कल्नरी जर्नी थ्रू नॉर्थ ईस्ट का एक विशेष ट्रेलर लॉन्च किया गया है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एन सिंधिया ने 29 सितंबर को नई दिल्ली में इस प्रेरणादायक सीरीज के ट्रेलर का अनावरण किया। आठों पूर्वोत्तर राज्यों के इस अनूठे सफर में केवल स्थानीय स्वादों और व्यंजनों को ही नहीं समेटा गया है, बल्कि इसके माध्यम से क्षेत्र के मेहनती किसानों, खाद्य उत्पादकों, विभिन्न समुदायों और उनसे जुड़ी सदियों पुरानी परंपराओं की कहानियों को भी प्रमुखता से सामने लाया गया है। आइए सुनते हैं पूर्वोत्तर के स्वाद और समृद्ध संस्कृति को बेहद करीब से दर्शाती इस खास डॉक्यूमेंट्री सीरीज पर निशा साहू की ये रिपोर्ट।
1: भारत की पहचान उसकी विविध संस्कृतियों, अलग अलग समुदायों और समृद्ध परंपराओं से जुड़ी है। यहाँ का खान पान भी इसी विविधता को अपने साथ समेटे हुए है। अब पूर्वोत्तर के इन खास स्वादों, परंपराओं और लोगों की कहानियों को देश के बड़े दर्शक वर्ग तक पहुँचाने के लिए एक नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज शुरू की गयी है। 29 सितंबर को नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने द एन्चेंटिंग गेट, एक क्यूनरी जर्नी थ्रू द नॉर्थ ईस्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज का ट्रेलर लॉन्च किया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने किया। इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, वरिष्ठ अधिकारी और सीरीज निर्माण टीम के सदस्य भी मौजूद थे। ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों की खाद्य परंपराओं को सामने लाती है। इसमें अलग अलग राज्यों के व्यंजनों के साथ उन लोगों और समुदायों की कहानियाँ भी दिखाई जाएंगी जिनसे ये परंपराएं जुड़ी हैं। इसमें पूर्वोत्तर की कहानी बाहर से देखने के बजाय वहाँ के लोगों, किसानों

0: उत्पादकों और स्थानीय समुदायों की आवाज के जरिए सामने लाई गई हैं। सीरीज के लिए टीम ने स्थानीय समुदायों और भोजन से जुड़े लोगों के साथ बातचीत की। स्थानीय सामग्री कहाँ पैदा होती है, रसोई तक कैसे पहुँचती है और फिर खाने की मेज पर उसका सफर कैसे पूरा होता है, इन सभी पहलुओं को डॉक्यूमेंट्री में शामिल किया गया है। इस दौरान सिर्फ खाने को कैमरे में कैद नहीं किया गया बल्कि उससे जुड़ी परंपराओं, स्थानीय ज्ञान और लोगों के अनुभवों को भी कहानी का हिस्सा बनाया गया है। खान पान की खासियत यह है कि यह स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों और उपलब्ध सामग्री से गहराई से जुड़ा हुआ है। अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों और समुदायों के कारण प्रत्येक राज्य की अपनी अलग खाद्य परंपरा विकसित हुई है। डॉक्यूमेंट्री पूर्वोत्तर को किसी एक तरह के खान पान या एक ही पहचान तक सीमित नहीं करती। इसके बजाय 8 राज्यों की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों, समुदायों और स्थानीय सामग्रियों से विकसित हुई खाद्य परंपराओं को सामने लाया गया है। इन परंपराओं के पीछे मौजूद पारंपरिक ज्ञान और रोजमर्रा के तौर तरीकों को भी इस सीरीज में जगह दी गई है। स्थानीय आवाजें इसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भोजन इस पूरी डॉक्यूमेंट्री का केंद्र है लेकिन कहानी केवल रसोई तक सीमित नहीं है। इसके जरिए पूर्वोत्तर की कला, संस्कृति और प्राकृतिक दृश्यों को भी दर्शकों के सामने लाया जाता है। इस तरह भोजन को उस व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल से जोड़कर दिखाया गया है जिसमें ये परंपराएं पीढ़ियों से विकसित होती रही हैं। इस पहल का एक महत्वपूर्ण पहलू पूर्वोत्तर की स्थानीय अर्थव्यवस्था और समुदायों की क्षमता को सामने लाना भी है। किसानों, खाद्य उत्पादकों और स्थानीय समुदायों की भूमिका को कहानी के केंद्र में रखकर ये सीरीज उनके अनुभव और पारंपरिक ज्ञान को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के सहयोग से तैयार की गई है। इसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी के माध्यम से लागू किया गया है और अर्बन मीडिया प्रोडक्शंस ने फ्लैंडरिंग फोरकर मीडिया के साथ मिलकर इसका निर्माण किया है। सीरीज के जरिए पूर्वोत्तर के स्थानीय स्वादों के साथ वहाँ के लोगों की जिंदगी, उनकी परंपराओं और उनके ज्ञान को भी देश के सामने लाने की कोशिश की गई है। ट्रेलर लॉन्च के साथ अब इस डॉक्यूमेंट्री यात्रा की शुरुआत हो गई है। द एंचेंटिंग एट भोजन के जरिए पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को जानने का एक अलग नजरिया सामने रखती है जहां हर स्वाद के पीछे एक समुदाय, हर सामग्री के पीछे एक परंपरा और हर व्यंजन के पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है। निशा साहू की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार।
1: पूर्वोत्तर में रेशम उत्पादन और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रशिक्षण तथा सुदृढ़ बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम की उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम तथा केंद्रीय रेशम बोर्ड ने क्षेत्र में रेशम उद्योग के समग्र विकास और आपसी सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ये ऐतिहासिक समझौता 20 सितंबर को बेंगलुरु में आयोजित केंद्रीय रेशम बोर्ड के 77वें स्थापना दिवस समारोह के गरिमामय अवसर पर संपन्न हुआ। इस साझेदारी के अंतर्गत शोध और अनुसंधान, नई तकनीकों के हस्तांतरण, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों, उत्पाद विकास, आधुनिक डिजाइनिंग, बाजार के साथ जुड़ाव और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दोनों प्रमुख संस्थाएं मिलकर काम करेंगी। आइए सुनते हैं पूर्वोत्तर के पारंपरिक रेशम क्षेत्र को नई मजबूती प्रदान करने वाली इस विशेष पहल पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट।

उत्तर भारत में रेशम उत्पादन की समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ रेशम केवल एक उत्पाद नहीं बल्कि स्थानीय संस्कृति, ग्रामीण आजीविका और पारंपरिक हुनर से भी जुड़ा हुआ है। इसी क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम यानी NAHHDC और केंद्रीय रेशम बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। 20 सितंबर को बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम

0: के 77वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान दोनों संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में रेशम और रेशम उत्पादन के क्षेत्र में मिलकर काम करना है। के तहत रेशम उत्पादन से जुड़ी तकनीक, शोध, प्रशिक्षण और क्षमता विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दोनों संस्थान रेशम के क्षेत्र में हुए शोध और उससे जुड़े परिणामों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए भी मिलकर काम करेंगे। समझौते में रेशम उत्पादन की पूरी प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। इसमें रेशम तैयार होने से पहले की गतिविधियों से लेकर तैयार रेशम और उससे बनने वाले उत्पादों तक अलग अलग स्तरों पर सहयोग शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त और कम लागत वाली रेशम उत्पादन तकनीक विकसित करने और उन्हें अपनाने की संभावनाएं भी तलाश की जाएंगी। इसका उद्देश्य ऐसी तकनीक को बढ़ावा देना है जिसका इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर रेशम उत्पादन से जुड़े किसान और दूसरे लोग आसानी से कर सके। इसके साथ ही प्रशिक्षण और कौशल विकास को भी इस साझेदारी में महत्वपूर्ण जगह दी गई है। तकनीकी जानकारी और विशेषज्ञता के आदान प्रदान से रेशम क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई तकनीकों और बेहतर तरीकों की जानकारी मिल सकेगी। समझौते का एक अहम हिस्सा उत्पाद विकास और डिजाइन में नए प्रयोग करना भी है। दोनों संस्थान ऐसे रेशम उत्पाद विकसित करने पर सहयोग करेंगे जिनकी बाजार में ज्यादा मांग और बेहतर मूल्य हो। इससे पारंपरिक रेशम उत्पादों को नए डिजाइन और तकनीक के साथ बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने में मदद मिल सकती है। बाजार से जोड़ना और निर्यात को बढ़ावा देना भी इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों संस्थान रेशम उत्पादों के लिए बाजार संपर्क मजबूत करने और उन्हें बड़े बाजारों तक पहुँचाने की संभावनाओं पर मिलकर काम करेंगे। पूर्वोत्तर के रेशम क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पहले भी कई पहल की गई है। केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में कच्चे रेशम का उत्पादन 2013-14 के करीब 4,600 टन से बढ़कर 2024-25 में 8,300 टन से अधिक हो गया है। इसी अवधि में देश के कुल कच्चे रेशम उत्पादन में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। असम का मोगा रेशम इस क्षेत्र की खास पहचान है। जून 2026 में आकाशवाणी ने भी असम के मोगा रेशम के लिए मिशन स्नेह जोरी की शुरुआत की जानकारी दी थी। इस पहल में मोगा रेशम की पूरी वैल्यू चेन, रेशम कीट पालन से लेकर बुनाई, ब्रांडिंग, निर्यात और पर्यटन तक को मजबूत करने पर जोर दिया गया। नए MOU के तहत जरूरत के अनुसार संयुक्त परियोजनाएं भी शुरू की जा सकेंगी। किसी खास परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और अलग समझौते तैयार किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर दूसरे सरकारी या निजी संस्थानों को भी इन पहलों से जोड़ा जा सकेगा। समझौते में तकनीकी जानकारी साझा करने, बौद्धिक संपदा और गोपनीयता से जुड़े प्रावधान भी शामिल है। ये MOU 5 साल तक लागू रहेगा और दोनों संस्थानों की आपसी सहमति से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर इस साझेदारी का उद्देश्य पूर्वोत्तर के रेशम क्षेत्र में शोध, तकनीक, कौशल, उत्पाद विकास और बाजार को एक साथ जोड़ना है। इससे पारंपरिक रेशम उत्पादन को आधुनिक तकनीक और नए बाजारों से जोड़ने की दिशा में काम आगे बढ़ सकता है और ग्रामीण स्तर पर इससे जुड़े लोगों के लिए नए अवसरों की संभावनाएं बन सकती हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं विशाल शर्मा।
1: राष्ट्रीय भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय भाषाओं, बोलियों और सांस्कृतिक विरासत को भी पूरी सजगता के साथ संरक्षित किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण संदेश नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने आकाशवाणी कोहिमा द्वारा आयोजित हिंदी फिल्म गीत प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान दिया। ये गरिमामय कार्यक्रम हिंदी पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत 24 सितंबर को कोहिमा में आयोजित किया गया था। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने भारत की बहुभाषी विविधता को देश की वास्तविक सांस्कृतिक ताकत बताया। उन्होंने रेखांकित किया कि हिंदी जहां देश के विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के लोगों को आपस में जोड़ने वाले एक सशक्त संवाद माध्यम के रूप में कार्य करती है, वहीं स्थानीय भाषाएं विभिन्न समुदायों की मौलिक पहचान, लोक संस्कृति और प्राचीन परंपराओं को सुरक्षित रखने का काम करती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी कोहिमा के इस विशेष आयोजन पर आधारित हमारी एक रिपोर्ट।
0: भाषा, संगीत और सांस्कृतिक विविधता का संगम आकाशवाणी कोहिमा में देखने को मिला, जहां विभिन्न केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिंदी फिल्म गीत प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने भारत की भाषाई विविधता को देश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक ताकतों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि हिंदी अलग अलग भाषाई क्षेत्रों के लोगों के बीच संवाद का माध्यम बन सकती है। वहीं स्थानीय भाषाएं समुदायों के इतिहास, पारंपरिक ज्ञान और पहचान को सुरक्षित रखती हैं।
2: हिंदी को बढ़ावा देना, हमारे स्थानीय भाषाओं का संरक्षण एक साथ हो सकता है और होना भी चाहिए। वास्तव में यह भारत की अनूठी शक्तियों में से एक। हमें भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता में किसी एक को चुनने की आवश्यकता नहीं है। हमारी विविधता स्वयं बेहतर समझ और एकता के लिए एक सेतु बन सकती है। नागालैंड में हम इसे विशेष रूप से अच्छी तरह समझते हैं। हमारा राज्य विभिन्न जनजातियों, भाषाओं, बोलियों, परंपराओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का घर है, जहां भाषा किसी समुदाय की स्मृतियां, उसके इतिहास, पारंपरिक ज्ञान, मूल्यों, गीतों और लोक कथाओं को अपने भीतर संजोए रखती है। इसलिए जब हम हिंदी को बढ़ावा देते हैं तो हमें अपने समुदायों की भाषाओं के प्रति सम्मान और सराहना की उसी भावना के साथ ऐसा करना चाहिए।
0: राज्यपाल ने कहा कि संगीत भाषाओं की सीमाओं से आगे जाकर लोगों को जोड़ने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि हिंदी फिल्मी गीत कई पीढ़ियों की साझा सांस्कृतिक स्मृतियों का हिस्सा रहे हैं और संगीत खुशी, प्रेम, उम्मीद, देशभक्ति और दोस्ती जैसी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है।
2: संगीत में भाषाई सीमाओं से परे जाने की उल्लेखनीय क्षमता होती है। हम भले ही किसी गीत का हर शब्द न समझें, लेकिन हम उसकी भावना को समझ सकते हैं। बोल समझने से पहले हम संगीत के माध्यम से खुशी, प्यार, पुरानी यादें, आशा, देशभक्ति और दोस्ती महसूस कर सकते हैं। यह संगीत की सुंदरता है।
0: उन्होंने आकाशवाणी कोहिमा की भी सराहना की और कहा कि आकाशवाणी लंबे समय से समाचार, सूचना, शिक्षा, संगीत और संस्कृति के साथ स्थानीय आवाजों, भाषाओं और परंपराओं को मंच देने का काम कर रही है।
2: आकाशवाणी कोहिमा ने स्थानीय आवाजों, भाषाओं, संगीत, परंपराओं और जनहित के मुद्दों को एक मंच प्रदान किया है। इसने राज्य में भीतर समुदाय को जोड़ने में मदद की है और नागालैंड को बाकी भारत से भी जोड़ा है। मेरा मानना है कि वर्तमान युग में यह भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। हम तेज तकनीकी बदलाव के युग में जी रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया लोगों के संवाद करने और सूचना प्राप्त करने के तरीकों को बदल दिया है। फिर भी सार्वजनिक प्रसारण का मूल उद्देश्य आज लोगों को सूचित करना, शिक्षित करना और आपस में जोड़ना, माइक्रोफोन समुदायों के बीच एक सेतु बन सकता है और वह सेतु तब और मजबूत होता है कि उसमें कई तरह की आवाजें शामिल होती हैं। इसलिए मैं आकाशवाणी कोहिमा को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि वह नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत को उचित स्थान देना जारी रखें और साथ ही उन कार्यक्रमों को भी मजबूत करें जो हमारे लोगों को व्यापक रूप में राष्ट्र से जोड़ते हैं।
0: आकाशवाणी कोहिमा की हेड ऑफ प्रोग्राम्स एला काइना ने कहा कि हिंदी ने देश के अलग अलग हिस्सों के लोगों के बीच संवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने प्रसारण के माध्यम से भारत की विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को एक साथ लाने में आकाशवाणी की भूमिका पर भी बल दिया।
3: आकाशवाणी केवल सूचना और मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये देश की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को जोड़ने वाला एक शब्द सेतु भी है। भारत की विशेषता ही इसकी अनेक भाषाओं, बोलियों और संस्कृतियों में निहित है। इसी विविधता के बीच हिंदी ने देश के विभिन्न भागों के लोगों को आपस में संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: हिंदी पखवाड़े का संदेश केवल दो सप्ताह तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य हिंदी को बढ़ावा देने के साथ साथ अंग्रेजी और देश की अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान करना तथा नागालैंड की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना भी है। असूनियों की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्रशांत कुमार।
1: सिक्किम की समृद्ध लोक एवं वाद्य संगीत प्रतिभा ने पूर्वोत्तर के एक बड़े और प्रतिष्ठित मंच पर अपनी कला की गहरी छाप छोड़ी है। गैंगटॉक के प्रसिद्ध नाद बैंड ने गुवाहाटी में आयोजित एनी स्टार 2026 के भव्य ग्रैंड फिनाले में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा रनर अप स्थान हासिल किया है। 27 सितंबर को आयोजित इस फिनाले में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से चुनकर आए प्रतिभाशाली प्रतिभागियों ने भाग लिया था। नाद बैंड ने अपने पारंपरिक लोक धुनों और आधुनिक फ्यूजन संगीत के अद्भुत संगम से निर्णायकों तथा दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और सिक्किम की समृद्ध संगीतमय परंपरा को क्षेत्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। आइए सुनते हैं सिक्किम के नाद बैंड की इस संगीतमय यात्रा और शानदार उपलब्धि पर आधारित आधारित ये खास रिपोर्ट।
4: 27 सितंबर को हुए फिनाले में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से चुने गए 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। नाच बैंड ने अपनी लोक और फ्यूजन संगीत प्रस्तुति से निर्णायकों और दर्शकों का ध्यान खींचा और सिक्किम के संगीत को क्षेत्रीय मंच पर नई पहचान दिलाई। सिक्किम में संगीत प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन 6 सितंबर को आदमपुर गंगटोक में हुआ था। यहां अलग अलग कलाकारों और बैंड की प्रस्तुतियों के बाद सिक्किम से नाट ग्रुप फोक इंस्ट्रूमेंटल बैंड और सुमित गजवेर को ग्रैंड फिनाले के लिए चुना गया था।

गुवाहाटी में हुए फाइनल में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से चुने गए 16 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। नाद बैंड ने अपनी लोक और फ्यूजन संगीत प्रस्तुति से निर्णायकों और दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया और दूसरे रनर अप का स्थान हासिल किया। नागालैंड की स्टूडियो ग्रुप ने प्रतियोगिता का खिताब जीता, जबकि मेघालय की पतेंग बैंड पहले

0: नाद बैंड में प्रीतम राज छेत्री, विनोद दर्जी सारंगी, निमेश वर्मा गिटार और डंबर घतानी परक्शन पर हैं। बैंड के मेंटर नरेन बरदेवा हैं। इस उपलब्धि के बाद सिक्किम के लोक और वाद्य संगीत को पूर्वोत्तर के क्षेत्रीय मंच पर नई पहचान मिली है। प्रतियोगिता का उद्देश्य पूर्वोत्तर के उभरते कलाकारों को अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता दिखाने के लिए मंच उपलब्ध कराना था। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता में 8 पूर्वोत्तर राज्यों से 300 से ज्यादा पंजीकरण और ऑडिशन हुए, जिसके बाद हर राज्य से 2 फाइनलिस्ट चुने गए। ऑल इंडिया रेडियो से बातचीत में राज्य समन्वयक श्याम प्रधान ने कहा कि नाथ फ्यूजन की यह उपलब्धि सिक्किम की लोक और वाद्य संगीत प्रतिभा के लिए महत्वपूर्ण पहचान है।
1: तो नॉर्थ ईस्ट आप जानते हैं कि बैंड, स्पेशली वेस्टर्न बैंड या फिर सिंगिंग, इन सब के लिए बहुत ही प्रचुर मात्रा में वहाँ पर ऐसे बैंड हैं, ऐसे कलाकार हैं और जो मंच में अपने परफॉर्म करते रहते हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड मैं कहना चाहूंगा। और सिक्किम से ये जो नाद ग्रुप बनकर गया, तो आप शायद ये पूछना चाहते हैं मुझसे कि नाद की उपलब्धि क्या है और इनका भविष्य क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जितने भी कलाकार हैं, प्रीतम हो, नरेन हो या फिर घतानी हो या फिर विनोद हो, निमेश हो, घर में तो ये बजा रहे थे, स्टूडियो में बजा रहे थे, लेकिन गुवाहाटी में जाकर ग्रैंड फिनाले में बजाना और सेकंड रनर या टॉप 3 में अपनी जगह बनाना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि, क्योंकि ये घर से निकले हैं, घर से बाहर निकलकर इन्होंने अपनी भूख को जगाया है। कुछ पाने की ललक, कुछ पाने की भूख, कुछ पा लेने की, जीत लेने की जिद कुछ जगाया है और टॉप 3 में इन्होंने अपनी जगह बनाई है। और जब मैंने फोन आया और बधाइयां दी, तो उन्होंने कहा कि सर, हम लोग तो अब इंडिया'स गॉट टैलेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये होता है किसी भूख का जगना। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ के कलाकारों का, नाद के कलाकारों का, नाद फ्यूजन बैंड का 3rd प्लेस में आना एनी स्टार अल्टीमेट म्यूजिक टैलेंट हंट में और इंडियाज गॉट टैलेंट की तैयारी करना या वहां जाने की इच्छा उनमें जागना, इसका मतलब है कि इन्होंने अपने पंखों को खोल लिया है और पंखों में इन्होंने हवा को भर लिया है। क्योंकि देखते हैं, जब बड़े पंख वाले जो पंछी होते हैं, पहले वो पंखों को फड़फड़ाते हैं, फड़फड़ाकर फड़फड़ाते हुए बहुत सारी हवा वो पंखों में भर लेते हैं, उसके बाद वो बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं। तो मेरे ख्याल से नाथ फ्यूजन बैंड के कलाकारों का गुवाहाटी के ग्रैंड फिनाले में जाना, टॉप 3 में अपनी जगह बनाना, शायद इन्होंने अपने पंखों को फैलाकर हवा को भर लिया है, अब तो शायद ऊंची उड़ान है और सामने आसमान है। तो बहुत कुछ ये कर सकते हैं और भविष्य इनका उज्ज्वल है।
0: उन्होंने कहा कि इस तरह के क्षेत्रीय मंच राज्य के उभरते संगीतकारों को अपनी रचनात्मकता दिखाने और सिक्किम की विशिष्ट संगीत परंपराओं को पूर्वोत्तर और देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाने का अवसर देते हैं। एनी स्टार 2026 में गायकों, वाद्य कलाकारों, बैंड समूहों और अन्य संगीत प्रतिभाओं को शामिल किया गया था। प्रतियोगिता 28 अगस्त से शुरू होकर 27 सितंबर को गुवाहाटी में ग्रैंड फिनाले के साथ सम्पन्न हुई।

0: होनहार मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। लवलीना ने एशियाई खेलों की मुक्केबाजी स्पर्धा में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। यह खास बात ये रही कि 2 अक्टूबर को अपने जन्मदिन के ही अवसर पर लवलीना ने फाइनल मुकाबले में चीन की बाओ जी को 5-0 से एक तरफा शिकस्त देकर ये ऐतिहासिक सफलता अर्जित की। ओलंपिक खेलों में कांस्य और पिछले एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने के बाद लवलीना ने इस बार कड़े संकल्प से पदक का रंग बदलकर स्वर्णिम कर दिया। एक छोटे से गांव से निकलकर इस विश्व स्तरीय मुकाम तक पहुंचने के पीछे उनका कठिन संघर्ष, परिवार का अटूट सहयोग और वर्षों का कड़ा अभ्यास शामिल रहा है। आइए सुनते हैं लवलीना बोरगोहेन के शुरुआती संघर्ष से लेकर एशियाई खेलों में स्वर्णिम सफलता हासिल करने की पूरी प्रेरक कहानी।
1: लवलीना बोरगोहेन का जन्म 2 अक्टूबर 1997 को असम के गोलाघाट जिले के बरुमुखिया गांव में हुआ। उनके पिता टीकेन बोरगोहेन छोटे स्तर पर कारोबार करते थे। लवलीना की जुड़वा बहनें लीचा और लीमा किकबॉक्सिंग करती थीं। बहनों को देखकर लवलीना ने भी मार्शल आर्ट की शुरुआत की और बाद में बॉक्सिंग को अपना करियर बनाया। साल 2012 में उनकी मुलाकात कोच पुदुम बोरो से हुई। भारतीय खेल प्राधिकरण के ट्रायल के दौरान बोरो ने उनकी प्रतिभा पहचानी और उन्हें बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देना शुरू किया। इसके बाद लवलीना ने धीरे धीरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। लवलीना के शुरुआती सफर में आर्थिक परेशानियों के साथ सामाजिक चुनौतियाँ भी थी। उन्होंने अपना अभ्यास जारी रखा। 2018 में उन्होंने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था और 2019 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य हासिल किया। 2020 में लवलीना टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली असम की पहली महिला मुक्केबाज बनी। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। यह उनका पहला ओलंपिक था। उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें 2020 में अर्जुन पुरस्कार और 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2021 में उन्हें असम के प्रतिष्ठित असम सौरभ सम्मान के लिए भी चुना गया। 2025 में उन्हें भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में असम की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। टोक्यो ओलंपिक के बाद भी लवलीना का सफर जारी रहा। असम सरकार ने टोक्यो कांस्य पदक के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी और प्रशिक्षण के लिए भी आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया। 2022 के एशियाई खेलों में लवलीना ने 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता था। इसके बाद 2026 एशियाई खेलों में उन्होंने इसी वर्ग में फिर चुनौती पेश की। 28 सितंबर को क्वार्टर फाइनल में लवलीना ने दक्षिण कोरिया की सियोंग सो यून को 5-0 से हराया। 30 सितंबर को सेमीफाइनल में उन्होंने कजाकिस्तान की विश्व चैंपियन नतालिया होमदानोवा को 3-2 से हराकर लगातार दूसरी बार एशियाई खेलों के फाइनल में जगह बनाई। और फिर आया 2 अक्टूबर का दिन। अपने जन्मदिन पर लवलीना का सामना चीन की बाओ जी यही से हुआ। उन्होंने पूरे मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-0 से जीत दर्ज की और एशियाई खेलों का

0: उपलब्धि जोड़ दी। छोटे से गांव से शुरू हुआ लवलीना का सफर अब ओलंपिक कान से एशियाई खेलों के रजत और स्वर्ण तथा कई राष्ट्रीय सम्मानों तक पहुंच चुका है। उनकी कहानी संघर्ष, आत्मविश्वास और लगातार वापसी की मिसाल बन गई है। पूर्व उत्तर डायरी के लिए मैं निशा साहू, आकाशवाणी समाचार।
1: श्रोताओं, ये थी आज की पूर्वोत्तर डायरी। आज के कार्यक्रम में हमने पूर्वोत्तर के खान पान और संस्कृति पर आधारित नई डॉक्यूमेंट्री सीरीज के बारे में जाना, रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने की नई पहल को समझा, नागालैंड में हिंदी व स्थानीय भाषाओं के संरक्षण के संदेश

0: को सुना और सिक्किम के नाद बैंड की संगीत में सफलता और असम के मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन के स्वर्णिम पंच के बारे में बात। पूर्वोत्तर की पहचान उसकी विविधता में है और यहाँ की बदलती तस्वीर विकास के साथ साथ लोगों की मेहनत, परंपरा और प्रतिभा की भी कहानी है। इसी के साथ आज की पूर्वोत्तर डायरी में इतना ही। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं airnsdtalks@gmail.com पर। इसी के साथ इजाजत दीजिए मुझे यानी प्राची प्रिया को, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर डायरी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशरियात आप सबके लिए दस्तयाब है। पेश है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये नगमा था महबूब की मेहंदी फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सबकी नजर है किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है हाय मेरा दिल।
1: दुनिया कहती मुझको पागल, अरे मैं कहता दुनिया को पागल। हाय हाय मेरा दिल।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब सुनिए गीतों भरी कहानी फासले। तहरीर जनाब जितेंद्र पाल सिंह की है।

0: मेरी बेटी कोमल 10 साल की हो गई है, यही मेरा सब कुछ है। इसके सिवाय मेरा और कोई नहीं, मेरी जिंदगी का यही एक मकसद है, वरना मेरी खुद की जिंदगी तो कब की खत्म हो चुकी। जी रही हूँ तो बस बेटी कोमल के लिए।
1: मम्मी आप कहाँ हैं? ओहो आप यहाँ बैठी हैं? क्या तबीयत ठीक नहीं है?
0: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं उठ ही रही थी। तुम तैयार हो गई?
1: हाँ मम्मी, ड्रेस पहन ली है। आप जरा बालों में कंघी कर दीजिए।
0: हाँ हाँ आओ, यहाँ आओ, लाओ कंघी मुझे दे दो।
1: मम्मी आपको याद है ना, आज हमारे स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम है, शाम को आप जरूर आइएगा।
0: हाँ बेटी, मैं वक्त पर पहुँच जाऊंगी। लो कंघी हो गई।
1: अच्छा अब मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय मम्मी।
0: बाय। कोमल अब काफी समझदार हो गई है, अपना काम खुद कर लेती है। जब कोमल छोटी थी तो उसे क्रेच में छोड़कर मैं दफ्तर जाती थी। अब तो घर में वो अकेली रह लेती है, उम्र के हिसाब से तो अभी बच्ची है, लेकिन हालात ने उसे समझदार बना दिया है। बहुत मुश्किल होता है एक औरत के लिए अकेले रहना, बिना मर्द के जीना, लेकिन मैं जी रही हूं एक सहज खामोश जिंदगी। बचपन में माँ बाप का साया उठ गया, हम दो बहनों को मामा ने पाला पोसा, मैं पढ़ती रही, खूब पढ़ाई की, साइंस में बहुत दिलचस्पी थी, बीएससी कर ली, फिर एक साइंसी इदारे में नौकरी मिल गई। इस दौरान जितनी तकलीफें मैंने उठाई वो मैं ही जानती हूँ। फिर मेरी शादी हो गई एक इंजीनियर नरेश के साथ। वो भी मुझ जैसी पढ़ी लिखी बीवी पाकर बहुत खुश हुई।
2: ओ सुमन सुमन, तुम्हें पाकर मैं कितना खुश हूँ, तुम बिल्कुल चौदहवीं का चांद लग रही हो।
0: क्यों छोटी तारीफें करते हैं? मुझ में ऐसी क्या बात है, और वैसे भी मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं।
2: अरे खूबसूरती चेहरे की नहीं दिल की होती है, तुम दिल में ऐसे समा गई हो जैसे।
0: बस बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, तुम तो बिल्कुल दीवानी हो गए हो।
2: और तुम दीवानी? अब तो बस सारी जिंदगी तुम्हारी बाहों में गुजरेगी।

0: नई जगह, नया माहौल। इनका घर कोई खास बड़ा नहीं था, खानदान जरूर बड़ा था। बीमार ससुर सास के अलावा दो देवर, इन सब के बीच मैंने नई जिंदगी शुरू की। फिर मैं दफ्तर भी जाने लगी। सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम खत्म करके मैं दफ्तर जाती। सारा दिन दफ्तर में काम करने के बाद फिर घर का काम। एक मशीन बन गई थी मैं। पहले तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता घर वालों के तेवर बदलने लगे।
1: सुमन, मम्मी कह रही थी कि तुम सारा काम यूं ही छोड़कर चली जाती हो।
0: देखो जी, मैं ये तो नहीं जानती मेरे आने से पहले ये घर कैसे चलता था, कौन करता था काम। मैं तो सुबह से शुरू होती हूँ, रात गए भी फुर्सत नहीं मिलती।
1: तो मम्मी क्या झूठ बोलती हैं? जब सारा काम उन्हें करना पड़े तो तुम्हारा उनको क्या सहारा?
0: ओहो, तो फिर किसी घरेलू लड़की से शादी कर लेते। पहले तो बड़ी बेताबी थी कि नौकरी करने वाली बहू चाहिए।
1: नौकरी करने का ये मतलब तो नहीं कि तुम घर का काम काज ही न करो।
0: देखिए, मुझसे जितना हो सकता है मैं काम करती हूँ। ये भी तो सोचिए, अकेली जान किस किस का काम करे, कोई हाथ हिलाने को राजी नहीं।
1: तुम कहना क्या चाहती हो?
0: यही, आपके दोनों भाइयों के अपने नखरे हैं, काम वाम कुछ करते नहीं, बैठे बैठे हुक्म चलाते रहेंगे। बर्तन जहाँ पड़े हैं वहीं पड़े रहते हैं।

घर का यही मामूल बदस्तूर जारी रहा। कोई घर का काम करने को राजी नहीं था। जहां दफ्तर में मैं साइंस की नई इजादात पर रिसर्च करती, वहीं दूसरी तरफ घर आकर मुझे दो सदी पीछे की औरत बनकर जीना पड़ता। सास भी अक्सर टोकती रहती थी, मुझे तरह तरह की ताने देती थी। मैं अपने शौहर को ये सब बताती थी तो वो उल्टे मुझ पर ही बरस पड़ते थे। कभी कभी तो मैं रो पड़ती थी।

0: ऐसे होता है तुम्हारा काम। दफ्तर से आते ही बिस्तर पर लेट गई। मम्मी ठीक ही कहा करती है।
1: कोमल अभी सोई है, धीरे बोलिए ना, बच्ची जाग जाएगी। बड़ी मुश्किल से सुलाया है।
0: अरे मुझे घर आए कितनी देर हो गई, लेकिन किसी ने पानी तक को नहीं पूछा।
1: घर में और लोग भी तो हैं, क्या मैं ही सबका काम करती रहूं? मेरा काम तो कोई नहीं करता। बच्ची न जाने कब से रो रही थी, कोई उसे चुप कराने वाला भी नहीं था।
0: अरे तो मम्मी से अब इतना काम नहीं होता, खुद अपना वजूद तो उनसे संभलता नहीं, उस पर बच्ची का बोझ और डाल दिया जाए। खुद तो सारा दिन ऐश करती है और मम्मी वहाँ।
1: मेरी नौकरी अब इतनी बुरी लगने लगी है, जब रुपए मांगती हो उस वक्त तो शर्म नहीं आती।
0: देखो
1: कभी पापा मम्मी की दवाइयों के लिए पैसे, तो कभी अपने भाइयों के लिए मुझसे रुपए लेते हो, फिर भी मैं अपना समझ कर रुपए दे देती हूँ।
0: अरे तो हम दोनों को मिलकर ही तो इस घर का खर्च चलाना है, और कौन चलाएगा?

0: क्या वो हमारी कोमल की देखभाल नहीं कर सकते? क्या इस बच्ची के लिए उनका कोई फर्ज नहीं है? लेकिन नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं।
1: तुम्हें बच्ची की ज्यादा परवाह है तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? या फिर और कोई इंतजाम कर लो।
0: मैं नौकरी हरगिज नहीं छोड़ूंगी, समझे? अगर ये हमारी बच्ची की देखभाल नहीं कर सकती तो हम अलग रह लेंगे।
1: नहीं सुमन, मैं अपने मम्मी पापा को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अरे मैं ही तो उनका सहारा हूँ।
0: ठीक है, फिर मैं ही अलग हो जाती हूँ।
1: तुम्हारे जो दिल में आए वो करो, हर वक्त बच्ची का रोना लिए बैठी रहती हो।

0: घर में दूसरे मसलों पर तनाव बढ़ता गया। वो लोग मुझसे रोज रुपए पैसे की मांग करते, बेवजह बच्ची को तंग करते, आखिर बर्दाश्त की भी हद होती है। मैंने इनकार करना शुरू कर दिया। घर में रोज रोज की बहस और तकरार की वजह से मेरे और इनके बीच फासले बढ़ते गए। फिर मैं एक रोज कोमल को साथ लेकर उस घर को छोड़कर चली आई। शुरू में अपनी बहन के पास गई। कुछ महीने बाद मुझे कंपनी की तरफ से क्वार्टर मिल गया। मैं यहां आ गई। कोमल को क्रेच में छोड़ मैं दफ्तर चली जाती। इस दौरान इनकी तरफ से कोई पैगाम नहीं आया। मैंने ये सोचकर घर छोड़ा था कि थोड़े दिनों बाद मेरी कमी महसूस होने पर ये खुद मुझे मनाने चले आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने भी फैसला कर लिया, वापस उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मैं कोमल के साथ अकेले जिंदगी गुजार लूंगी। वक्त गुजरता गया। कोमल बड़ी होने लगी। उसे स्कूल में दाखिल करा दिया। हालांकि मैं कोमल को कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने देती थी, लेकिन कभी कभी वो अपने पापा का जिक्र छेड़ देती।
1: मम्मी, मेरे पापा कहाँ हैं? वो घर क्यों नहीं आते?
0: क्यों? क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? तुम्हें किसी चीज की कमी है क्या?
1: मम्मी, स्कूल में सबके पापा छोड़ने आते हैं।
0: मैं भी तो तुम्हें रोज स्कूल छोड़ने जाती हूँ। तुम्हें जो पसंद होता है लेकर देती हूँ।
1: नहीं मम्मी, मुझे पापा के पास जाना है। बताओ ना, मेरे पापा कहाँ हैं?
0: अच्छा अच्छा, चलेंगे। लो, पहले दूध पी लो।
1: नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी।
0: अरे,
1: कुछ भी नहीं पीऊंगी। मैं पापा के पास जाऊंगी। मुझे पापा के पास ले चलो ना।
0: अरे ले, हमारी कोमल बिटिया तो रूठ गई।
1: हा? मैं आपसे नहीं बोलूंगी कुट्टी।
0: अरे,
1: मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। जब तक पापा नहीं मिलेंगे मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी।
0: अरे रे रे रे,

कितना मुश्किल होता है बच्चों की जिद को पूरा करना। उसे मारना पीटना भी पड़ा। धीरे धीरे कोमल ने ऐसी जिदें करनी छोड़ दी। मुझे आस पड़ोस के लोगों से उनके घर बार की जानकारी जरूर हासिल हो जाती। मेरे ससुर का इंतकाल हो गया था। मेरे शौहर के भाइयों का कोई अता पता नहीं था, लेकिन मैं इन खबरों पर कोई तवज्जो नहीं देती। उन्होंने कौन सी मेरी खबर ली है? अरे, जिंदगी के पिछले अवराह को पलटते पलटते वक्त का पता ही नहीं चला। स्कूल का हॉल खचाखच भरा है, सारी सीटें भर चुकी हैं। कोने में एक सीट खाली दिखाई थी, मैं यहीं बैठ गई। आसपास नजर दौड़ाई तो बगल की सीट पर नरेश बैठे नजर आए। मैं उन्हें देखकर भी अनजान बनी रही। पहला आइटम कोमल और उसकी सहेली का है। पूरे हॉल में दोनों बच्चों की आवाज गूंजने लगी।

0: मम्मी देखिए ये फर्स्ट प्राइज मुझे मिला है।
1: वेरी गुड बेटे।
2: क्या क्या ये हमारी बेटी है?
1: हमारी नहीं, सिर्फ मेरी बेटी है। आज किस मुंह से दावा कर रहे हैं? इतने वर्षों में कभी इसका ख्याल आया?
2: सुमन, सुमन मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी। तुम शायद नहीं जानती, तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर में ऐसी तबाही आई कि मैं कहीं का ना रहा। सुमन चलो आप वापस घर चलो।
1: मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। आपको मेरा साथ चाहिए तो अलग मकान ले लीजिए।
0: मम्मी ये कौन है?
1: बेटी ये तुम्हारे पापा हैं।
0: पापा? मेरे पापा?
2: हाँ, तुम्हारे पापा।
0: आप कहाँ चले गए थे? आप हमसे मिलने क्यों नहीं आते?
2: वो कितनी प्यारी बेटी है हमारी, हम कितना गलत सोचते थे। हमारी बेटी हमारा नाम रोशन कर रही है और हम इसे नजरअंदाज किए हुए थे।
1: ये सब मेरी मेहनत का फल है।

0: मैंने इसे इतना मजबूत कर दिया है कि ये मुसीबत में भी घबराएगी नहीं।
1: पापा आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते?
0: बेटे इनकी राहें हमसे जुदा हैं।
2: नहीं सुमन, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। हम सब अब इकट्ठे रहेंगे।
1: सच पापा?
2: हाँ बेटे।
1: फिर तो बड़ा ही मजा आएगा।
0: लेकिन हमारा घर कहीं और होगा, जिसमें सिर्फ हमारा छोटा सा परिवार होगा।
2: सुमन मुझे मंजूर है। सुमन
0: सच।

0: अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी कहानी फासले, तहरीर थी जनाब जितेंद्र पाल सिंह की और पेशकश प्रेम बोहरा की। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र होंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद कौनैन हैदर से खबरें सुनिए। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत ने अफगानिस्तान के इक्तदार आला इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के तई हिमायत का इजहार करते हुए अफगानिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के तई अपने अजम का इरादा किया है। बैन अलाकवामी तौर पर तस्लीम शुदा यमन की हुकूमत ने हौसियों के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू की है। अकवामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने रुकन मुल्कों को खबरदार किया है कि अगर सलामती काउंसिल में इस्लाहात न की गई तो इसके नतीजे संगीन हो सकते हैं। स्पेन के वजीर आजम पेद्रो सांचेज ने पार्लियामेंट में हार का सामना करने के बाद नवंबर में वक्त से पहले आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। और मर्दों की क्रिकेट में आज लखनऊ में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अलाकवामी मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारत ने अफगानिस्तान के इकतदार आला इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के तई अपनी हिमायत का इजहार किया है। भारत ने रूस के जेर एहतमाम मॉस्को में मुनाकदा अफगानिस्तान से मुतालिक 8वीं मॉस्को फॉर्मेट मुशावरतों के मौके पर अफगानिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के तई अपने अजम का इरादा किया। इस मौके पर भारतीय वफद की क्यादत रूस में भारत के सफीर विनय कुमार और ज्वाइंट सेक्रेटरी PAI डॉक्टर एम सुरेश कुमार ने की। इस मीटिंग में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिजिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नुमाइंदों ने शिरकत की। रूस की वजारत खारजा के मुताबिक शुरका ने मसावी और बाहमी तौर पर मफादात की बुनियाद पर काबुल के साथ तआवुन और आलमी मईशत में अफगानिस्तान की शमूलियत की हिमायत की जरूरत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम में वाकई हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में बहरी बेड़े की मुआवनत करने वाले जहाज FSS-1 को पानी में उतारेंगे और बहरी बेड़े की मुआवनत करने वाले जहाज FSS-5 की तैयारी के बाजाबता आगाज की तकरीब में शिरकत करेंगे। वो जदीद तर बनाए गए स्लिपवे 4 और 300 टन वजनी गोलियात क्रेन का भी इफ्तिताह करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि तौसीशुदा लंबाई और ज्यादा वजन उठाने की सलाहियत से आरास्ता जदीद तर बनाया गया स्लिपवे 4 300 टन वजनी गोलियात क्रेन की मदद से शिपयार्ड को 45,000 डेड वेट टनेज तक के जहाज तैयार करने और उन्हें पानी में उतारने के काबिल बनाएगा। इससे शिपयार्ड की बड़े और पेचीदा बहरी प्लेटफॉर्म तैयार करने की सलाहियत में इजाफा होगा। वजारत ने मजीद कहा कि FSS-1 भारतीय बहरिया के लिए तैयार किए जाने वाले बहरी बेड़े की मुआवनत करने वाले 5 जहाजों में पहला जहाज है और स्टील कटिंग के सिर्फ 18 माह बाद इसे खलीजे बंगाल के पानी में उतारा जाएगा। 43,500 टन वजनी ये जहाज समंदर में मौजूद जंगी बहरी जहाजों को ईंधन, सामान और दीगर जरूरी अशिया फराहम करेंगे, जिससे बहरे हिंद के खित्ते में भारतीय बहरिया की मुसलसल ऑपरेशनल मौजूदगी, सलाहियत और रसाई में इजाफा होगा। FSS-5 की तैयारी के बाजाबता आगाज की तकरीब इस प्रोग्राम की

0: एक बार फिर भारत ने अफगानिस्तान के इक्तदार आला इत्तेहाद और इलाकाई सालिमियत के तई हिमायत का इजहार करते हुए अफगानिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के तई अपने अजम का इरादा किया है। बैन अलाकवामी तौर पर तस्लीम शुदा यमन की हुकूमत ने हौसियों के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू की है। अकवाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने रुकन मुल्कों को खबरदार किया है कि अगर सलामती काउंसिल में इस्लाहात न की गई तो इसके नतीजे संगीन हो सकते हैं। स्पेन के वजीर आजम पेद्रो सांचेज ने पार्लियामेंट में हार का सामना करने के बाद नवंबर में वक्त से पहले आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अलाकवामी मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी है, मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर उर्दू सर्विस आप सुन रहे हैं। पेश है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में यह नगमा आपने सुना। फिल्म का नाम था हसीना मान जाएगी। अगली पेशकश किशोर कुमार आशा भोसले को सुनिए, फिल्म है अपराध।

0: मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में यह नगमा था अप्रैल फूल फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुनिए, फिल्म है मर्यादा।
1: ए,
2: अरे
1: चुपके से दिल दे दे
2: नहीं ते
1: नहीं ते

0: आप सुन रहे हैं फिल्मी दोगाने प्रोग्राम है मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये नगमा था थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया हुआ। फिलहाल वक्त है तारीख साज का। आज का मौजू है कुरतुल ऐन हैदर।
1: कुरतुल ऐन हैदर उर्दू फिक्शन का एक मुमताज और बड़ा नाम है जिन्होंने हिंदुस्तान के तहजीबी धारों के मरबूत तसलसल को जब्ते तहरीर में लाने की कामयाब कोशिश की है। इन्होंने दुनिया के बदलते हुए मंजरनामे को अपनी फनकाराना सलाहियतों के साथ पेश किया है। तहजीबी कदरों की शिकस्त और रेख्त की रफ्तार जो 1947 से पहले सुस्त थी तकसीम के बाद तेज तर हो गई। जिंदगी में अजनबीपन और खालीपन बढ़ गया। कुरतुल ऐन हैदर का दास्तान तराज जहन उसी तहजीबी जवाल को अपना मौजू करार देता है जो बात कुरतुल ऐन हैदर को इनसे कबल के और मौसर फिक्शन निगारों से मुमताज और मुनफरिद करती है। वो ये है कि दूसरे अदीबों ने माजी से सरफ नजर करके हाल को अपना मतमई नजर करार दिया जबकि कुरतुल ऐन हैदर ने माजी को एक हकीकत तस्लीम किया और इससे हाल और मुस्तकबिल से इस तरह मरबूत किया कि उनकी ये कोशिश उर्दू फिक्शन में एक नई कोशिश बन गई। इस तरह इन्होंने वक्त के तजुर्बे को पहली बार वसी कैनवस बख्शा। इन्होंने उर्दू फिक्शन को नए मौजूआत नई तकनीक और नया असलूब अता किया। कुरतुल ऐन हैदर की विलादत 20 जनवरी 1927 को अलीगढ़ में हुई। वो उर्दू के मारूफ अदीब सजाद हैदर यलदरम और नजर सज्जाद हैदर की बेटी थी। तालीम याफ्ता वालदैन ने अपनी बेटी को इब्तदाई तालीम के लिए देहरादून के कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करा दिया। गोया अंग्रेजी की तालीम बचपन से ही कुरतुल ऐन के जहन में रच बस गई थी। मैट्रिक के बाद इजाबेला थोबन कॉलेज लखनऊ में दाखिला लिया और इसी कॉलेज से इंटर पास किया। 1943 में वालिद के इंतकाल के बाद कुरतुल ऐन हैदर का खानदान दिल्ली आ गया और यहां उन्होंने इंद्रप्रस्थ कॉलेज से अंग्रेजी लिटरेचर में बीए किया, फिर लखनऊ से एमए किया। जदीद अंग्रेजी अदब सहाफत और आर्ट यानी मुसव्वरी की तालीम इन्होंने लंदन में हासिल की। बाकायदा मौसीकी भी सीखी। आजादी के बाद कुरतुल ऐन हैदर का खानदान पाकिस्तान हिजरत कर गया। यहां इन्होंने वजारत इतलात नशरियात में इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के ओहदे पर काम किया। बाद में लंदन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में प्रेस अतासी रही। उसी जमाने में उन्होंने लंदन में बीबीसी रेडियो के उर्दू सेक्शन में भी कुछ दिनों तक काम किया। फिर पाकिस्तान वापस पहुंचकर 1960 तक मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर काम करती रहीं। 1961 में हिंदुस्तान वापस आ गईं और अखबार इम्प्रिंट की मैनेजिंग एडिटर के ओहदे पर फाइज हुई। उसके बाद इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया से वाबस्ता रहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में उर्दू की विजिटिंग प्रोफेसर रही। अमरीका की 5 मशहूर यूनिवर्सिटियों में लेक्चर भी दिए। उन्हें मुख्तलिफ एजाजात के अलावा हुकूमत हिंद की जानिब से पद्मश्री और पद्मभूषण का भी खिताब दिया गया। उसके अलावा मुल्क के सबसे बड़े अदबी एजाज ज्ञानपीठ से भी नवाजी गयी। कुरतुल ऐन हैदर ने इल्मी व अदबी माहौल में परवरिश पाई थी। उनके वालिद और वालिदा दोनों तसनीफ व तालीब के काम में सरगर्म थे। कुरतुल ऐन भी इस माहौल से मुतासिर हुई और इन्होंने बहुत कम उम्र में ही लिखना शुरू कर दिया। 1939 में उनकी लिखी हुई कहानी बी चूहिया रिसाला फूल में शाया हुई। उसके बाद कहानियां लिखने का सफर शुरू हुआ और तकसीम हिंद से कबल मुख्तलिफ रिसालों में इनके अफसाने शाया होते रहे। 1947 में इनके अफसानों का पहला मजमुआ सितारों से आगे शाया हुआ। उसमें 14 अफसाने थे जो बेहद पसंद किए गए। इन अफसानों के असलूब तकनीक और मौजूआत के नए पन्ने पढ़ने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। 1954 में अफसानों का दूसरा मजमुआ शीशे

0: के घर 1966 में पतझड़ की आवाज और 1982 में रोशनी की रफ्तार शाया हुआ। अफसाने के साथ साथ कुरतुल ऐन हैदर नॉवल भी लिखती रहीं। तकसीम-ए-हिंद के अलमिये से वो बेहद मुतासर हुए और उसी के जेर असर उन्होंने अपना पहला नॉवल मेरे भी सनम खाने लिखा, जो 1949 में शाया हुआ। यही हादसा इस मशहूर जमाने नॉवल के वजूद में आने का सबब बना, जो आग का दरिया के नाम से 1959 में शाया हुआ और जिसने कुरतुल ऐन हैदर को बतौर फनकार मुमताज मकाम अता किया। इस नॉवल के मुतालिक कुरतुल ऐन ने लिखा है, मैंने मोहब्बत, नफरत, मजहबी कट्टरपन और बेरहमी के बारे में बहुत गौर किया। इंसान की जानिब बेरहमी इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर, इज्तिमाई बेरहमी के साथ तकसीम का मसला फिर सामने आया। इस सवाल ने मुझे फलसफे तारीख की तरफ खींचा। इसका जवाब देने की कोशिश में एक नॉवेल आग का दरिया जमाने को संबल बनाकर मैंने 3000 साल की फैली हुई और उलझी हुई हिंदुस्तानी तारीख में से हिंदुस्तानी शख्सियत की अजमत को गिरफ्त में लाने की कोशिश की। आग का दरिया का असल मौजू हिंदुस्तानी तहजीब है। अहद बहद इस तहजीब में जो तब्दीलियां रोनमा हुई, उनके आईने में कुरतुल ऐन हैदर ने इंसानी वजूद का मफहूम तलाश करने की कोशिश की है। इंसानी जिंदगी के कर्ब को जब तारीख के तसलसल में तलाश किया गया तो मालूम हुआ कि आज की जिंदगी और शख्सियत कोई नई चीज नहीं है, बल्कि वजूद का यह बिखराव, रूह का सन्नाटा और जिंदगी का कर्ब एक मुसलसल अमल है, जिसे हर दौर में और हर कौम के जहीन इंसान नबर्दाजमा होते रहे हैं। आग का दरिया से कबल इनका एक और नॉवेल सफीने गमे दिल 1952 में शाया हुआ था। इसमें भी तकसीम के अलमिये को मौजू बनाया गया है। 1971 में आखिरी शब के हमसफर सामने आया। सवानिये नॉवेल कारे जहां दराज है 2 जल्दों में शाया हुआ। उसके बाद 2 और नॉवेल गर्दिश रंगे चमन और चांदनी बेगम की इशात अमल में आई। कुरतुल ऐन हैदर को जबान व बयान पर बेपनाह कुदरत हासिल है। वो अपनी तहरीरों में मौके महल और किरदार के एतबार से जबान तखली करती हैं। इनके आला तबके के किरदार नफीस जुबान बोलते नजर आते हैं, जिसमें एक किस्म की वजाहत और कशिश पाई जाती है। इनकी तहरीर में जुबान का रचाव और घुलावट इस दर्जे है कि कारी कहीं रुकावट महसूस नहीं करता। वो जुबान के बहाव में मुसन्निफा के साथ बहता चला जाता है और चाहता है कि जल्द अज जल्द कहानी के मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए।
1: आपने सुना प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजू था कुरतुल ऐन हैदर। तहरीर डॉ शमीम अहमद की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: कुमार सानू और आशा भोसले की आवाजों में ये नगमा हमने आपको सुनवाया बलमा फिल्म से। इस नगमे के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, अब आप असदुल्ला से आलमी खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। भारत ने अफगानिस्तान के इख्तदार आला इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के तई हिमायत का इजहार करते हुए अफगानिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के तई अपने अज़्म का इयादा किया है। बैन अवी तौर पर तस्लीम शुदा यमन की हुकूमत ने हौसियों के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू की है। अकवा मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरस ने रुकन मुल्कों को खबरदार किया है कि अगर सलामती कौंसिल में असलाहत न की गई तो इसके नतज संगीन हो सकते हैं। स्पेन के वजीर आजम पेद्रो शनजेज ने पार्लियामेंट में हार का सामना करने के बाद नवंबर में वक्त से पहले आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारत ने अफगानिस्तान के इख्तदार आला इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के तई अपनी हिमायत का इजहार किया है। भारत ने रूस के एहतमाम मॉस्को में मुनक़िदा अफगानिस्तान से मुतालिक 8वीं मॉस्को फॉर्मेट मुशावरतों के मौके पर अफगानिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के तई अपने अज़्म का इयादा किया। इस मौके पर भारतीय वफद की क्यादत रूस में भारत के सफीर विनय कुमार और ज्वाइंट सेक्रेटरी PAI डॉ एम सिरीश कुमार ने की। इस मीटिंग में रूस, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नुमाइंदों ने शिरकत की। रूस की वजारत खारजा के मुताबिक शुरका ने मसावी और बाहमी तौर पर मफादात की बुनियाद पर काबुल के साथ तआवुन और आलमी मईशत में अफगानिस्तान की शमूलियत की हिमायत की जरूरत पर जोर दिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज विशाखापट्टनम में वाकई हिंदुस्तान शिप यार्ड लिमिटेड में बहरी बेड़े की मुआवनत करने वाले जहाज FSS-1 को पानी में उतारेंगे और बहरी बेड़े की मुआवनत करने वाले जहाज FSS-5 की तैयारी के बाज़ाब्ता आगाज की तकरीब में शिरकत करेंगे। वो जदीद तर बनाए गए स्लिप V4 और 300 टन वजनी गोलित क्रेन का भी इफ्तिताह करेंगे। वजारत दिफा ने बताया कि तौसी शुदा लंबाई और ज्यादा वजन उठाने की सलाहियत से आरास्ता जदीद तर बनाया गया स्लिप 4 300 टन वजनी गोलित क्रेन की मदद से शिपयार्ड को 45,000 डेड वेट टोंग तक के जहाज तैयार करने और उन्हें पानी में उतारने के काबिल बनाएगा। इससे शिपयार्ड की बड़े और पेचीदा बहरी प्लेटफॉर्म तैयार करने की सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा। वजारत ने मजीद कहा कि FSS-1 भारतीय बहरिया के लिए तैयार किए जाने वाले बहरी बेड़े की मुआवनत करने वाले 5 जहाजों में पहला जहाज है और स्टील कटिंग के सिर्फ 18 माह बाद इसे खलीज बंगाल के पानी में उतारा जाएगा। वजीर खारजा डॉ ए जयशंकर आज से घाना, कोस डी आइवेरी और इथोपिया के 5 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। इस दौरे के दौरान डॉ ए जयशंकर अपने हम मनसबों के साथ दो तरफा मीटिंगें करेंगे और 3 मुल्कों की क्यादत से मुलाकात करके बाहमी दोस्ती और तआवुन पर मबनी करीबी ताल्लुकात का जायजा लेंगे। बातचीत में तिजारत और इक्तिसादी उमूर, तरक्याती तआवुन, सलाहियत साजी और अवाम से अवाम के रवाबित समेत दो तरफा ताल्लुकात के तमाम अहम शोबों का इहाता किया जाएगा। इसके अलावा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी ख्यालात का तबादला किया जाएगा। जनाब जयशंकर एडिस अबाबा में इलाकाई मिशन सरबराहों की कॉन्फ्रेंस की सदारत भी करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि डॉ जयशंकर का यह दौरा अफ्रीका के साथ अपनी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के भारत के अज़्म की अक्कासी करता है। इससे आलमी खित्ते जुनूब के मुल्कों के साथ भारत की यकजहती को मजीद तकवीत फराहम होगी। स्पेन के वजीर आजम पेद्रो शांजिज ने 29 नवंबर आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। बढ़ते हुए सियासी दबाव के तनाजुर में पेद्रो की हुकूमत को हाउसिंग से मुतालिक 2 इकदाम के लिए पार्लियामेंट में हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया। इससे पहले उन्होंने वजीरों और अपनी सोशलिस्ट पार्टी के अरकान से पूरे हफ्ते सलाहो मशवरा किया। स्पेन के ऐवान जेरी में जुमे को रोज हाउसिंग से मुतालिक हुकूमत के दो अहकामात को मनसूख कर दिया गया।

बुचरेस्ट में भारतीय सिफारतखाने ने जानकारी दी, कमर्शियल बहरी जहाज एमवी रॉयड मामोदोवो में सवार 3 भारतीय शहरी महफूज हैं। इस जहाज पर बुहेरे अस्वद में हमला किया गया था, जिसके सबब 2 गैर मुल्की शहरियों के मरने की इत्तला है। सिलसिलेवार पोस्ट में सिफारतखाने ने बताया कि उसने भारतीय शहरियों से बातचीत की है। उसने ये भी बताया कि इन अफराद में एक जख्मी हुआ है और जेर इलाज है। सिफारतखाने ने मजीद कहा कि भारतीय अमले के अरकान को तमाम तरह की मदद फराहम कर रहा है और अस्पताल के हुकाम के करीबी राबते में है। यमन की बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत ने हौसियों के खिलाफ एक बड़ी फौजी कार्रवाई का आगाज किया है। हुकूमती फोर्सेज ने बुहेरे अहमर के साहिल से मुत्तसिल अहम स्ट्रेटेजिक चौकियों के नजदीक पेशकदमी का दावा किया है। यमन के सदारती लीडरशिप काउंसिल के सदर ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन का नाम दिया गया है, जिसका मकसद हौसियों के कब्जे वाले इलाके को दोबारा हासिल करना, सरकारी इदारों को बहाल करना और राजधानी सनआ का कंट्रोल दोबारा हासिल करना है, जो साल 2014 से हौसियों के जेर कंट्रोल है। यमन की मुसल्लह अफवाज ने कहा है कि उसने सदा, अलजौफ, तैज और मगरबी साहिल पर हौसियों के ठिकानों के खिलाफ 1100 से ज्यादा ऑपरेशन अंजाम दिए। इस कशीदगी की वजह से सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल मक्का इत्तेहाद बराए दिफा की इमरजेंसी मीटिंग मुनाकिद की गई। ये वाकया यमन में एक बड़ी कशीदगी को जाहिर करते हैं। यमन के बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत हौसियों के इलाकों पर कब्जा हासिल करने का इरादा रखती है। सऊदी अरब उसे फौजी मदद फराहम कर रहा है। दूसरी जानिब हौसियों ने सऊदी फिजाई हदूद में हमलों की धमकी दी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में अमरीकी कारोबारी रहनुमाओं से मुलाकात की और भारत की शराकतदारी और सरमायाकारी में मजीद इजाफे के इम्कानात के बारे में तबादले ख्याल किया। जनाब गोयल ने ब्लैकस्टोन के सदर और सीईओ जोनाथन ग्रे, बर्मिन के सीईओ जॉर्ज वॉल्कर और स्टी लाउडर कंपनीज के सदर स्टीफन डीला फेवरे से मुलाकात की। जनाब गोयल ने बताया कि भारत की मैक्रो इक्तसादी बुनियादें मुस्तहकम हैं और इसका सरमाया जाती बाजार मजबूत है। जनाब गोयल G20 वजराए तिजारत की मीटिंग में शिरकत के लिए अमरीका में थे। उन्होंने शिकागो में अमरीका के कारोबारी रहनुमाओं के साथ मीटिंगें की और भारतीय बिरादरी से खिताब भी किया। अक्वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरिस ने रुकन मुल्कों को खबरदार किया है कि अगर अक्वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में इस्लाहात न की गई तो इसके संगीन नतीजे हो सकते हैं। नायब तर्जमान फरहान हक के मुताबिक जनाब गुतरिस ने रुकन मुल्कों पर जोर दिया है कि वो सलामती काउंसिल में तातुल के शिकार इस्लाहात के अमल को आगे बढ़ाएं। फरहान हक ने यह बात वजीर खारजा डॉ ए जयशंकर के उस बयान से मुतालिक सवाल के जवाब में कही, जिसमें उन्होंने कहा था कि अक्वाम मुत्तहिदा के आला तरीन फैसला साज इदारे में इस्लाहात जरूरी हैं ताकि वो मौजूदा दौर में भी मौसिल और इसकी मानवियत बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि 1945 में अक्वाम मुत्तहिदा के क्याम के बाद से उसकी रुकनियत तकरीबन 4 गुना हो चुकी है। फरहान हक ने मजीद कहा कि सेक्रेटरी जनरल गुतरिस मुसलसल ये मौकिफ इख्तियार करते रहे हैं कि चूंकि अक्वाम मुत्तहिदा की रुकनियत में नुमाया इजाफा हुआ है, इसलिए सलामती काउंसिल का दायरा भी वसी किया जाना चाहिए और इसे अक्वाम मुत्तहिदा की वसी तर रुकनियत की ज्यादा मौसर नुमाइंदगी करने वाला इदारा बनाना चाहिए। अमरीका, कनाडा, लातिनी अमरीका के 8 मुल्कों और करीबियाई ममालिक ने ईरान और उसकी हिमायत याफ्ता ग्रुपों पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्जाम लगाते हुए उनसे निमटने के लिए वसी तर तालमेल का अहद किया है। मर्दों की क्रिकेट में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने अफगानिस्तान के इक्तदार आला, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के तई हिमायत का इजहार करते हुए अफगानिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के तई अपने अज्म का इरादा किया है। बैन अल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमन की हुकूमत ने हौसियों के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरिस ने रुकन मुल्कों को खबरदार किया है कि अगर सलामती काउंसिल में इस्लाहात न की गई तो इसके नतीजे संगीन

0: हो सकते हैं। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने पार्लियामेंट में हार का सामना करने के बाद नवंबर में वक्त से पहले आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 टी20 बैन अक्वामी मैच की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। इसी के साथ आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। भारत ने अफगानिस्तान के इकतदार आला इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के तहत हिमायत का इजहार करते हुए अफगानिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के तहत अपने अजम का इआदा किया है। बैनुल अक्वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमन की हुकूमत ने हौसियों के खिलाफ बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू की है। अक्वामी मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने रुकन मुल्कों को खबरदार किया है कि अगर सलामती काउंसिल में इस्लाहात न की गई तो इसके नतीजे संगीन हो सकते हैं। स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सैंजिस ने पार्लियामेंट में हार का सामना करने के बाद नवंबर में वक्त से पहले आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज लखनऊ में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 T20 बैनुल अक्वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
1: वे अपने बड़े सौतेले भाई हरी यानी संजीव कुमार के साथ काफी खुश रहते हैं। हरी अपनी कानून की पढ़ाई पूरी करने 2 महीने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। उसकी नई नई शादी हुई होती है और उनकी पत्नी सीमा को अपने पति के अपने सौतेले भाइयों की इतनी चिंता करने से बहुत थोड़ी जलन होने लग गई थी। वो अपने पति के जाने के बाद उन दोनों को घर छोड़कर मुंबई जाने के लिए मजबूर कर देती है।

कुछ दिनों तक सड़कों में भटकने के बाद उन दो भाइयों को रहने की जगह मिल जाती है। वे दोनों रहीम के घर रुकते हैं, जिसका एक बेटा अनवर और एक बेटी फरीदा है। गोविंद अपने भाई की पढ़ाई का जिम्मा अपने सर ले लेता है और टैक्सी ड्राइवर बन जाता है। वहीं राजेश में लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो एक अमीर खानदान की लड़की मंजू से शादी कर लेता है और उसके ही घर पर रहने लगता है। वर्मा का भाई बंसी राजेश को ड्रग तस्करी के काम से वर्मा ट्रांसपोर्ट कंपनी के गाड़ी से भेज देता है। उसके साथ अनवर भी इसी काम में लगे रहते हैं। एक दिन पुलिस को इसकी भनक लग जाती है और मुठभेड़ में अनवर को बुरी तरह से चोट लग जाती है।

श्रोताओं, जब अनवर को बुरी तरह चोट लग जाती है तो बंसी के गुंडे अनवर का अपहरण करने की कोशिश करते हैं और इस दौरान रहीम को गोली लग जाती है। इस घटना के बाद राजेश को एहसास होता है कि किस तरह बंसी उसका इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन बंसी तब तक सेठ वर्मा की हत्या कर चुका होता है और उस हत्या के आरोप में राजेश को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को उस जगह पर गोविंद मिलता है और उसी पर हत्या का आरोप लग जाता है। उसे अदालत में लाया जाता है जहां हरि जज रहता है। जब हरि के सामने गोविंद की सच्चाई आती है तो वह जज न बनकर उसकी तरफ से वकील बन जाता है। वो सारी सच्चाई सामने ले आता है कि बंसी ही असल हत्यारा है। बंसी अदालत से भागने लगता है। गोविंद उसे अपनी टैक्सी के सहारे पकड़ लेता है। वे तीनों भाई वापस से एक हो जाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी कुछ इस तरह से इस फिल्म की कहानी, और आगे भी हम इस फिल्म के कुछ दिलचस्प किस्सों के बारे में बात करते हैं। फिलहाल सुनते हैं ये अगला गीत जो कि बहुत ही लोकप्रिय, वैसे तो इस फिल्म के सभी गीत काफी फेमस हैं, बट उन फेमस गीतों में से एक है ये अगला गीत।

श्रोताओं, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी जो आज की कार्यक्रम है वो आज की जो फिल्म है वो है 1982 की फिल्म खुद्दार। और अगर इस फिल्म से जुड़े कुल दिलचस्प किस्से के बारे में बात करें तो ये फिल्म अमिताभ बच्चन की उस समय रिलीज हुई थी जब बेंगलुरु में कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें गंभीर चोट लगी थी और पूरा देश उनकी सलामती की दुआ कर रहा था। निर्माता अनवर अली असमंजस में थे कि फिल्म रिलीज करे या नहीं। तब हरिवंश राय बच्चन ने सलाह दी थी कि शो मस्ट गो ऑन, और अमिताभ भी कुछ ऐसा ही चाहते थे। तो वैसे तो उनकी सलाह बहुत ही अच्छी थी, शो मस्ट गो ऑन, हमारा शो भी चलता रहना चाहिए। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

श्रोताओं, अगला जो हमारा दिलचस्प किस्सा है वो ये है कि निर्माता अनवर अली, जो कि हम सब जानते हैं, या जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि अनवर अली महमूद

के छोटे भाई हैं और अमिताभ ने अपने करियर की शुरुआत साथ हिंदुस्तानी से एक साथ की थी। अनवर अली जब आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे तब अमिताभ ने इस फिल्म के लिए अपनी कोई एडवांस फीस नहीं ली और इस फिल्म के और ये भी है कि इस फिल्म के जो लेखक थे वो कादर खान थे। ये उनकी इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसकी कहानी पटकथा और संवाद यानी डायलॉग्स तीनों उन्होंने अकेले ही लिखे थे।

श्रोताओं, हमारे पास भर भर के संदेश आ रहे हैं, तो चलिए उन संदेशों को हम अपने इस कार्यक्रम में सुनते हैं। जो हमारा पहला संदेश है वो है नितेश देवांगन का, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूर्ण राम देवांगन, कृष्णा देवांगन ये हमें लिखकर भेज रहे हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह में लिखकर भेज रहे हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर से। अगला जो संदेश है वो सदानंद मंदूरकर का है और इनके साथ हैं सुशीला देवी का, कुमार गौरव मंदूरकर ये हमें लिखकर भेज रहे हैं डाबकी रोड अकोला से। और जो अगला संदेश है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भरत मक्कर जालंधर से, दिग्दर्शन गौर और कविता गौर हमें संदेश लिखकर भेज रहे हैं। और जो अगला संदेश है वो है मसरूर हसन का और इनके साथ हैं शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। अगला जो संदेश है वो है हीरामणि वर्मा का, ये हमें लिखकर भेज रहे हैं भाटापारा से। कमलकांत गुप्ता हमें लिखकर भेज रहे हैं पिपरिया से, श्रीमती दीपा गुप्ता, शिप्रा गुप्ता, आर कुमार बंडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, हरजिंदर शिंदा हमें लिखकर भेज रहे हैं। इनके साथ है जसवीर जस्सी, सीता और गीता, गांव नथाना पंजाब से, धर्मेंद्र चीपा में लिखकर भेज रहे हैं। और जो साथ ही अगला संदेश है वो है फारूक अली खान का, भूषण खेरा में लिखकर भेज रहे हैं पूनम गजनेजा, जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश गजनेजा और निमित दिशानी। जो अगला संदेश है वो है अनिल मोहन का, इनके साथ ही उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज, मुल्तानी ढांडा से। श्रोता, अगला संदेश है राजकुमार डूडी का, गांव फरांसी, जिला हिसार से, संजय ढींगिया में संदेश भेज रहे हैं और इनके साथ है नमन ढींगिया, पार ढींगिया। अगला संदेश है राधे श्याम देवांगन का, इनके

साथ हैं जगदीश देवांगन चंपा देवांगन छत्तीसगढ़ भवरपुर से। अजीत भावसर हमें लिखकर भेज रहे हैं, इनके साथ है प्रमिला भावसार, भावेश कुमार भावसार, सनी भावसार, राकेश कुमार भावसार गुजरात से, उषा मोहन और इनके साथ हैं अनिल मोहन पीटीआई संसद मार्ग से, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी हमें लिखकर भेज रहे हैं शांति नगर सोनीपत से। और जो अगला संदेश है मेहर अरोड़ा का है और इनके साथ है ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, और पीएस नहावकर, निर्मला विशाल नहावकर और ये हमें लिखकर भेज रहे हैं नरवेल महाराष्ट्र से, और इनके साथ है मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सुपान टाइडे, आशीष और अन्य सदस्य के लोग। तो श्रोताओं चलिए समय की थोड़ी कमी है और इस कमी को देखते हुए हम सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का और इस फिल्म का ये अंतिम गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और इस कार्यक्रम में मुझे यानी दीक्षा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। इस अब से कुछ देर में यानी 1:40 पर आप सुनेंगे समाचार।

0: ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੇਵਾ ਈ ਸੰਜੀਵਨੀ 50 ਕਰੋੜ ਟੈਲੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ 36 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਲੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਟੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਸ ਵਿਚ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 37 ਸਾਲ ਇਸ ਖਿਡਾਰਨ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਖਿਤਾਬ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ 5 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ, 51 ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਅਤੇ 155 20-20 ਮੈਚਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੈਟਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਮੈਚਾਂ ਦੀ 2020 ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਵਿਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਅਕਾਨਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਲੜੀ ਦੇ ਅਗਲੇ 4 ਮੈਚ 9, 11, 14 ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ, ਇੰਦੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਚ ਖੇਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਪਾਨ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਲੋਕ, ਖੇਡ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਟੀਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਾਰਦਿਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ 5-1 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2028 ਲੋਸ ਏਂਜਲਸ ਓਲੰਪਿਕ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਚ ਫੀਫਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਵਿਚ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਰਗੁਏ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨਾਮਾ ਨਾਲ 1-1 ਗੋਲ ਨਾਲ ਡਰਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ਿਲ ਤੋਂ 4-0 ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਚ ਬੈਨਿਨ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਗੋਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਕ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ 32 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 25 ਮੁਸਾਫਰ ਅਤੇ 7 ਚਾਰਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਲਾ ਟਿਨਬੂ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆਈ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਇਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਹਾਤੀ ਐਕਟ 2025 ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਫਾਰਮੈਟਸ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਨਮਸਕਾਰ।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड्स में बेड़े के इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप यकुम को कामकाज में शामिल किया है। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा हलके के लिए जिमनी इंतखाबात के तहत वोटिंग जारी है। ई संजीवनी पर टेली सलाह मशवरे 50 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, जो भारत की डिजिटल हिफ्जान सेहत पहल में एक अहम हसूलियाबी है। और आज शाम लखनऊ में पहले T20 मैच में भारत का मुकाबला वेस्ट इंडीज से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को एक मजबूत और मरबूत समंदरी इको निजाम की जरूरत है, ताकि वो अपने समंदर की ताकत में इजाफा कर सके और मुल्क की दिफाई सलाहियतों को मजबूत बना सके। वजीर दिफा ने आज बेड़े के पहले इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप 1 को कामकाज में शामिल किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी और स्लिपवे 4 नीज 300 टन की एक कोलायत ट्रेन की भी जदीदकारी के काम का इफ्तिताह किया। ये तकरीब विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड में मुनक्किद की गई। जनाब सिंह ने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 को कामकाज में शामिल किया जाना, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखा जाना और HSL में बुनियादी ढांचे की तश्दीद के काम का इफ्तिताह भारत की समंदर से मुतालिक सलाहियतों को मुस्तहकम बनाने की जानिब अहम इकदामात हैं। उन्होंने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1, जिसका नाम सूर्या है, इससे भारतीय बहरिया की रिसाई, पायदारी और मुअस्सर कामकाज को तकवियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस नए स्लिप हुए और गोलायत ट्रेन से शिपयार्ड्स की सलाहियत में मजीद इजाफा होगा कि यहां बड़े जहाजों की तामीर के प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे।
3: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वो भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
2: तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली सीटों और आसाम में 1 लोकसभा सीट पर आज जिमनी इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। तमिलनाडु में मधुरांतकम और तारापुरम, पुदुचेरी में तट्टांसावडी और मगरबी बंगाल में रेजी नगर और नंदीग्राम असेंबली सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसके अलावा असम की नागांव लोकसभा सीट के लिए भी वोटिंग जारी है। वोटों की गिनती जुमे के रोज होगी। भारत की कौमी टेलीमेडिसिन खिदमत ई संजीवनी पर टेली सलाह मशवरों की तादाद 50 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जो मुल्क भर में क्वालिटी हिफ्जान सेहत को मजीद काबिल रसाई, कम खर्च और सभी शहरियों के लिए मुसावियाना तौर पर फराहम करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को फरोग देने की हुकूमत की कोशिशों में एक अहम संगे मील है। इस प्लेटफार्म पर सभी 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मजमूनी तौर पर 50 करोड़ से ज्यादा टेली सलाह मशवरे रिकॉर्ड किए गए। सेहत और खानदानी बहबूद के भारत ने बताया कि इस हसूलियाबी से मुल्क के मौजूदा हिफ्जान सेहत निजाम की तकमील में टेली मेडिसिन के बढ़ते हुए रोल और खासतौर पर देही, दूरदराज और कम सहूलियात वाले इलाकों में रहने वाले शहरियों को दरपेश फासले, जोग्राफियाई और रसाई में दरपेश रुकावटों पर काबू पाने में कामयाबी की अक्कासी होती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से अपील की है कि वो इस शोबे में खिदमत और हमदर्दी के जज्बे से काम करें। आज हिमाचल प्रदेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स बिलासपुर के पहले जलसाए तकसीम असनाद से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि डॉक्टरों को ऐसा रवैया अपनाना चाहिए जिससे इदारे के वकार में इजाफा हो और आइंदा नस्लें उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तहरीक हासिल करें। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को अक्सर खुदा का नुमाइंदा तसव्वुर किया जाता है और इसलिए खिदमत खल्क उनका अव्वलीन मकसद होना चाहिए। सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि डॉक्टरों का हमदर्दी से पुर रवैया मरीजों की काफी मदद कर सकता है।
4: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदलिए और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
2: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संस्कृत एक सुनहरी डोर है जो सभी भारतीय जबानों को बाहम मरबूत करती है। आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री कौमी संस्कृत यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद के दूसरे सालाना जलसे से खिताब करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि हर भारतीय जबान एक अजीम जबान है और इन जबानों से मुल्क की सकाफत में गिना कदर तावुन हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने दीगर जबानों के अलावा संस्कृत को फरोग देने के लिए भी बहुत से इकदाम किए हैं। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 से भारत के इल्मी निजाम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इस विजन को मजीद तकवीयत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि इससे यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारों की हौसला अफजाई होती है कि वो भारत के इस इल्मी निजाम को अपने प्रोग्रामों में शामिल करें। जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि संस्कृत का मकाम साइंस, अदब और फलसफे की दुनिया में शानदार हैसियत का हामिल है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बीजेपी ने आज ये कहते हुए कांग्रेस पार्टी की नुक्ताचीनी की है कि अपोजिशन पार्टियां बिलखसूस कांग्रेस मुल्क में लाकानूनियत का माहौल पैदा करने के लिए मंसूबाबंद तरीके से इकदामात कर रही हैं। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां मुल्क के आईनी इदारों के खिलाफ मंसूबाबंद तरीके से इहानत आमेज बयानात दे रही हैं।
1: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
2: जल शक्ति के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने आज कहा है कि भारत ने पानी के तहफ्फुज़ के सिलसिले में जो कोशिशें की हैं वो इस मुल्क की तारीख में सबसे बड़ी कोशिशों में से एक हैं। इनसे जनभागीदारी और इमदाद बाहमी पर मबनी विफाखियत को मजबूत बनाने की अक्कासी होती है। नई दिल्ली में पानी से मुतालिक इख्तरा की एक सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पानी की किल्लत वाली रियासतों में मुख्तलिफ देही तरक्याती इकदाम किए गए हैं। अपोजिशन पार्टियों ने आज पार्लियामेंट हाउस से निर्वाचन सदन तक एक एहतजाजी मार्च किया जो भारत के इंतखाबी कमीशन का सदर दफ्तर है। ये मार्च खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के अमल में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ और आला इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को बरतरफ करने के मुतालबे के तहत किया गया। अलबत्त जब ये मुजाहरीन आकाशवाणी के करीब इंतखाबी कमीशन की तरफ बढ़ रहे थे तो हिफाजती अमले ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस सदर और राज्यसभा में अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर धरना दिया। यमन में आज लड़ाई में उस वक्त शिद्दत आ गई जब सऊदी अरब की कयादत में इत्तेहादी फोर्सेज ने हूसियों के खिलाफ नई कार्रवाइयां अंजाम दी। सऊदी इत्तेहाद फोर्सेज के मुताबिक उसकी बहरी अफवाज ने जद्दा में एक कार्रवाई करते हुए असलहा के जखायर, धमाका खेज मवाद से लैस कश्तियों और बहरी बारूदी सुरंगों को जखीरा करने वाली तनसीबात को तबाह कर दिया। मर्दों के क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। 2026 एशियाई खेलों में सोने का तमगा और एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल करने के बाद भारत वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड्स में बेड़े के इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप यकुम को कामकाज में शामिल किया है। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल में 5 असेंबली हलकों और आसाम में 1 लोकसभा हल्के के लिए जिमनी इंतखाबात के तहत वोटिंग जारी है। ई संजीवनी पर टेली सलाह मशवरे 50 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं जो भारत की डिजिटल हिफ्जाने सेहत पहल में एक अहम हसूलियाबी है। आज शाम लखनऊ में पहले T20 मैच में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। 2026 एशियाई खेलों में सोने का तमगा और एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज में 2-1 से जीत हासिल करने के बाद भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
5: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील बिछाई। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 मैच आज शाम लखनऊ में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को अपनी समुद्री शक्ति को और बढ़ाने तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत और एकीकृत समुद्री इकोसिस्टम की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावतरण किया। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की कील रखी और 19 स्लिपवे 4 तथा 300 टन क्षमता वाली गोलियाथ क्रेन का भी उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का शुभारंभ, फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की नींव रखना और एचएसएल में उन्नत बुनियादी ढांचे का उद्घाटन भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
1: शिप बिल्डर्स जानते हैं कि कील केवल जहाज का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, कील उस जहाज की फाउंडेशन है, कील उस जहाज की बैकबोन है। आज जो कील रखी गई है वो भारत की मैरिटाइम फ्यूचर की एक और मजबूत यह फाउंडेशन है, ऐसा मैं मानता हूं।
0: श्री सिंह ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के कार्यों की सराहना की।
1: हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की नेशनल मैरिटाइम कैपेबिलिटी का कस्टोडियन है। पिछले 8 डिकेड्स से भी अधिक समय से एचएसएल ने देश की मैरिटाइम और डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है।
0: श्री सिंह ने कहा कि सूर्य नामक फ्लीट सपोर्ट शिप 1 भारतीय नौसेना की मारक क्षमता, सहन शक्ति और परिचालन प्रभावशीलता को बढ़ाएगा। श्री सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की समुद्री और रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: वर्ष 2025 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का दर्जा प्राप्त होना इसके ट्रांसफॉर्मेशन और पिछले वर्षों में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों का ही परिणाम है। इसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड इस उपलब्धि से इंस्पायर होकर मैरिटाइम के क्षेत्र में अपने प्रयासों को और तेजी से एग्जीक्यूट करेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा के कोरापुट में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कोरापुट डिवीजन से निर्मित 2000वें एयरो इंजन हस्तांतरण कार्यक्रम में भी उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के वास्ते ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रूपये से अधिक का अनुबंध किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह परियोजना 3 वर्ष की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। तमिलनाडु की मधुरांतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों, पुदुच्चेरी की तट्टांचावडी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। मतगणना शुक्रवार को होगी। तमिलनाडु में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों धारापुरम और मधुरांतकम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार मधुरांतकम में वोटिंग प्रतिशत 35.55 और धारापुरम में 37.28% है। चुनावों को देखते हुए सुरक्षा कड़ी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। मतगणना 9 अक्टूबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में बात गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परियोजना के बारे में।
2: नर्मदा नदी में साधु बेट पर 182 मीटर की भव्य ऊंचाई के साथ स्थापित स्टैच्यू

0: पूरी दुनिया को, हमारी भावी पीढ़ियों को उस व्यक्ति के साहस, सामर्थ्य और संकल्प की याद दिलाती रहे जिसने मां भारती को खंड खंड टुकड़ों में करने की जो साजिश को नाकाम करने का पवित्र कार्य किया।
1: इस महत्वाकांक्षी परियोजना ने शांत जनजातीय क्षेत्र को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र में बदलकर स्थानीय आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी रोजगार और समृद्धि के नए द्वार खोल दिए हैं। एकता नगर में पिंक ऑटो चलाकर अपने परिवार का आधार बनी देविकाबेन तड़वी बताती है।
2: स्टेटमेंट आने के बाद हमें जॉब भी मिली हुई है, हम यहाँ पे पिंक ऑटो चलाते हैं और बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ते हैं और रोजगारी मिली है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ही फायदा है।
1: अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और पर भी उपलब्ध है।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर कृपया से फिर से सुन लें। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 50 करोड़ से अधिक टेली परामर्श किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
5: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ ओपीडी परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टरों से सेवा और करुणा की भावना के साथ चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में आए व्यापक परिवर्तनों का उल्लेख किया।
6: वर्तमान समय में चिकित्सा पद्धतियों, तकनीकी और स्वास्थ्य सेवाओं के स्वरूप में तेज गति से परिवर्तन आ रहा है। भविष्य में इस परिवर्तन की गति को और भी तीव्र होने की संभावना है। ऐसे परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बनाए रखने के लिए आपके लाइफ लॉन्ग लर्नर बने रहना चाहिए। आप अपनी नॉलेज को रिसर्च का रूप दीजिए, रिसर्च के इनोवेशन में बदले और उस इनोवेशन में लोगों के जीवन को बेहतर बनाए।
3: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि संस्कृत वो स्वर्णिम सूत्र है जो भारत की सभी भाषाओं को जोड़ती है। श्री राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत की हर भाषा समृद्ध है और सभी भाषाओं ने देश की संस्कृति को समृद्ध करने में योगदान दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है। अप्रैल में यह अनुमान 6.6% था। यह संशोधन उम्मीद से बेहतर आर्थिक वृद्धि के बाद किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की दर से बढ़ी। इसमें मजबूत निजी खपत और निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विश्व बैंक के अनुसार निजी उपभोग आगे भी आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर देश में अराजकता

0: का माहौल बनाने की सुनियोजित कोशिश करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पिछले कई हफ्तों और महीनों से विपक्ष अराजकता का माहौल बनाने के लिए निर्वाचन आयोग को निशाना बना रहा है।
1: कुछ हफ्तों से इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हुए देश में एक एनार्की और अराजक माहौल बनाने का प्रयास आज भी कांग्रेस पार्टी करने वाली है, जो तथाकथित रैली और मार्च के विषय में हम सुन रहे हैं। हमारा ये दायित्व है कि बहुत सटीक रूप से विषय को देश के जनता के सामने रखना और उन्हें समझाना कि आखिर इलेक्शन कमीशन में क्या हो रहा है।
0: श्री पात्रा ने कहा कि विपक्षी पार्टियां समय समय पर सेना, सर्वोच्च न्यायालय और ईवीएम को निशाना बनाती रही हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म 6 में मॉडिफिकेशन का आदेश नहीं दिया था।
1: सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने कोई मॉडिफिकेशन फॉर्म 6 में हो इस प्रकार का आदेश नहीं दिया था, और जिस प्रकार राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फॉर्म 6 इलीगल है, उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट सीजेआई द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल नहीं किया गया। सीजेआई ने कहा है सुनवाई होगी तो इस पर हम देखेंगे। उससे पहले देश में अराजकता का माहौल और भ्रम का माहौल बनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के विरोध और आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने को लेकर हमला बोला है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस परिवार ने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला घोटकर राजशाही शासन चलाया है। यमन में आज सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की हुती ठिकानों के खिलाफ नई कार्रवाई के बाद संघर्ष तेज हो गया है। गठबंधन ने बताया कि उसने सना में बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले एक प्लेटफॉर्म और सादा में एक भंडारण केंद्र को नष्ट किया। हालांकि हुती समर्थित मीडिया ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने धुबाब और बाब अल मंदब में सऊदी समर्थित बलों की बढ़त को रोक दिया है। दोनों पक्षों के बीच ताजा संघर्ष यमन की सरकार के ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन के बाद हुआ है। एक रिपोर्ट।
2: यमन सरकार की सेना ने सोमवार को हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन शुरू किया। इस अभियान को सऊदी अरब की एयर पावर का समर्थन मिल रहा है। सरकार का कहना है कि अभियान का मकसद हूतियों के कब्जे वाले इलाकों को वापस लेना और राजधानी सना पर फिर से नियंत्रण हासिल करना है। आज सऊदी लेड कोएलिशन ने कहा कि उसकी नौसेना ने हुदेदा में कार्रवाई की। गठबंधन के मुताबिक हूतियों के हथियारों के डिपो, विस्फोटकों से लदी नावों के ठिकाने और सी माइंस को नष्ट किया गया। दक्षिणी रेड सी के जलमार्गों पर संभावित हमलों को भी नाकाम किया गया। गठबंधन ने यह भी दावा किया है कि उसे सना में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म को नष्ट कर दिया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
0: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की 2020 श्रृंखला का पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। इकाना स्टेडियम में यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, दक्षिण आंध्र कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में फ्लीट सपोर्ट शिप 1 का जलावरण किया और फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की केल बिछाई। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों के लिए मतदान जारी। ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन का आंकड़ा पार किया। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 0.5% से बढ़ाकर 7.1% किया। और भारत वेस्टइंडीज के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम लखनऊ में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है प्रोग्राम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। श्रोताओं, कुछ कलाकार पर्दे पर आते हैं और किरदार निभाते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो पर्दे पर आते ही अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। इनका चेहरा याद रह जाता है, इनकी आवाज याद रह जाती है और इनका अंदाज याद रह जाता है।

और सालों बाद भी इनका नाम लिया जाए तो आंखों के सामने इनकी फिल्में घूमने लगती हैं। आज की कहानी ऐसे ही एक अभिनेता की है जिसकी जिंदगी ने सिनेमा से लेकर राजनीति तक का हर क्षेत्र में अपनी एक नई मिसाल पेश की है।

जी हाँ दोस्तों, आज हम याद कर रहे हैं बॉलीवुड के स्टाइलिश आइकॉन, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी और बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी विनोद खन्ना जी की। 6 अक्टूबर 1946 यानी आज ही के दिन पेशावर में इनका जन्म हुआ था। इनकी कहानी सिर्फ फिल्मों की नहीं बल्कि संघर्ष, समर्पण, आध्यात्मिक खोज और जनसेवा की भी है। इनकी लाइफ से जुड़े कुछ अनसुने किस्से हम आपको सुनाएंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म कुर्बानी का ये शानदार सा गीत।

दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं विनोद खन्ना जी, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, विनोद खन्ना जी के जो पिता थे किशन चंद खन्ना, कपड़ा डाई और केमिकल के बिजनेस से जुड़े थे, और माँ कमला खन्ना एक हाउसवाइफ थी। परिवार में तीन बहन और एक भाई भी थे। विभाजन के बाद परिवार मुंबई आ गया था और इन्होंने सेंट मेरी स्कूल और सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में पढ़ाई की। दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी शिक्षा ली और फिर नासिक में देवला ली के बोर्डिंग स्कूल में भी रहे। बोर्डिंग स्कूल में फिल्म 16 साल और मुगले आजम देखकर मन में आर्टिस्ट बनने की तमन्ना जाग उठी। इसके अलावा इन्हें क्रिकेट खेलने का भी शौक था, पर कॉलेज के दिनों में थिएटर ग्रुप से जुड़ने के बाद इन्होंने एक्टर बनने की ठान ली। महज 22 साल की उम्र में विनोद खन्ना को फिल्म मन का मीत में काम करने का मौका मिला। दिलचस्प बात ये थी कि शुरुआत में ही इन्होंने नेगेटिव भूमिका निभाई। इसके बाद भी इन्होंने पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्मों में भी नेगेटिव और सपोर्टिंग किरदार निभाए। हालांकि ये कभी एक ही इमेज में बंधकर नहीं रहे। कभी खलनायक, कभी पुलिस अधिकारी, तो कभी गंभीर नायक, कभी रोमांटिक किरदार जो पूरी कहानी में अपनी अलग जगह बना लेता था। दोस्तों, अब कहानी पहुंचती है उस दौर में जब विनोद खन्ना का नाम बड़े बजट की फिल्मों में बड़े कलाकारों और बड़े संगीत से जुड़ने लगा था। पर अभी सुनिए इनकी फिल्म मेरे अपने का ये सॉन्ग।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज विनोद खन्ना जी की। अब आते हैं विनोद खन्ना के करियर के उस दौर पर जब वो सिर्फ अभिनेता नहीं रहे थे, वो एक बड़े फिल्म स्टार बन चुके थे। 70 का दशक हिंदी सिनेमा और विनोद खन्ना के लिए महत्वपूर्ण दौर था। स्टोरी और म्यूजिक में बदलाव हो रहा था और दूसरी तरफ मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर भी चल रहा था। विनोद खन्ना ने इस दौर में हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर, एंथोनी, परवरिश मुकद

सिकंदर का सिकंदर, इनकार, कच्चे धागे जैसी फिल्मों से अपने स्टारडम को मजबूत किया। वहीं 80 के शुरुआत में इन्होंने कुर्बानी जैसी शानदार फिल्म की। लेकिन दोस्तों, किसी भी कलाकार के जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहां सफलता के बावजूद मन किसी और सवाल का जवाब तलाशने लगता है। विनोद खन्ना के जीवन में भी ऐसा ही एक मोड़ आया और यही मोड़ विनोद खन्ना को सबसे अलग बनाता है। इस सवाल से पर्दा हटाएंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म लहू के दो रंग से ये गीत।

दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप जुड़े हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। और जो आज के कलाकार हैं वो हैं विनोद खन्ना और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपके पास नाम है, शोहरत है, फिल्में हैं, दर्शकों का प्यार है और करियर लगातार ऊंचाइयों पर है, लेकिन उसी समय आपका मन आपसे एक दूसरा ही सवाल पूछने लगे। जी हाँ दोस्तों, विनोद खन्ना के जीवन में आध्यात्मिकता का आकर्षण इसी दौर में बढ़ा। वो ओशो से जुड़े और दिसंबर 1975 में उनके शिष्य बने। बाद में इन्होंने फिल्मों से दूरी बनाई और अमेरिका में समय बिताया। यहाँ इन्होंने बागवानी, सफाई और रोजमर्रा के दूसरे काम किए। एक बड़े फिल्म स्टार के लिए ये जीवन बिल्कुल अलग था। फिल्मी दुनिया से इनका ये ब्रेक लगभग 5 साल तक रहा, लेकिन जिंदगी हमेशा एक ही दिशा में नहीं चलती। कुछ समय बाद इन्होंने फिल्मों में वापसी का फैसला किया। 80 के दशक के मिडिल में इनका फिल्मी सफर फिर आगे बढ़ा। वापसी के बाद इन्होंने इंसाफ, दयावान और चांदनी जैसी शानदार फिल्मों में अपनी चमक बिखेरी। इतना ही नहीं, फिल्म हिमालय पुत्र में इन्होंने प्रोड्यूसर की भूमिका भी निभाई और अपने बेटे अक्षय खन्ना को लॉन्च किया। और इसी बीच इनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, अभिनेता से राजनेता बनने का। पर वक्त हो गया है इनकी फिल्म दयावान का ये एवरग्रीन सॉन्ग सुनने का।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। दोस्तों, विनोद खन्ना की कहानी का एक महत्वपूर्ण पहलू इनका सार्वजनिक जीवन भी है। 1997 में ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और अगले साल पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। ये इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव था, जिस व्यक्ति ने दर्शकों तक कैमरे के सामने किरदार निभाए थे, वो अब वास्तविक जीवन में लोगों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी निभा रहा था। 2002 में इन्हें केंद्र सरकार में सांस्कृतिक और पर्यटन राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद इन्होंने विदेश राज्य मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। 2014 में वो एक बार फिर गुरदासपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। वाकई विनोद खन्ना जी की रियल स्टोरी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं लगती। वहीं अगर विनोद खन्ना की निजी जिंदगी की बात करें तो इनके दो बेटे हैं, राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना, जिनको जो खुद भी मूवीज में काम करते हैं एज ए एक्टर, वो हमारे मूवीज में हमें दिखते हैं। और वहीं अगर हम अवार्ड्स की लिस्ट बात करें तो विनोद खन्ना जी की फिल्म फेयर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2018 में मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है, जो भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में और हमारे कुछ श्रोताओं के मेल आ चुके हैं, हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं। ये हैं पश्चिम सिंहभूम, झारखंड से शिवगोपा, प्रेमगोपा, कपिल, शिवान, संगीता, लिपि और दीपाली गोपा। और ये हैं सैयद मंसूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, सहारनपुर से हैं ये, और बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया हैं हमारे साथ। सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी शांतिपत्र से हैं। छत्तीसगढ़ भवरपुर से राधेश्याम देवगन, चंपा हैं साथ में जुड़ी हुई हमारे साथ। ये चिरमरी कलारी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह और राम सहोदर नारायण प्रसाद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, ये हैं गांव नथाना पंजाब से हरिजिंदर छिंदा, जयसवीर, सीता गीता भी हमारे साथ हैं। और विनोद खन्ना जी पर केंद्रित, जी हाँ, हम विनोद खन्ना जी पर केंद्रित आज का कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़ और कविता गौड़ हैं ये हमारे साथ। बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्किन, मेघा, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु रिधान खुराना हमारे साथ हैं। तो चलिए श्रोताओं, इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं।

दोस्तों कुछ कलाकार चले जाते हैं मगर उनका काम उनके साथ नहीं जाता। उनकी फिल्में रहती हैं, उनके किरदार रहते हैं, उनकी आवाज रहती है और दर्शकों की यादों में उनका चेहरा बना रहता है। विनोद खन्ना जी का संपूर्ण जीवन अलग अलग रंगों से बिखरा हुआ था, लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक अंतिम अध्याय था। 70 साल की उम्र में 27 अप्रैल 2017 को इनका निधन कैंसर की वजह से हुआ। इनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सपने देखो, मेहनत करो, शांति खोजो और समाज की सेवा करो। तो दोस्तों आज की इस कहानी को यहीं समेटते हैं। अगले शो में आपके साथ ऐसे ही किसी महान कलाकार के जीवन से जुड़ी दिलचस्प बातें शेयर करेंगे। फिलहाल अपने दोस्त राखी बैनर्जी को दीजिए अनुमति, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। सुनते रहिएगा गीत, गुनगुनाते रहिएगा संगीत, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर।

नवरूफर फिल्म के नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, मौसीकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश नागिन फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। साथ में आशा भोसले की आवाज भी शामिल है।

0: आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1.71 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। पेश खिदमत प्रोग्राम आदाब नुमा।
1: आदाब नुमा के एक और शुमारे में आप सभी का खैर मकदम है। मेजबान नईम का आदाब कबूल कीजिए।

हालांकि पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वह अपने आसमानी सफर की यादों में डूबा हुआ सितारा के हुस्न जमाल की दाद देता रहा, मुस्तकबिल के ख्वाब बुनता रहा। जैसे रात की खुशियां दिन में भी मुंतकिल हो जाएंगी और वह अपने बहुत से दोस्तों की तरह सितारा को साथ लेकर बाइक पर घूमा करेगा, पार्कों के चक्कर काटेगा, मॉल्स में काफी पिएगा और घंटों उसे देखता रहेगा। अपने दोस्तों को गर्लफ्रेंड के साथ बाइक पर देखकर उसकी हसरतों के चिराग रोशन हो जाते, शायद रश्क का जज्बा भी उसके वजूद में आहें भरने लगता। क्या ये मुमकिन है कि उसके वजूद में हसरतों के चिराग रोशन न हो? वह इन बातों पर भी गौर करने लगा। अब किसी दोशीजा को देखते हुए उसकी कैफियत अजीबोगरीब क्यों होने लगती है? क्या उससे बचा नहीं जा सकता? और अगर बचा जा सकता है तो उसका तरीका क्या है? वो फिर सोचता, आखिर बचा भी क्यों जाए? अगर इस उम्र में लड़कियों को देखकर उसमें हरारत और तवानाई पैदा न होगी तो किस उम्र में होगी? वो किसी तरह उस रात का खात्मा नहीं चाहता था। सोच के समंदर में गोताजनी करके अपने दिल की तसल्ली के लिए मोती चुनना चाहता था और रात शहर की तरफ सरकती जा रही थी। तेजी के साथ सुबह नमूदार हो रही थी, पांव फट चुकी थी। मुआज़िन अजान की सदाएं बुलंद कर रहा था, मर्ग बांग दे रहे थे। वह अपने बिस्तर को छोड़ना नहीं चाहता था। लेटा लेटा न जाने कितनी कहानियां बुन चुका था और उसकी कहानियों का रावी थकने का नाम नहीं ले रहा था। सूरज की शुआएं उसके कमरे की खिड़की के शीशे को चीरती हुई उस तक पहुंची तो वह बिस्तर से उठ गया। अब उसे दिन भर की भाग दौड़ सताने लगी थी। हालांकि इससे पहले वो अपने कामों और जिम्मेदारियों की अदायगी में बड़ा मुतहर्रिक रहता। दिन की रोशनी उसे लहू लुहान करती। कॉलेज जाओ, वहां ऐरे गैरे की शक्लें देखो, हसरतों के चिराग रोशन करो, वही बोरिंग क्लास, तरह तरह के गैर मुतवक्के सवालात, इम्तिहानात की तैयारियों में मसरूफ हो जाने की नसीहतें और आखिर में लब्बैक यस्सर हाजिर जनाब जैसे घिसे पिटे फरसूदा जुमले और फिर अब्बा के साथ दुकान में बैठकर ग्राहकों से तू तू मैं। वो हांफता कांपता कॉलेज पहुंचा। उसके हाथ में चंद किताबें और एक नोटबुक थी। वो सर झुकाए सरशारी में चला जा रहा था। वो खुद को बदला बदला सा महसूस कर रहा था, आंखें नीची थी, कुछ सोच रहा था। कई बार कई लोगों से टकराने से बचा, कई दोस्त दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। आमतौर पर जब वो कॉलेज पहुंचता तो वो भी उनमें शामिल हो जाता और वो सब कुछ करता जो ग्रेजुएशन के तलबा करते हैं। लड़कियों को देखना, किसी जोड़े को देखकर मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा देना, अपनी किसी क्लासमेट से छेड़छाड़ करना और फिर हंसते खिलखिलाते हुए अपनी राह लेना। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी करने की उसे ख्वाहिश नहीं थी। वो आंखें नीचे किए चला जा रहा था। कई साथियों ने उसे हैरत से देखा और आवाज भी दी। कई आवाजों को उसने नजरअंदाज कर दिया। चंद दोस्तों ने उसके इन्हमाक में मुखिल न होने की सोचकर उसे उसकी हालत पर छोड़ देना ही मुनासिब समझा। क्लासरूम के बाहर रुकैया खड़ी थी, उसे वो अक्सर परेशान करता। उसने हाथ लहराते हुए कहा, क्या बात है, बड़े बदले बदले नजर आ रहे हो। उसे भी उसने नजरअंदाज करना चाहा, शायद वो समझ चुकी थी। उसने दोबारा जुमला उछाला, लगता है कोई आसमानी परी मिल गई है, इसलिए हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। आसमान यानी दूसरी दुनिया, परी यानी दूसरी मखलूक, और दोनों ही जमीन पर रहने बसने वालों का ख्वाब होते हैं। आसमान की बुलंदियों को कौन नहीं छूना चाहता? आसमानों पर तो हमेशा और हमा वक्त इंसान कमंदे डालने की तगोदो करता है और उस पर सजे हुए रंग बिरंगे सितारे। एक बार फिर उसकी तवज्जो रात पर मरकूज हो गई। गुजरी हुई रात की यादें उसके वजूद में रेंगने लगी। सितारे का लम्स, देर तक उससे बातें और आसमानी सैर। रुकैया, चाहे तुम जितना खाम ख्यालियां पाल लो, आसमानों पर कमंदे तो हम ही डाल सकते हैं और परियां भी हमारा ही मुकद्दर हैं। यूं भी तुम उन परियों का करोगी क्या? रुकैया भी जैसे तैयार थी। उसने हमले को महसूस कर लिया था, एक पूरी जिंस जद पर थी। उसने फौरी अम्मा हव्वा, मरियम, आमना और ना जाने कितनी अजीम खवातीन का हवाला एक सांस में दे दिया। चांद, मरीख और दिगर सैयारों पर पहुंचने वाली औरतें भी उसकी नोके जबान पर थीं। वह आखिरी जुमला अपनी जबान से अदा करके उसे बेजबान कर गई थी। तुम चाहे जितना उड़ लो,
और अब के

बगैर एक कदम नहीं चल सकते। कभी माँ की हैसियत से, कभी बहन की हैसियत से और कभी बीवी की हैसियत से औरत तुम्हारा सहारा बनती रहेगी, तभी तुम एक मुकम्मल इंसान बन सकते हो। वो खजिल सा दाएं बाएं देखने लगा, उससे कोई जवाब नहीं बन पड़ा। वो आगे बढ़ गया जैसे वो कहीं खो गया हो, अपने मन की दुनिया में, अपने तन की दुनिया में, शायद उससे भी ज्यादा अपनी यादों की दुनिया में। उसकी जबान खामोश थी, उसका दिल उन तल्ख तरीन बातों की तस्दीक कर रहा था। क्लास खत्म होने के बाद वो अपनी सरशारी में अपनी दुकान की तरफ निकल गया और फिर वही नजारा था, दिल को बैठा देने वाला, आंखों को औंधने पर मजबूर कर देने वाला। किसी तरह वो सख्त तरीन औकात भी निकल गए और एक बार फिर फिजा पर अंधेरा छाने लगा। स्ट्रीट लाइटें जल चुकी थीं, मार्केट बर्की कुमकुमों से जगमगा रही थी, आसमान पर चांद रोशन था। उसके वजूद में उकता देने वाला जज्बाती इंतजार था, सितारों के चमक उठने का, दिल की कलियां खिलने का। वो दुकान से घर पहुंचते ही टॉप फ्लोर पर जाने की तैयारी करने लगा। उसने बउजलत खाना खाया और छत की तरफ बढ़ गया। छत पर पहुंचते पहुंचते सितारों की चमक और चांद की चांदनी अपने शबाब तक पहुंच चुकी थी। आसमान की लामुतनाही चादर, सितारों की शक्ल में कुदरती कमकमे, चांद की नरमो गुदास रोशनी और फरहत बख्श फिजा ने उसे अपनी जानिब मुतवज्जेह कर लिया। रात का ये शबाब और सूरज की तमाजत उसे बचपन से ही सताती थी, लेकिन वो ये फैसला किए बगैर भी मुतमईन नहीं होता कि कुदरत का निजाम उरूज जवाल दुनिया के हक में है और फितरत इंसानी के लिए भी जरूरी है। वो उरूज जवाल गुरूब तुलु इफ्तराक इत्तेफाक के फलसफे में उलझ गया, हालांकि उसके लाशऊर में एक इंतजार भी था जो उसे अपनी गिरफ्त से आजाद नहीं होने दे रहा था। अचानक उसकी आंखें एक सितारे पर टिक गईं, वही सितारा जिसके साथ गुज़श्ता रात वो पहरों खेलता रहा और बातें करता रहा था। वो आज उसे अपनी आंखों की पुतली में नक्श करना चाहता था। सितारा बिल्कुल उसके करीब आ गया था। वो गुज़श्ता रात की तरह उसके लम्स को बेकरार नहीं हुआ, वो जरा पीछे हटा और उसे घूरने लगा। सितारा ने उसे अपने करीब बुलाया, लेकिन वो खामोश उसे देखता रहा। जरा और पीछे हटते हुए उसकी जबान फिसल गई, शायद नागन, नहीं, मैं वही सितारा हूँ जिसकी तमन्ना तुम सोते और जागते करते हो। उसके सामने एक हसीन दोशीजा थी, रात दिन की तगोदो का माहसल, उभरे उभरे दोनों गाल, नूर में नहला देने वाली दो आंखें, खड़ी नाक, हंसता हुआ किताबी चेहरा, सुराही नुमा गर्दन, मखरूती उंगलियां, भरा भरा जिस्म, कद दरमियाना, पुरकशिश अदाएं। अपने कदम उसने आगे बढ़ाए उसे करीब से देखने के लिए, उसे गुलगीर करके उसमें हुलूल होने और उसे खुद में तहलील करने के लिए, और अचानक हवा का एक गर्म झोंका उसके चेहरे से होकर गुजर गया जिसमें एक सर्द लहर सी दौड़ गई। ताहद निगाह जमीन पर नागों और नागनों का रक्स शुरू हो गया। वो कभी बाईं कभी दाईं जानिब हटने लगा, अपने पैरों को कभी उठाता और कभी गिरा देता। सितारा ने फौरन उसे सहारा दिया। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, मैं, करीब आ जाओ। सितारा ने उसे इतना करीब कर लिया कि दोनों की सांसों की आमदोरफ्त एक दूसरे को महसूस होने लगी। सितारा ने अपने वजूद का एहसास कराया, उसके दिल की कैफियत यकीनन जरा बदली, लेकिन शक अब भी बाकी था। उसके लिए यह मुमकिन भी नहीं था कि वो सितारा को छोड़ दे, मगर बेयकीनी खुद को खाकिस्तर नहीं करना चाहती थी। कुर्बत के एहसास के साथ बेयकीनी जर्रे में तब्दील होती जाती और फिर सांस लेने लगती। सितारा उसे हवाओं के दोष पर ले उड़ा और पीछे पीछे बेयकीनी नक्शे कदम गिनती रही। सितारा उसे उसके दिल की कैफियत बताता रहा, वह हैरतजदा सा सुनता रहा। प्रवास की रफ्तार बढ़ती चली गई, जमीन नीचे, बहुत नीचे छूट चुकी थी। दूर से ही एक महल नजर आया, उनके प्रवास का रुख महल की तरफ था। महल के इर्द गिर्द कबूतरों के उड़ने वाले गोल कहीं जाके छुप गए थे। तेज रोशनी महल के हुस्न में इजाफा कर रही थी, उसे देखने वालों की भीड़ थी मगर वो बंद था, लोग उसे बाहर से ही देख रहे थे। महल के सदर दरवाजे की तरफ आती हुई सीधी सड़क पर सितारा उसे ले आया। प्रवास की रफ्तार कम होने लगी,
काले।

0: पूरे लोगों का चेहरा साफ नजर आने लगा। सितारा अब भी कुछ कह रहा था, शायद बेयकीनी खत्म करने की नसीहत कर रहा था और वो महल की तरफ देख रहा था। एक लम्हे के लिए उसने सोचा, काश ये महल मेरा होता, मैं और सितारा इसी महल में रहते। महल का तर्ज से तामीर मुसलमानों जैसा था, मगर वो मुगलों की तामीरात से कुछ मुनफरिद था। सह मंजिला महल, हर मंजिल के बाद वाली मंजिल पहली मंजिल से जरा छोटी और चौथी मंजिल पर इंतहाई खूबसूरत सफेद गुंबद और गुंबद के ऊपर सुनहरा कलश। हसीन सफेद गुंबद, हर किनारे से बड़े बड़े बर्की बल्ब से निकलने वाली पीली रोशनी पूरे महल में रंगो नूर की बारिश कर रही थी। बेशुमार मेहराबों के दरवाजे, महल के चार जानिब खाली जमीन पर मखमल से ज्यादा सुकून बख्शने वाली हरी घास। उसका दिल मचल उठा, वो चाह रहा था किसी तरह महल का दरवाजा खुले और वो सितारा को साथ लेकर अंदर दाखिल हो जाए, महल के हर मेहराब नुमा दरवाजे से दाखिल हो और निकले, ठंडी ठंडी और नर्म गुदास घास पर टहले और टहलता हुआ सितारा से बातें करता रहे। फिर महल के बिल्कुल दरमियान में जाकर सबके सामने सितारा को गुलूगीर करे और पैमाने वफा बांधे, बेयकीनी के खात्मे का ऐलान करे, तमाम मंजिलों की सैर करके महल के गुंबदों को अपने हाथों से छुए। तीसरी मंजिल पर गुंबद के नीचे, निचली दो मंजिलों से ऊपर, जहां से सीधी तारकोल की सड़क और सड़कों के उस पार, रेड लाइट से भी दूर, बहुत दूर, पहाड़ के ऊपर कुछ इमारतें और रेंगती हुई गाड़ियां, आते जाते लोग, काले पीले टेम्पू और ऑटो नजर आ रहे थे। वहां जाकर खड़ा हो जाए, सितारा का हाथ अपने हाथ मिले, दोनों हाथों को ऊपर उठाए और नीचे वाले जज्बात से ममलू होकर तालियां बजाएं, वो हाथों को हिलाकर उनका जवाब दे। सितारा गोया उसके दिल की तमन्ना और मुरादों से वाकिफ था, उसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी। वो उसके आपे सरापे को बगौर देख रहा था, जैसे उसके नौजवान वजूद में एक दुनिया आबाद है जिसमें दरिया का सा बहाव है, समंदरों का सा मौज और थपेड़ा है, रिवायत से बगावत की आग है। सितारा गौर करता रहा कि उसके अंदर मौजूद आग के शोलों को किस तरह समेटे और महफूज कर ले, ताकि जिंदगी के किसी खुनक मोड़ पर वो काम आए। ये तो बंद है, चलो पीछे चलकर बैठते हैं, सितारा ने उसे महल की तरफ महव देख कर कहा और वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। महल के पीछे एक पार्क था, पार्क में एक मुजस्मा नसब था। पार्क की जमीन हमवार और मुसत्तह नहीं थी, जगह जगह छोटे छोटे टीले थे, थोड़ी थोड़ी दूर पर दरख्त थे। पार्क के बाहर सड़क के पार किसी महारानी के नाम के कॉलेज का बोर्ड बर्फी रोशनी में नजर आ रहा था। आओ यहाँ बैठते, सितारा ने उसका हाथ नीचे की तरफ खींचते हुए कहा और वो सितारा के साथ एक दरख्त के साय में बैठ गया। वहाँ उन दोनों के अलावा शायद तीसरा कोई नहीं था। रह रह कर वो चौंक जाता, बातें करते हुए कभी जमीन को गौर से देखने लगता और उसकी जबान से निकल जाता नाक। फिर सितारा हजार दलीलों का सहारा लेता और उसे बताता, यहाँ सांप ना नाग है, सिर्फ मैं हूँ। सितारा की बात को वो सुनने और उसे देखने लगता, गोया सितारा के वजूद पर वो यकीन की हद तक पहुँच कर भी बेयकीनी का शिकार हो रहा हो। उसे लगता वो जब से पैदा हुआ है तभी से नागों और नागनों के हिसार में है, वो उसे डसना चाहते हैं, वह हर लम्हा खौफ से दोचार है। सितारा ने उसे समझाया, दुनिया में सिर्फ नाग और नागन ही नहीं बसते, किसी पर तो यकीन करना ही पड़ता है, वरना एक लम्हा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। चांद चलता हुआ काफी दूर निकल गया था, चांद की रोशनी महल के दूसरे किनारे को रोशन कर रही थी, दरख्त के साये में कदरे अंधेरा था। वो सितारा की तरफ खिसक गया, सितारा उसे देखता और मुस्कुराता रहा, उसे तसल्ली देने की कोशिश करता रहा। सितारा को हंसता हुआ देखकर उसे लगा मोगरा के फूल उसके इर्द गिर्द काफी तादाद में खिल गए हैं। उसने अपने पैरों को फैलाया और सितारा की तरफ अपने कंधे और सर को झुका दिया। सितारा ने भी अपने पैरों को फैला दिया था, उसकी तरफ अपने कंधे को झुका दिया था। उसका सर सितारा के कंधे पर आकर टिक गया। सितारा ने अपने रुखसार को उसके सर से मस किया तो उसने जोश जज्बात में सितारा को अपनी बाहों में समेट लिया। उसके बदन में कहीं कोई सख्ती नहीं थी, होंठ हिल रहे थे, जबान चल रही थी, हवा के झोंके के साथ मोगरा की खुशबू अब भी उसे सुकून पहुंचा रही थी। सितारा मुस्कुरा रहा था। चुप क्यों हो जाते हो, कहो। कहने से दिल हल्का होगा, जहन से गुबार छट जाएगा। और फिर उसने घुटी घुटी आवाज में कहना शुरू कर दिया, हर तरफ नाग हैं, बस नाग जो मुझे डसना चाहते हैं। उनका फन मेरे जिस्म तक आ तो जाता है, लेकिन मैं होशियार हो जाता हूँ। जहाँ कहीं जाता हूँ, कॉलेज, ऑफिस, दुकान, हर जगह मुझे नाग ही नाग नजर आते हैं, जो मुझे डसना चाहते हैं। मुझ में क्या है ऐसा जो वो मुझे मार देना चाहते हैं? मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे वजूद में अपना जहर भर कर मुझे जहरीला बनाना चाहते हैं। कहते कहते उसका जिस्म ठंडा होने लगा, पसीना आने लगा। उसने सितारा को दबाने की कोशिश की। जब वो बोलते बोलते चुप हो जाता तो सितारा बातों को मरबूत कर देता। उसका सर सितारे के कंधे से नीचे की तरफ लटक कर सितारा के सीने के करीब पहुंच चुका था। इसके बावजूद उसके वजूद में कोई हलचल नहीं थी। सितारा ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और फिर वही हाथ आगे बढ़ाया और उसके रुखसार को मस करते हुए उसके चेहरे को दोबारा सितारा के कंधे तक पहुंचा दिया। उसने अपने सर को जरा देर के लिए उठाया, फिर सितारा के रुखसार से उसका रुखसार छू गया। सितारे ने बड़ी आहिस्तगी से कहा, मुझ तक पहुंचने का रास्ता उन नागों से होकर गुजरता है। उसे धूप की शिद्दत महसूस हुई, वो जाग गया। दिन काफी निकल चुका था, घर के सारे लोग अपने अपने कामों में लग चुके थे। सितारा कहीं नहीं था, उसके इर्द गिर्द नागों का बसेरा था।
1: तो सामने भी आप सुन रहे थे नूरैन अली हक का ये अफसाना हसरतों के चरार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब वो सरप्राइज जिसका जिक्र हमने प्रोग्राम के आगाज में किया था, यानी नायाब तोहफा। और हम नायाब तोहफा क्या है ये हम जरूर बताएंगे। चलिए बता देते हैं, कलामे शायर में मैना कुमारी की शायरी। क्यों हुए सरप्राइज आप लोग ना? बिल्कुल हुए होंगे जनाब। खूबसूरत आवाज, दिलकश अंदाज, क्या कहने उनके। इस अदाकारा यानी ट्रेजी क्वीन की अदाकारी के तो सभी कायल हैं, सभी दीवाने हैं, उसमें हम भी शामिल हैं और आप भी। लेकिन इनकी शायरी के भी क्या कहने जनाब। बहुत ही खूबसूरत अंदाज, सोजो गुदाज आवाज में, और कहीं ना कहीं दर्द व अलम महसूस होता है। तो आइए उनके कलाम से महसूस होते हैं उन्हीं की आवाज में।
2: अकेलेपन के उसे बेकिनार सहरा में पंछी बिखरी हुई तकदीर की लकीरों में घिरी सफेद कपड़ों से जख्मों को अपने ढांपे हुए फिर वही मैं, वही चौराहा, वही बेनाम सुकूत, धुआं धुआं सी नजर और वही सन्नाटा। फिर से एहसास ने पहना है बेहिसी का लिबास, सवाल बन गई बेवजह जिंदगी फिर से, जवाब जिसका वही हैरान सी खामोशी है।

मेरा माजी मेरी तन्हाई का ये अंधा शिकाफ, ये के सांसों की तरह मेरे साथ चलता रहा, जो मेरी नब्स की मानंद मेरे साथ जिया, जिसको आते हुए जाते हुए बेशुमार लम्हे अपनी सलाह उंगलियों से गहरा करते रहे करते गए, किसी की ओख पा लेने को लहू बहता रहा, किसी को हम नफस कहने की जुस्तजू में रहा, कोई तो हो जो बेसाख्ता इसको पहचाने, तड़प के पलटे अचानक इसे पुकार उठे, मेरे हमशाह मेरी उदासियों के हिस्सेदार, मेरे अधूरेपन के दोस्त, मेरे अकेलेपन, तमाम जख्म जो तेरे हैं मेरे दर्द तमाम, तेरी कराह करहता है मेरी आंखों से, तू एक मस्जिद वीरान है, मैं तेरी अजां जो अपनी ही वीरानगी से टकरा कर ढकी छुपी हुई बेवा जमीन के दामन पर पढ़े नमाज, खुदा जाने किसको सजदा करे।

फूल हूं या रेत पे कदमों का निशान, शमा हूं फूल हूं या रेत पे कदमों का निशान, आपको हक है मुझे जो भी जी चाहे कहने, आपको हक है मुझे जो भी जी चाहे कहने। ये नूर कैसा है राख का सरंग पहने, बर्फ की लाश है लावे का सा बदन पहने, गंगी चाहत है रसवाई का कफन पहने, हर एक कतरा मुकद्दस है मैले आंसू का, एक हुजूम अपाहज है आबे कौसर पर, ये कैसा शोर है जो भी आवाज फैला है, तो पहली छाव में बदनामियों का डेरा है, ये कैसी जन्नत है जो चौंक चौंक जाती है, एक इंतजार में जिस्म का नाम खामोशी, और एहसास बेकरां पे ये सरहद कैसी, दर दीवार कहां रूह की आवारगी के, नूर की वादी तलक लम्स का एक सफर तवील, हर एक मोड़ पे बस दो ही नाम मिलते हैं, रात कह लो जो मोहब्बत नहीं कहने पाओ, रात कह लो जो मोहब्बत नहीं।

0: कैसा लगा हमारा ये सरप्राइज, और जनाबेमन कैसी लगी उनकी शायरी और उनका अंदाज? हम तो दीवाने हैं उनके, बहुत अरसे के बाद उनका ये शायराना अंदाज हमें सुनने को मिला। उम्मीद करते हैं आपको भी ये अंदाज जरूर पसंद आया होगा। आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।
1: सलाम, आप सुन रहे थे प्रोग्राम अदबनुमा, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब पेश है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश सुनिधि चौहान की आवाज में, विशाल शेखर की मौसीकी से जयनामा फिल्म है द डर्टी पिक्चर।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और साथियों को, फिल्म थी कालिया, मौसीकार थे आर डी बर्मन। आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लता मंगेशकर और साथियों को सुनिए फिल्म दुल्हन एक रात की, मौसीकार है मदन मोहन।

आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप असदुल्ला से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिप यार्ड्स में बेड़े के इमदादी जहाज फ्लीट सपोर्ट शिप 1 को कामकाज में शामिल किया है। उन्होंने फ्लीट सपोर्ट शिप 5 की बुनियाद रखी है। भारत ने अफगानिस्तान के इकतदार आला इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत के तई हिमायत का इजहार करते हुए अफगानिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के तई अपने अज़्म का इरादा किया है। आलमी बैंक ने मौजूदा माली साल के लिए भारत की मजमूई घरेलू पैदावार GDP की शरह तरक्की का तखमीना 0.5% बढ़ाकर 7.1 कर दिया है। सऊदी क्यादत में इत्तेहादी फोर्सेज की जानिब से हौसियों के खिलाफ कई कार्रवाईयों के तनाजुर में यमन में लड़ाई ने शिद्दत इख्तियार कर ली है।

मेरे कलब दा नारा अली अली बन जोगन लाल कलंदर दी बन जोगन लाल कलंदर दी एह कहंदी फिरा मैं गली गली मेरी रूह विच वसदा लाल सखी मेरी रूह विच लव मेरी रूह विच वसदा लाल सखी मेरी रूह विच वसदा लाल सखी मेरे कलब दा नारा अली अली मेरे कलब दा नारा अली अली बन जोगन लाल कलंदर दी बन जोगन लाल कलंदर दी एह कह

झल्ला पक्षी पक्षी झल्ला में पक्षी झल्ला पक्षी पक्षी झल्ला में पक्षी।

दोस्तों अज भी देश पंजाब प्रोग्राम दे विच गल करांगे विश्व निवास दिहाड़े दी। प्रोग्राम होएगा अज दी गल कथन लोग दे विच एक कहानी पेश की जाएगी करतारा टांगे पर जा।

0: यार फिर वो इतने कड़ी पैसे किथे गई। ओ आ पई कड़ी, आए आ भाई लग गई कड़ी। कुर्ते ते दाग है, ये नहीं भी चिट्टा ही कुर्ता पाउंदे हैं। वो ठीक है, लग जू दाग ते कोई गल नहीं, सरदारा करतारा किसी नालों घट आ। चल बई करतारिया, आ हो गए भी तैयार, चलो बई चल बई।
1: बस करतारे विच इक्को ही घाट सी, विआह नहीं सी होया। जिस तरह उसनू रूप ते जवानी मिले हुए सी, जापदा सी, उसदे काम नहीं सी आ रहे। पता नहीं की कारण सी, उसदे घर विच नाथर वाली दा पैर नहीं सी पै सकिया। करतारा छड़ा छड़ा सी।
0: छड़े छड़ाक बंदे दी वी काहदी जिंदगी यार, कोई हाल नहीं, कोई हज नहीं। सुनिया सी छड़े छड़ाक लोग मौजा करदे आ, पर की हज है, कोई जीना है छड़े बंदे दा? कोई हज नहीं यार, तीनी तो बिना बगाने चुल्ले ते आस रखनी, दाल ते अपने घर ही रिजे तां ही स्वाद आंदा है। रब्बा कल्ला तो रुख भी ना होवे जहान दे विच।
1: करतारा जंज तां नहीं सी चढ़िया, रब ने उसकी सुनी। उसके घर एक सोहनी तो जवान तीवी आ गई सी, ते उसका घर वस गया सी। उसका नाम दुलारी सी। पता नहीं करतारा उसनू केड़े देश तो लिया सी कि उसकी बोली साडे वर्गी शुद्ध पंजाबी नहीं सी। थोड़ी थोड़ी ओपरी जी जापती सी, उंज औरत तां चंगी सी, पर उसकी आदत थोड़ी थोड़ी खुली ते निशंग सी, जिवे कि उसने घट घट दा पानी पीता होवे। तीवी की उह तां मर्द सी, कदे कदे उह मर्दां वांग ही उच्ची उच्ची बोलदी ते उन्हां वांग ही गालां भी कढ़दी। शर्म हया नूं उह छेती अपने नेड़े नहीं सी फटकण दिंदी। उसका रंग गोरा ते नैन नक्श तिखे सन। जद आई सी तो शुकीन बन के रही। उसकी उम्र इस समय कोई 30 वरे दे नेड़े सी, पर बहुत छोटी ते पतली नजर आंदी। वो अपने आप नूं फिल्मी हीरोइना तो घट नहीं सी समझदी। करतारा अपने पिंड नहीं मंडी विच ही रहिंदा सी। पहला तां वो पिंड जांदा सी, हुण दुलारी आ गई सी तां मंडी विच ही उसने एक चुबारा लै लिया सी ते इत्थे रहिण लग पिया। उसनूं भला किसे दी की परवाह, वो सी दुलारी सी ते उसदा टांगा घोड़ा सी, वो अपने रंगी वसदा सी। बस करतारे नूं थोड़ी थोड़ी पीण दी भी आदत सी, बल्कि आदत नहीं शौक सी। दुलारी बहुत चंगी सी, करतारे दे पीण दी आदत नूं वो बुरा नहीं सी समझदी, सगों आप भी कदे ना कदे घुट ला लैंदी। वो घरेलू तीवियां वर्गी पालतू चिड़ी नहीं, आजाद पंछी सी। पंज कु वरे बीत गए, दुलारी विच हुण थोड़ा थोड़ा फर्क आ रहा सी। हुण पहला नालों सादे कपड़े पाउंदी ते थोड़ा घट शकीन हुंदी। पहला उसने ज्यादातर साड़ी लाई हुंदी सी, पर हुण देसी कपड़े पाउंदी। कपड़े भी अगे नालों हुण थोड़ा घट मैले हुंदे सी। कुछ कु वरे पहला तां उह कंघी पट्टी करदी, हार शिंगार लाउंदी ते मंजे उत्ते बैठी रहिंदी, पर हुण उह रोटी टुक तों बिना होर काम भी करदी सी। गर्मियां दे दिनां विच करतारा अपने घोड़े नूं बाजार विच ही बांधदा सी। दुलारी कख पाउंदी ते कदे कदे उह घोड़े नूं हुण खरखरा भी करदी।
2: इधर इधर इधर इधर इधर से कहा ना, इधर इधर ओए इधर से इधर से इधर से खा, इधर से खा ना।
1: हुण तां ओह करतारे नाल कई बार हथ भी बटाउंदी। 20 वरे हो गए सी। इस समय दुलारी दी उम्र 50 वरे तो उत्ते सी ते करतारे भी 55 तो। पर करतारा पहला वांग ही बहुत जवान ते तकड़ा सी, ते दुलारी कुछ कमजोर हो गई सी। करतारा चंगा भला सी, पर पता नहीं की होया सी, अचानक उस उत्ते जिवें कोई फांग जिहा डिग पिया होवे। बिल्कुल चुपचाप ते निकारा जिहा हो गया सी। कद तां उंज ही वड्डा।

जिसम उठ ही पा रहा, पर सब किस काम दा। हुण करतारा चुप चुपीते मंजे उत्ते बैठा रहिंदा। उसका मत्था थोड़ा थोड़ा खिंचिया ते खिंचिया खिंचिया हुंदा। उसनूं आपणे नाल कुछ चिड़जी हो गई सी, पर हुण कर वी की सकदा सी। जापदा सी उसनूं कोई दिमागी जिही बीमारी सी। ये बीमारी वधदी गई। हुण करतारा ते दुलारी बाजार दे विच ही किसे होर पासे रह रहे सी। उजाड़ जिहा पासा सी। दुकान दे चबूतरे उत्ते उसदा मंजा हुंदा सी। गर्मियां दी रुत्ते करतारा बहुत औखा हुंदा। उसदियां अखां चढ़ियां ते मत्था खिचिया खिचिया हुंदा। उसदे पेड़ धोती ते पिंडा नंगा हुंदा। सिर दे वाल भी मुन्ने होए। उसदियां अखां आंडियां वांगू वड्डियां ते चिट्टियां हो गईयां सी। जद कोई उत्थों लंघदा तां मंजे उत्ते बैठा बस आ ही करन लगदा। सिर्फ एक दुलारी ही सी जो उसके मन के हालात नूं बखूबी समझदी सी। हां सच, करतारा ते दुलारी दोवें एक जिंद एक जान सी। तीजा कोई भी नहीं सी, ना पुत ते ना धी। दोवें बस एक दूजे ले ही बने सी। मां बाप भी नहीं सी, सिर्फ इको भरा सी। अपना तंगा वाहुंदा सी। उस नाल करतारे दा कोई बहुता नेड़े दा वास्ता नहीं सी। करतारा बिल्कुल बेबस सी। उस तों आस ही नहीं सी कि उन्हें तंगा वाएगा। गुजारा बहुत मुश्किल सी। कुछ कु वरे तां दुलारी ने अपना तंगा किराए उत्ते दे दित्ता सी, पर ये काफी नहीं सी। किराएदार हेरा फेरी ते बेईमानी करदा सी। आखिर उसने सोचा कि हुण ओह आप ही तंगा वाएगी। रोब तां उहदा उंज बहुत सी, इवीं तां उह सी ही नहीं। सारे इहो कहिंदे सी ओह तां संगमां मर्द है। दुलारी ने कमीज ते सलवार तां उंज ही रखी, पर चुल्ले दी थां सिर उत्ते पग दे बन ली ते टांगे उत्ते बह गई। मर्दां दे समाज विच जेकर औरत पग बन्ने तां वी तां पूरा पैंदा है। इह तां भला कोई हज है। दुलारी ने अपनी चुन्नी जिही पग बन ली सी ते गुत उंज ही पिछे लमक रही सी। दुलारी अपने तंगे उत्ते वांगा फड़ के तनी बैठी, अगे उत्ते आई ते उच्ची हाक मारन लगी। दुलारी हुण दुलारी नहीं, करतारा तांगे वाला सी।

और जिंदा मन

ਸਾਨੀ ਕਿਸੋਰਾ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡਾ

ਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ

निभाया, कितने लिए पागल के अगर

इशारे नी लगे अखियां ते कदी करी ना इशारे नी हाय तेनू तकियां लोकां नू गश बंद।

0: फसल बीमा किसान लिए कुदरती जोखम दे समय एक वित्तीय सहारा है, इसलिए समय से जानकारी लवो, योग होने ते फसल दी बीमा करवाओ, ते नुकसान होने तो तुरंत सूचना दियो। ते होर जानकारी लिए अधिकारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल या फिर अपने जिले दे खेती बाड़ी विभाग नाल संपर्क किया जा सकता है। इस नाल ही किसान वाणी दा प्रोग्राम हुण खत्म हुंदा है। आग्या चाहांगे, जय हिंद जय किसान। प्रोग्राम किसान वाणी दे प्रयोजक सन खेती बाड़ी ते किसान भलाई मंत्रालय भारत सरकार।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना नाल छोटे किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित।
2: 60 साल की उम्र वालों को 3000 रुपए महीने की पेंशन होगी सुनिश्चित।
1: 55 रुपए तो 200 रुपए महीने की किस्त देके योजना में शामिल हो सकते हैं 18 तो 40 साल तक के किसान।
2: इस योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सारे किसान भैन भरा इस योजना के लाभ लिए जन सेवा केंद्र में जान
2: अपना नाम मुफ्त दर्ज करा।
1: अन्नदाता की मेहनत में समर्पित पेंशन नाल सुरक्षित।

0: ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਜਯਾ ਭਾਰਤੀ। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सब को स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण पर टीम को बधाई दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है जिसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। भारत ने आज ओमान के तट के पास पनामा के झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज एमटीऑन पीस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हुरमुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय जहाज पर हमला किया गया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज के 19 सदस्यों वाले चालक दल में 17 भारतीय नागरिक हैं। हमले में 11 भारतीय सहित 12 चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। भारत ने कल काला सागर में वाणिज्यिक मालवाहक जहाज एमवी रोयार्ड मामा 2 पर हुए हमले की भी निंदा की है। चालक दल के सदस्यों में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसपैठ करने की भी आलोचना की।
3: कांग्रेस के प्रथम परिवार जिसने पिछली 4 पीढ़ियों से लोकतंत्र का गला पकड़कर राजतंत्र का शासन चला रखा है लोकतंत्र के आवरण में, और आज आकाशवाणी में घुसपैठ करने का प्रयास किया।
1: भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के साथ पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर उपचुनाव 16 अक्टूबर को होगा। बम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ। निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर दर्ज हुआ। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस होलजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। नमन धीर मैच में डेब्यू कर रहे हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। आज के किसान वाणी कार्यक्रम में हम बात करेंगे धान की कटाई, मड़ाई और भंडारण में सावधानियां और साथ ही साथ योजना रहेगी प्रधानमंत्री मानधन योजना। और इसके अलावा हम बात करेंगे मौसम के हाल की, मंडी के भाव की और कृषि सलाह और साथ ही साथ मनोरंजन भी हमारे इस कार्यक्रम में रहेगा।
4: बिल्कुल सही कहा मंजीत। और साथ ही साथ जैसा कि आपने कहा कि जो योजना रहेगी वो है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भारत सरकार की लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद किसानों को प्रति माह 3000 रुपए की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है। साथ ही यदि पेंशन प्राप्त करने के दौरान किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी जिसमें पति या पत्नी को पेंशन का 50% यानी कि 1500 रुपए प्रति माह पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता है। साथ ही यदि हम कंट्रीब्यूशन या अंशदान की बात करें इसमें लाभार्थी की उम्र के अनुसार 55 रुपए से लेकर 200 रुपए प्रति माह तक जमा करने होते हैं और उतनी ही राशि केंद्र सरकार द्वारा जमा की जाती है। अगर 18 वर्ष की आयु में हम इस योजना से जुड़ते हैं तो हमें 55 रुपए प्रति माह देना होता है। 30 वर्ष की आयु में जुड़ने पर हमें 110 रुपए प्रति माह देना होता है और 40 वर्ष या उससे अधिक की आयु में जुड़ने पर हमें 200 रुपए प्रति माह देना होता है। और मंजीत, इसकी जो एलिजिबिलिटी की बात करें तो क्या होता है इस बारे में भी हमें बताएं।
3: अगर हम पात्रता की बात करें तो आवेदन करने की आयु होती है 18 से

0: 40 वर्ष के बीच होना आवश्यक है। और भूमि की बात करें तो भूमि की सीमा छोटे और सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य भूमि है वो इसके लिए पात्र है। और पंजीकरण या फिर नजदीकी जनसेवा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण किया जाना आवश्यक है।
1: तो भाई ये है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो हमारा सभी से आग्रह है कि जरूर अगर आप पात्र हैं तो इस योजना का लाभ लें। और मंजित, हम आज हम धान की कटाई मडाई और भंडारण में सावधानियों पर बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर दिनेश कुमार जो कि प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसान नई दिल्ली से।
2: डॉक्टर साहब कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। हमारे किसान भाई बहन इस समय जो धान की फसल लगाई हुई थी अब उसकी कटाई का समय है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम धान की कटाई करते हैं तो हो सकता है कि पड़ोसी खेत में धान अच्छा पका हो लेकिन हमारी वो अभी स्थिति नहीं है, लेकिन देखा हम कई बार ऐसा निर्णय ले लेते हैं लेकिन बाद में उसका खामियाजा हमें मंडी में जाकर के भुगतना पड़ता है। तो धान की कटाई का सही समय क्या है, इसकी पहचान कैसे करें?
3: जी बिल्कुल, बहुत जरूरी होता है क्योंकि कच्चा धान काट दिया तब भी नुकसान होता है और अगर ज्यादा पक गया तब भी नुकसान होता है।
2: जी
3: तो सही दशा का जानना बहुत जरूरी है। आमतौर पे दाने का रंग जब पीला पड़ना शुरू हो जाए किसान भाई समझते हैं, और खास करके लगभग 80-82% 25% बालियों का रंग जो है वो पीला पड़ जाए और फिर मुंह में जो है दाने को चबा के देखें कटकट की आवाज आती है तो किसान भाई समझ जाते हैं कि दाना हमारा पक गया है। और अगर हमारा दाना बहुत ज्यादा कठोर हो गया तो वो भी ठीक नहीं है और बहुत ज्यादा नमी है उसमें तो भी ठीक नहीं। यानी दाने में जब 20-24% या 25% तक नमी हो तब हमें धान की कटाई करनी चाहिए।
2: मान लीजिए किसी कारणवश हमारे किसान भाइयों ने समय से पहले या देर से कटाई की, ऐसे में किसान भाइयों को कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं?
3: देखिए अगर जल्दी काट लिया धान हमने तो निश्चित तौर पे वो कच्चा धान रहेगा तो उसमें स्टार्च पूरी तरह से नहीं बन पाता, दाना सख्त नहीं हो पाता, तो एक तो उसकी गुणवत्ता सबसे पहले प्रभावित होती है। दूसरा उसमें चूंकि नमी ज्यादा होती है, पहले काटने का मतलब ये है कि उसमें नमी ज्यादा है तो उसपे कवक फफूंद और कीटों का हमला ज्यादा होता है क्योंकि दाने मुलायम होते हैं। तो सही नमी की दशा पे दाना काटने से हमें फायदा होता है, यानी कच्चे दाने हमें काटने से नुकसान होगा। अगर हमारा दाना ज्यादा पक गया तब क्या होगा कि एक तो मिलाई में उसकी दिक्कत आएगी और दूसरे वो झड़ जाता है और इसमें जो है चिड़िया वगैरह काफी नुकसान कर सकती हैं। दूसरे ज्यादा पक गया दाना हम इंतजार करते रहे कटाई का तो बरसात भी आ सकती है, बरसात आ गई तो उसमें नुकसान ज्यादा होगा। तो कुल मिला के एक सही अवस्था पे कटाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, दोनों अवस्था कम पका या ज्यादा पका ठीक नहीं होती।
2: डॉक्टर साहब जब बात आती है कि कटाई का हम काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि लेबर नहीं मिलती है गांव, श्रम नहीं है, या हमारा जो फसल है कि वो बहुत बड़े हमने कई बीघे में लगाई हुई है, बड़ा हमारा मैदान है, हम बड़े उत्पादक हैं, तो ऐसे में जो कई बार हमारे आपस में सलाह होती है बैठते हैं कि भाई हाथ से कटवाएं या मशीन से कटवाएं, अब सामान्य बात नहीं है, आप वैज्ञानिक के रूप में इसको किस प्रकार से टिप्पणी करेंगे?
3: जी बिल्कुल, देखिए ये निर्भर करता है कि किसान के पास खेती कितनी है, किसान की आर्थिक स्थिति क्या है और धान का कितना क्षेत्र उन्होंने उगाया है या लगाया है। आमतौर पर हमारे देश में आज भी बहुत बड़े हिस्से में जो है हाथ से दराती से कटाई की जाती है। इसके कुछ फायदे भी हैं कुछ कमियां भी हैं। जैसे दराती से जब हम कटाई करते हैं तो सही ऊंचाई पे हम काट सकते हैं तो इससे हमें पराली बहुत ज्यादा मिल जाती है अपने दूसरे कामों के लिए और साथ ही साथ श्रमिक जो होते हैं उनको रोजगार मिलता है, तो एक तरह से ये इसके फायदे हैं। नुकसान ये कि इसमें श्रम ज्यादा लगता है, किसानों का खर्चा ज्यादा आता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कंबाइन से कटाई की जाती है उसमें घाई भी हो जाती है और सफाई भी हो जाती है, तीनों काम एक साथ हो जाते हैं। इसके अलावा रीपर एक मशीन आती है जो आजकल मोटर से चलने लगी यानी इंजनों से चलने लगी या फिर और तमाम तरीके की कटाई की मशीनें आजकल आ गई हैं, उनका प्रयोग भी करते हैं तो उनसे क्या होता है आपके धन की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, ये सब बचत उसमें हो जाती है। तभी लगातार कंबाइन का प्रयोग जैसे पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई के इलाकों में बढ़ा है और वहां की भी जाती है कंबाइन से कटाई। लेकिन इसकी भी कुछ दशाएं हैं, जैसे मान लो खेत में नमी ज्यादा है तो कंबाइन काम नहीं करेगी, दूसरा अगर आपका धान गिरा हुआ है तब भी कंबाइन काम नहीं करेगी, या रीपर है रीपर से हम कटाई करते हैं तो रीपर में भी फसल हमारी सीधी खड़ी होनी चाहिए। कुल मिला के कंबाइन से अगर किसान भाइयों को कटाई करनी है या सुविधा उपलब्ध है तो आमतौर पे आपका खेत बड़ा होता है और बड़े खेत में ये कार्य सुगमता से किया जाता है। और इसमें एक ध्यान आपको रखना पड़ेगा, 15-20 दिन पहले खेत से पानी बिल्कुल निकालना पड़ेगा, अगर आपने पानी नहीं निकाला बाद तक गीला रहा पकते टाइम तो वो आपका कंबाइन काम नहीं कर पाएगी।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस समय खेतों में धान की कटाई तो चल ही रही है, तो इस धान की कटाई

0: जिन लोगों ने भाई फसल उठा ली है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अभी काम कर रहे हैं या एक पूरे लग रहा है कि हम सप्ताह भर के भीतर अपनी फसल की कटाई शुरू करें, तो कटाई करते समय विशेष कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि उत्पादन प्रभावित न हो।
1: निश्चित तौर पर जैसे हम बात कर रहे थे, एक तो सही दशा का आपको पहचान करना है, जब सही दशा आए तभी आपको कटाई का काम करना है। दूसरी तरफ आपको मौसम की जानकारी लेनी, अगर आने वाले 2-3 दिन में मौसम साफ रहता है मान लीजिए तो आप कटाई करें, और अगर मौसम की भविष्यवाणी कहती है कि भाई नहीं कल को बहुत ज्यादा बारिश होगी तो 1-2 दिन आप कटाई टाल भी सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है किसान भाई सुबह ही कटाई शुरू कर देते हैं, यानी ओस जब होती है तब कटाई करते हैं, तो ध्यान रखें जब सूरज चढ़ जाए, धूप आ जाए, ओस निकल जाए उसकी, तब आप कटाई करें, नहीं तो कवक वगैरह का आक्रमण फसल में इस तरह से हो जाता है और दाने की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि मशीनों को अपनी तैयार रखें और उनका कैलिब्रेशन कर लें, उनकी क्या स्पीड रखनी है, कैसे उनका काम करना है, और इन सब बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप कटाई का कार्य शुरू कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, कटाई के बाद समय आता है जब हम कोई भी फसल काटेंगे तब उसके भंडारण का या हमें बाजार में बेचनी है, तो दोनों ही स्थितियों में हमें धान की फसल को काटने के बाद में कितने समय तक भंडारण की स्थिति में और बेचने की स्थिति में उसे रखना चाहिए खेत में?
1: जी बिल्कुल, देखिए जैसे कटाई किसान भाइयों ने की, कटाई करने के बाद ऐसा नहीं है कि उसी दिन हम गाई कर सकते हैं, निश्चित तौर पे 2-3 दिन तक हमें अपनी फसल को सुखाना पड़ता है। निर्भर करता है कि किस अवस्था पे हमने धान को काटा है, यहाँ तक कि अगर सही अवस्था पे भी धान को हमने काटा है तो कम से कम 2 दिन उसको सुखाना पड़ता है, नहीं तो अगर हम मशीन द्वारा थ्रेशिंग कर रहे हैं या गाई कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत आती है। इसके अलावा फसल है गिरी हुई है, उसको बड़ी सावधानी से आपको काटना है, कई बार जड़ के साथ मिट्टी आ जाती है जिससे कि दाने की गुणवत्ता खराब हो जाती है, क्योंकि मिट्टी भी आपके दाने के साथ मिल जाती है। और दूसरी तरफ आपको ध्यान रखना है कि कटी हुई फसल को पानी से भी बचाना है, कई बार बरसात आ जाती है तो उसका इंतजाम भी करके रखना है, आपको एक जगह अपनी फसल को इकट्ठा कर लें और फिर उस पर तिरपाल वगैरह ढक दें। सबसे महत्वपूर्ण होता है इस प्रक्रिया में, अगर हम अच्छा भंडारण चाहते हैं तो फसल को सुखाना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। फिर हम थ्रेशिंग करते हैं, थ्रेशिंग के बाद फिर हम दानों को भी सुखाते हैं, सुखाते इसलिए हैं कि ज्यादा नमी उसमें रहती है, उससे कीट बीमारियों की समस्या आ जाती है, और फिर अगर जो किसान भाई उस धान की मिलिंग करना चाहते हैं या कुटाई करना चाहते हैं चावल, उसमें भी सही नमी की दशा का होना बहुत जरूरी है। तो ये खास एक बिंदु है, नमी की सही मात्रा उसमें रखना।
0: ये तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई कि हम मशीनों के द्वारा कृत्रिम रूप से भी दानों की नमी देख सकते हैं कि हमें उसको संतुलित अवस्था में रखना है ताकि उसका लंबा भंडारण चले और बीमारी या कीटों से हमारी जो फसल है वो बची रहे। वहीं बात आती है जब मढ़ाई की या गहाई की, इसको कब और कैसे करें जो हमारा उत्पादन अच्छा हो?
1: बिल्कुल, देखिये मढ़ाई और गहाई की जहां तक बात है, इसके भी कई तरीके हैं हमारे देश में। किसान भाई हमारे बाप दादा करते थे, बैलों से गहाई करते थे वो, फिर धीरे धीरे उसकी हाथ से पिटाई करने लगे धान की, जो कि आज भी ग्रामीण इलाकों में किसान भाई करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पहले धान के छोटे छोटे बंडल हाथों में लेते हैं, फिर वो किसी ड्रम पे या कोल्हू पे या जो हमारा मेड़ा होता है, पाटा होता है, उस पे पीट के धान को अलग कर लेते हैं। इसमें नुकसान या कमी इसकी ये है कि इसमें दाने में तुनके आ जाते हैं, कुछ अवांछित अवशेष हैं फसलों के वो आ जाते हैं या धूल मिट्टी आ जाती है, तो इसकी ओसाई करना जरूरी हो जाता है, ओसाई करना फिर उसकी सुखाई करना जरूरी होता है। दूसरी तरफ आजकल पैडल थ्रेशर आ रहे हैं, तमाम तरह के थ्रेशर हैं, जो मशीन होती है जो दाना निकालती है फसल से वो थ्रेशर होती है, तो जो हमारे थ्रेशर होते हैं उनसे हम दाना अलग करते हैं। इसमें बहुत सारी सावधानियां हमारे किसानों को बरतनी पड़ती हैं। थ्रेशर में जो आदमी काम कर रहा है सबसे पहले वो अपनी सुरक्षा करे, जो हमारे मुंह पे कपड़ा बांधे या मास्क लगा के करे, हाथ अंदर ना दे परनाला जो होता है जिसमें फसल लगाता है, और वहां पे कोई बीड़ी सिगरेट वगैरह ना पिए, धुआं ना करें। पहली बात तो बीड़ी सिगरेट पीनी नहीं चाहिए, यह धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, फिर भी अगर कोई कर रहा है तो उसमें हमारा जो लाख होता है फसल होता है उसमें आग ना लग पाए। तो और आजकल थ्रेशर से जैसे हम गाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, नीचे पर नाले लगे होते हैं, सीम लगे होते हैं, चलने लगे होते हैं, जिससे दाने की सफाई भी साथ साथ हो जाती है। इस तरह के दाने को फिर सिर्फ हमको सुखाना पड़ता है।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही जब थ्रेसिंग कर रहे हैं या मशीन के द्वारा हम अपने धान की मढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने बताया कि हमारे कहीं ना कहीं कहेंगे कि भारत में सबसे बड़ी जो संख्या है वो सीमांत किसानों की है, और सीमांत किसानों में हमारे किसान भाई बहन अधिकतर जो आपकी साधारण विधि रही, जो आपने बताया कि भाई चाहे मेड़े पर उसको धान को पीटते हैं या ड्रम पर पीटते हैं, उसी के माध्यम से धान की मढ़ाई अक्सर देखी जाती है, तो ऐसे में दानों के टूटने का बड़ा खतरा रहता है। तो क्या कुछ करें कि किसान भाइयों को नुकसान ज्यादा ना हो और दानों के टूटने से बचा जा सके।
1: बिल्कुल, देखिए दाने के टूटने की बहुत ज्यादा संभावना

0: की जो रख रखाव है वो बहुत जरूरी होता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न अंत में ये बन जाता है कि जब हम धान का भंडारण करते हैं तो जो गोदाम है, चाहे वो व्यापारी की दृष्टि से देखें या किसान भाई स्वयं अपने लिए भंडारण कर रहे हैं, तो गोदाम को कैसे सुरक्षित रखें और किस प्रकार का गोदाम होना चाहिए कि फसल का जो भंडारण है वो एक लंबे समय तक चले।
0: निश्चित तौर पर देखिए, भंडारण की सबसे जरूरी होता है कि पहले तो साफ सफाई बहुत जरूरी है, हमारा साफ हो, सूखा हो, हवादार हो और वहाँ पे बरसात के पानी के आने की संभावना ना हो। दूसरी तरफ कई बार ऐसा होता है जो दीवारें होती है उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, टूटी फूटी होती हैं, तो उस तरह से उनकी अपनी दीवारों की और फर्श की भी आपको मरम्मत कर लेनी चाहिए जो आपका गोदाम है। और जो पुराने हमारे अनाज हैं, धूल है या मिश्रण हमारे पड़े हुए हैं, कीट है, उनकी साफ सफाई बहुत जरूरी होता है। और कोशिश करें कि जो चूहा और पक्षी आने की संभावना, उनके भी रास्ते हम बंद कर दें। चूहों का नियंत्रण हमें एडवांस में करना है, दरवाजे वगैरह हमारे अच्छे हों जिनमें चूहा ना घुस पाए। और इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे और सही नमी पे हमारा धान होगा और उसका भंडारण करेंगे तो लंबे समय तक चलेगा। इसके लिए कोशिश करें कि नमी 13% से कम हो, 12% के आसपास नमी ठीक रहती है। और जो बोरे होते हैं हमारा, उनकी ढेरी ना लगाएं, उनको स्टैक में रखें, उनको एक के ऊपर एक रखें और नीचे कोई पटला, कोई पन्नी या कोई उस तरह की चीज रखें, उनका भंडारण करें।
1: बिल्कुल डॉक्टर दिनेश कुमार, आप कार्यक्रम में आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के लिए दी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
2: धान की कटाई, मड़ाई और भंडारण में सावधानियां और चर्चा कर रहे थे डॉक्टर दिनेश कुमार, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, पूसा, नई दिल्ली से।
3: तो मंजीत, जानकारी हो गई, अब थोड़ा सा हम मनोरंजन भी करना चाहते हैं, तो कौन सा लोकगीत सुनवा रहे हैं?
2: तो अब सुनते हैं ये लोकगीत।

0: अभी आपने सुना ये लोकगीत, और अब मौसम का हाल भी जान लेते हैं।
1: मौसम की बात करते हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की विदाई के बीच एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय रहने के कारण कई राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के मौसम की बात करें तो मुख्य रूप से शुष्क और साफ रहने वाला है। अधिकतम तापमान करीब 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा।
0: और अब अपने किसान भाई बहनों को मौसम आधारित कृषि सलाह भी दे देते हैं। तो किसानों को सलाह दी जाती है कि सरसों की आगेती बुवाई के लिए पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 28, पूसा अग्रणी, पूसा तारक, पूसा महक आदि के बीज की व्यवस्था करें तथा खेतों को तैयार करें।
1: इस मौसम में किसान अपने खेतों की नियमित निगरानी करें। यदि फसल व सब्जियों में सफेद मक्खी चूसक कीटों का प्रकोप दिखाई दे तो इमिडाक्लोराइड दवाई 1.0 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
0: साथ ही ये भी सलाह दी जाती है कि इस मौसम में किसान धान के ब्लास्ट यानी कि बदरा रोग का आक्रमण होने की निगरानी हर 2 से 3 दिन के अंतराल पर करें। इस रोग का सूचक है पत्तियों में एक छोटी आंख जैसा धब्बा जिसके अंदर का भाग हल्का भूरा और बाहर गहरे भूरे रंग का होता है। आगे जाकर अनेक धब्बे मिलकर एक बड़ा धब्बा बन जाता है।
1: और इसी के साथ इस मौसम में धान की फसल को नष्ट करने वाली ब्राउन प्लांट होपर का आक्रमण आरंभ हो जाता है और अंत में किसान खेत के अंदर जाकर पौधों की निचली भाग के स्थान पर मच्छानुमा कीट का निरीक्षण जरूर करें। यदि कीट का प्रकोप अधिक है तो इमिडाक्लोराइड 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से छिड़काव जरूर करें।
0: और मंजीत, अब आजादपुर मंडी में फल सब्जियों के क्या भाव हैं ये भी बता दें। आलू बिक रहा है 15 रुपए किलो, वहीं प्याज का जो भाव चल रहा है वह है 25 रुपए किलो। टमाटर भी 25 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं बीन्स का जो भाव चल रहा है वो है 40 रुपए किलो। अगर हम खीरे की बात करें तो 30 रुपए किलो का भाव मिल रहा है।
1: रजनीश, जहां फल की बात करें तो इस समय फलों की स्थिति है, सेब 120 रुपए प्रति किलो, केला 25 रुपए किलो, अमरूद की बात करें तो 60 रुपए प्रति किलो, मौसमी की बात करें 30 रुपए प्रति किलो और पपीता है 25 रुपए प्रति किलो।
0: तो ये तो थे आजादपुर मंडी से फल और सब्जियों के भाव। वहीं देखिए, अब कार्यक्रम का समय हो चला है और हमें अपने जो सभी किसान भाई बहन हैं, श्रोता हैं, उनके फीडबैक यानी कि उनके सुझावों का भी इंतजार रहता है, क्योंकि उनके सुझाव हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाते हैं। तो यदि आपका भी कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर लिख भेजें। हमारा जो ईमेल आईडी है वो है feedback@gmail.com।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।

0: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
1: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हमारे गजल और कव्वाली के कार्यक्रम के अंतर्गत ये एक खूबसूरत सी गजल, जिसका जो स्वर दिया है वो है जगजीत सिंह।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी गजल कवाली के अंतर्गत ये खूबसूरत सी गजल, और आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार, 6,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन भत्ता 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए हुआ। माल की ढुलाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और एक निजी भारतीय लॉजिस्टिक्स कंपनी के बीच समझौता। केराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित रेलवे लाइन के साथ करीब 4.5 किलोमीटर लंबे पानी निकासी के निर्माण को मंजूरी। रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है, और ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली कंसल्टेशन को आंकड़ा पार किया, भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत त्यागराज स्टेडियम में आयोजित आशा सम्मेलन 2026 और आशा सम्मान समारोह में कई महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। उपराज्यपाल ने बताया कि 6,000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन भत्ता 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए किया गया है।
4: इस अवसर पर उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शुरू की गई स्वास्थ्य योजनाओं का उद्देश्य आधुनिक तकनीक प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों और मानवीय दृष्टिकोण के समन्वय से दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग होम प्रबंधन प्रणाली पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और नवीनीकरण जैसी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। कार्यक्रम के दौरान जीबी पंत अस्पताल में राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण के भवन का उद्घाटन भी किया गया, जिससे अंगदान और प्रत्यारोपण की पूरी प्रक्रिया में बेहतर समन्वय होगा। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान मिशन अनमोल के विस्तार का भी शुभारंभ किया गया। इसके तहत नवजात शिशुओं के जन्म के 24 से 72 घंटे के भीतर 63 जन्मजात बीमारियों की जांच की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं की शुरुआती अवस्था में पहचान कर उनके प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि यह जांच दिल्ली सरकार मुफ्त उपलब्ध कराएगी।
5: अनमोल योजना के अंतर्गत हम नवजात शिशु का टेस्ट कराएंगे, जो कि एक महंगा टेस्ट होता है, परंतु सरकार उसको पूरी तरीके से निःशुल्क कराएगी।
4: इस अवसर पर मौजूद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि स्वास्थ्य सेवाएं दिल्ली के लोगों के लिए सुलभ हों। प्रादेशिक समाचार के लिए सीमांग मिश्रा के साथ अनुराग नामदेव।
3: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने आज एक निजी भारतीय लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की सेवाओं को निजी लॉजिस्टिक्स कंपनी के पिकअप और डिलीवरी नेटवर्क से जोड़कर पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक्सप्रेस पार्सल की आवाजाही की संभावनाएं तलाश की जाएंगी। NCRTC ने बताया कि इस पहल के तहत दोनों संगठन प्रस्तावित सेवा की व्यवहारिकता का आकलन करेंगे। इसके लिए परिचालन संबंधी जरूरतों, संभावित पार्सल की संख्या, स्टेशनों पर उपलब्ध सुविधाओं और अन्य जरूरी पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा। इस अवसर पर एनसी

0: आरटीसी के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने कहा कि ये पहल पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर करने, सड़कों पर वाहनों का दबाव कम करने और वायु प्रदूषण नियंत्रित करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक समाज की अमूल्य नींव है और उनके स्वास्थ्य, सम्मान और प्रसन्नता को सुनिश्चित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। ये बात श्री गुप्ता ने आज प्रशांत विहार स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित कैंसर स्क्रीनिंग शिविर और वरिष्ठ सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन करते हुए कही। श्री गुप्ता ने कहा कि विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में की रक्षा में निवारक स्वास्थ्य देखभाल और समय पर स्वास्थ्य जांच की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का अनुभव, ज्ञान और परिवार तथा समाज के प्रति योगदान युवा पीढ़ी के लिए एक अमूल्य विरासत है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई ग्रोथ फंड को मंजूरी दिए जाने के फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया यह निर्णय देश के छोटे और मध्यम उद्यमों को नई शक्ति देने वाला महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी के दो सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 की छात्राओं को विद्यावाहिनी योजना के अंतर्गत साइकिल वितरित की। इस अवसर पर राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की कुल 581 छात्राओं को साइकिलें प्रदान की गई। श्री सूद ने कहा कि ये योजना छात्राओं के स्कूल तक दैनिक आवागमन को अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के साथ साथ उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्री सूद ने बताया कि अब तक दिल्ली में लगभग 18,000 छात्राओं को साइकिलें वितरित की जा चुकी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने किराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित रेलवे लाइन के साथ करीब 4.5 किलोमीटर लंबे पानी निकासी के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह निर्णय आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में लिया गया।
2: मुख्यमंत्री ने बताया कि इस परियोजना से किराड़ी, मुंडका, बवाना और नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्रों को सीधे लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि किराड़ी क्षेत्र की करीब 70 अनाधिकृत कॉलोनियों को प्रस्तावित ड्रेन से जल निकासी की सुविधा मिलेगी। वहीं मुंडका क्षेत्र में रानीखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, वेडू एनक्लेव सहित विभिन्न अनाधिकृत कॉलोनियों को लाभ मिलेगा। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस परियोजना पर 260 से अधिक करोड़ रुपए की लागत आएगी। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री परवेश साहिब सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देना है जिसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिले और लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित ड्रेन रेलवे लाइन के साथ बनाई जाएगी और इसका डिस्चार्ज 760 क्यूसेक रखा गया है। श्री सिंह ने बताया कि लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी ये ड्रेन मुंडका हॉल्ट स्टेशन से शुरू होकर पूरक ड्रेन में जाकर मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को बार बार निशाना बनाने के लिए कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कांग्रेस पर जनता का समर्थन हासिल करने में विफल रहने के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाया है।
3: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों का सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है, तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
0: भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी कांग्रेस पर एआई से बनाए गए वीडियो के जरिए झूठी बातें फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा

0: राहुल गांधी निराधार, असंगत और झूठे बयानों के जरिए देश को गुमराह कर रहे हैं। इससे पहले आज विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के त्याग पत्र की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर बढ़ रहे विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुरक्षा कर्मियों ने आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। बाद में लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में प्रवेश कर गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। इसके अंतर्गत 40 घंटे से अधिक की यात्रा वाली 11 लंबी दूरी की रेलगाड़ियों की पहचान की गई है। इन रेलगाड़ियों में पूरे सफर के दौरान साफ सफाई और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल रेलवे को पत्र भेजा है। बोर्ड ने कहा है कि इन रेलगाड़ियों में सफाई, शौचालय, कचरा प्रबंधन और रेल डिब्बों की छोटी मोटी सुविधाओं से जुड़ी कमियों को सफर के दौरान ही तुरंत दूर किया जाए। इसका उद्देश्य रेलगाड़ियों के शुरुआती स्टेशन से लेकर गंतव्य तक लगातार साफ सफाई और सुविधाओं को बनाए रखना है। उत्तर रेलवे ने आज फिरोजपुर और अम्बाला मंडलों में सुरक्षा और गुणवत्ता सुधार शिविर आयोजित किए। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य केवी उन्नयन कार्यों के निष्पादन के दौरान सुरक्षित कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देना और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करना था। दिल्ली नगर निगम MCD द्वारा आज चलाए गए गहन प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत सभी 12 जोनों में 29 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। निगम ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 7 संपत्तियों को सील किया गया और भवन मानदंडों के उल्लंघन पर 5 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। ये प्रवर्तन अभियान शालीमार बाग, मयूर कुंज, पटपड़गंज, अम्बेडकर नगर और शादरा सहित राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया गया। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि वजीराबाद जल शोधन संयंत्र में एलम फीडिंग लाइन को डुप्लीकेट मेन लाइन से जोड़ने के कार्य के कारण कल दिल्ली के कई इलाकों में कुछ समय के लिए जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने बताया कि कल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वजीराबाद स्टाफ क्वार्टर्स, सिग्नेचर ब्रिज एरिया, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, ग्रेटर कैलाश और उसके आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। जल बोर्ड ने लोगों से पानी का सावधानीपूर्वक उपयोग करने की अपील की। साथ ही नागरिक आपातकाल स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। ये देश में डिजिटल तकनीक के जरिए लोगों तक किफायती, सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: ये प्लेटफॉर्म अब कृत्रिम बुद्धिमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम AICDSS के एकीकरण के साथ और अधिक विकसित हुआ है। यह प्रणाली परामर्श के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सहयोग प्रदान करती है तथा नैदानिक निर्णय लेने की गुणवत्ता, एकरूपता और दक्षता को मजबूत करने में सहायता करती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता भी मिली है और इसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 के अंतर्गत स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। ई संजीवनी को इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 के साथ भी एकीकृत किया गया है, जिससे आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं और दूरस्थ चिकित्सा विशेषज्ञता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है। इस एकीकरण का उद्देश्य चिकित्सा सहायता तक अधिक समन्वित पहुंच को सुगम बनाना और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को और मजबूत करना है। ई संजीवनी अब देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से विशेषज्ञ OPD परामर्श की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। अक्षित के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का

अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, 6000 से अधिक आशा कार्यकर्ताओं का मासिक प्रोत्साहन भत्ता 3000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए हुआ। माल की ढुलाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और एक निजी भारतीय लॉजिस्टिक्स कंपनी के बीच समझौता। किराड़ी विधानसभा क्षेत्र स्थित रेलवे लाइन के साथ करीब 4.5 किलोमीटर लंबे पानी निकासी के निर्माण को मंजूरी। रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। और ई संजीवनी ने 50 करोड़ टेली परामर्श का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत की डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल में महत्वपूर्ण उपलब्धि। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका, जिसके अंतर्गत लाए हैं हम कुछ खूबसूरत से फिल्मी गीत। और कार्यक्रम का आगाज करते हैं किशोरदा की आवाज में गई इस खूबसूरत सी पेशकश के साथ।

बिल्कुल भी, जब अपने अपनों का किसी का खास व्यक्ति का विशेषकर कहें, किसी का ऐसा साथ मिल जाए कि जगह जो है मायने नहीं रखती हो, तो दिल यही कहता है कि कहीं भी ले चलो, बस तुम साथ रहो। और कभी कभी बातें या फिर गुफ्तगू, फिर कहें दिल के एहसास इतने ज्यादा बयां करने का मन करता है कि लगता है कि कोई जगह बस ऐसी मिल जाए जहां शोर भी ना हो, और फिर बस दिल ये कह उठता है कि चल कहीं दूर निकल जाएं।

खैर कुछ भी कहो, जब अपने अपनों का साथ मिलता है ना तो जगह जो है वो कहीं भी कुछ भी जगह मायने नहीं रखती। ठीक इसी तरीके से जैसे कहते हैं ना कि जब दोस्तों का साथ मिल जाता है तो किसी टपरी पर पीने वाली जो एक कप चाय होती है ना वो भी वो लुत्फ दे जाती है जो आपको बड़े बड़े होटलों में बैठकर आराम से भी नहीं मिलेगा। यही बात होती है कि आप किसकी सोहबत में है, किसी ऐसे की जो आपके दिल के बेहद करीब है, और उसके साथ अगर कहते ना दिल के तार मिल जाए तो फिर ऐसा लगता है कि दुनिया की हर शय में जो है ये शामिल हो, और धरती से लेकर फलक तक भी अगर जाने की बात हो तो इसका साथ अगर मिल जाए तो हर बिगड़ती हुई बात भी बन जाए।

भाई जिसके पास ऐसा साथी है जिसके साथ फलक तक जाने का मन करता है तो बहुत ही अच्छा, और अगर किसी के पास नहीं है तो सोचिए उसका दिल कितना चाहता होगा कि कोई ऐसा साथी, ऐसा दोस्त या कोई ऐसा हमदम हमें मिल जाए जो है हमें हर कदम पर समझे और दिल की बात हमें शब्दों में कई बार बयां भी न करनी पड़े। ऐसा शख्स जिसकी जो कहते हैं ना ख्वाहिश हम आंखें खोल कर भी करते हैं और आंखें बंद करके भी, ऐसे शख्स को बड़ी बेसब्री से हमारी नजरें कुछ यूं ढूंढ रही होती हैं।

भाई किसी को जब याद करते हैं तो उसकी धुन में ही कुछ ऐसा आलम हो जाता है कि चले जाते हैं उसी का नाम लेते हुए। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई दिल में उतर जाता है तो उसके साथ कहते हैं ना, फर्श से लेकर अर्श तक का सफर तय करने का दिल करता है। और लगता है वो बेशक हमारे साथ हो ना हो, उसका जो है साया कम से कम हमारे साथ जरूर बना रहे।

बिल्कुल, अगर रिश्ते में इतनी जो है ना एक जुड़ाव है या फिर कहें इतनी अटूट एक भावना जुड़ी है, तो हम चले ना चले कहते हैं ना, इनडायरेक्ट रूप से हमारी एक एनर्जी, हमारा एक अंश किसी के साथ चलता है। और यूं भी होता है कि कई बार बहुत बहुत समय के बाद मुलाकात होती है ना किसी की, जिसे हम अपेक्षा कर रहे होते हैं, तो चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आती है और लब कह उठते हैं कि तुम आ गए हो, नूर आ गया है।

कभी देखो किसी विशेष व्यक्ति के साथ चलने की बात करने की या फिर जिंदगी का सफर तय करने की बात करते करते ये समय कैसे निकल गया हमें भी नहीं पता चला। फिर चलते चलते ये गीत जो दो लोग जब एक दूसरे को पसंद करते हैं या इत्तेफाकन हमारी राय विचार या कहते हैं ना एक वेवलेंथ मिल जाती है तो यही गीत मन से निकलता है और यही गीत हमारे आज के कार्यक्रम की ये अंतिम पेशकश भी है।

0: गीत मालिका का, जिसके अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर आए चंद खूबसूरत से फिल्मी गीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी, फिर अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए प्रस्ताव पारित किया। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। मतगणना शुक्रवार को। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को खगोल भौतिकी मूल के उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो की खोज के लिए 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा।
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं। इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो, उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षों पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो, उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी निर्माण किया जाएगा।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
2: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
1: मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी कल सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे करेंगे। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम देखने को मिलती है।
2: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए, वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन से देश की परिवहन व्यवस्था में बेहतर तालमेल, आंकड़ों के आधार पर योजना बनाने और परिवहन के विभिन्न साधनों को

0: दूसरे से जुड़ने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पाठ।

0: इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी भारतीय ऐप। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित और विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलाव की गति बढ़ाने वाला माध्यम बताया। प्रधानमंत्री ने साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर भी बल दिया। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध किया है। स्वदेश निर्मित विकास और निर्माण श्रेणी के अंतर्गत यह परियोजना 3 वर्षों की अवधि में रोजगार सृजित करेगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आज स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फ्लाइट का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण वायुसेना सैन्य विमान योग्यता और प्रमाणन केंद्र, नागर विमानन महानिदेशालय, भारतीय एयरपोर्ट प्राधिकरण और अन्य नागरिक प्राधिकरणों के साथ मिलकर किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक अहम पड़ाव है और इसका उद्देश्य लंबे समय तक हवा में रहने वाला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप बनाना है। सरकार ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया है। वे 31 अक्टूबर को कार्यभार संभालेंगे। वे अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना में कई महत्वपूर्ण परिचालन और रणनीतिक पदों पर जिम्मेदारी संभाली है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की नागांव लोकसभा सीट के उपचुनावों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। तमिलनाडु में मिजोरम तक अपने 86.22% और धारापुरम में 80.30% मतदान हुआ। पुदुचेरी की थट्टाचावी सीट पर 80.81% और पश्चिम बंगाल के रेजीनगर में 80.07% तथा नंदीग्राम में 80.87% मतदान हुआ। असम की नागांव लोकसभा सीट पर 76.19% मतदान हुआ। मतगणना शुक्रवार को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष कल पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि यूपीआई ने इस दृष्टिकोण को किस तरह से साकार किया है।
1: भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, सरल और सुरक्षित भुगतान प्रणाली बनाने की दृष्टि से प्रेरित है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति की आधारशिला के रूप में उभरा है। आज यूपीआई को 11 देशों में स्वीकार किया जाता है, जिसमें ग्रीस और मालदीव भारत के वास्तविक समय भुगतान मंच को अपनाने वाले नवीनतम है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूपीआई अब घरेलू सीमाओं ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले भारतीय बैंक खातों से सीधे विदेशों में भुगतान करने का विचार अविश्वसनीय लगता, लेकिन आज यही वास्तविकता है।
2: यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहाँ कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते

0: कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है।
1: यूपीआई को 25 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था और केवल एक दशक में यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के पैमाने को बदल दिया है, जिससे लेन देन तेज, सरल और अधिक सुलभ हो गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के एक छात्र जतिन ने कहा कि जब से उनके जीवन में यूपीआई आया है तब से चीजें बहुत सहज आसान हो गई है।
2: जब से यूपीआई मेरी लाइफ में आया तब से चीजें आसान हो चुकी है, क्योंकि अब मुझे कहीं भी जाने के लिए वॉलेट का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो जब मैं वॉलेट इस्तेमाल करता था तो मुझे डर लगता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। आज के टाइम मेरे पास एक फोन है और यूपीआई से मैं कहीं भी किधर भी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ।
1: 2025 तक दुनिया के वास्तविक समय भुगतान लेन देन की मात्रा में यूपीआई का योगदान लगभग 49% है। आज यूपीआई केवल एक भुगतान प्रणाली नहीं है, बल्कि लोगों का एक मंच है जो वित्तीय लेन देन को तेज, सरल, पारदर्शी और समावेशी बनाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध है। यह आकाशवाणी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा है कि वे बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रहे हैं। नई दिल्ली में श्री रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना न तो देश के हित में है और न ही कांग्रेस पार्टी के हित में है।
4: ये रोज रोज कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी जो ड्रामा करते रहते हैं, इलेक्शन कमीशन को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो हमला करते रहते हैं, अब बंद करने का समय आ गया है। लोकतंत्र में लोगों का सेवा करो तो आपको जनादेश मिलेगा। अब जनादेश प्राप्त नहीं कर पाता है और इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगने के लिए कहते हैं, बाद में सुप्रीम कोर्ट को भी फिर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि कोर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं है। तो इससे ना लोकतंत्र ठीक होगा, ना कांग्रेस पार्टी का फिर से उदय होगा।
3: भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के आकाशवाणी भवन में घुसने की भी आलोचना की। इस बीच कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आकाशवाणी से हिरासत में ले लिया है। इनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल थे। इससे पहले दिन में विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक विरोध मार्च निकाला। हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक लिया। इसके बाद राहुल गांधी पार्टी नेताओं और समर्थकों के साथ आकाशवाणी भवन में घुस गए। बेल्जियम में जन्मे वैज्ञानिक फ्रांसिस हालजेन को आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला में योगदान और खगोलीय स्रोतों से आने वाले उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 82 वर्षीय फ्रांसिस हालजेन ने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसने दक्षिण ध्रुव पर आइस क्यूब नामक न्यूट्रिनो डिटेक्टर विकसित किया था। इससे ब्रह्मांड के अध्ययन में सहायता मिलेगी। भारत ने ओमान के तट और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन जहाजों के चालक दल में कई भारतीय नागरिक हैं। हमले में घायल चालक दल के सदस्यों का उपचार किया जा रहा है। अबू धाबी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि कैप्टन स्मित मच्छार के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। दूतावास ने कहा है कि वो उनके परिवार, डॉक्टरों और स्थानीय अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दे दिया है। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 171 रन पर सिमट गई। नमन धीर ने 3, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बहुआयामी योजना को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी है। लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। प्रधानमंत्री ने इसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बड़ा प्रोत्साहन बताया। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष के निरंतर नेतृत्व को पूरा करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री का साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानक तय करने पर जोर। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के जहाजों के लिए ब्रह्मोस वायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर की खरीद के लिए 607 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और लखनऊ में पहले T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 172 रन का लक्ष्य दिया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Government approves setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Clears 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund. Prime Minister Narendra Modi hails decision as major boost to MSME sector. Union Cabinet congratulates Prime Minister Narendra Modi on completing 25 years of continuous leadership as head of the government. Defence Ministry inks 660 crore rupee contract to procure BrahMos fire control system and launchers for Indian Navy ships. Peaceful polling held for by-elections to 5 assembly constituencies in Tamil Nadu, Puducherry and West Bengal and Nagaon Lok Sabha seat in Assam. Results on Friday. Belgian-born scientist Francis Hulson wins 2026 Nobel Prize in Physics for discovery of high-energy neutrinos of astrophysical origin. In men's cricket, West Indies set a target of 172 runs for India in first T20 of five-match series in Lucknow. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the setting up of Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning, briefing media in New Delhi today after the Cabinet meeting, chaired by Prime Minister Narendra Modi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistic planning in the country.
6: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7%, 8%,
7: एज द कंट्रीज जीडीपी इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 7-8%, द डिमांड फॉर लॉजिस्टिक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अ लार्ज नंबर ऑफ हाईवेज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द कंट्री अलोंग विद न्यू रेलवे लाइन्स, वाटरवेज, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स। टू इंश्योर दैट ऑल दीज डेवलपमेंट्स आर प्लान्ड इन एन इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड मैनर, द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान फ्यू इयर्स अगो। नाउ कीपिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स इन माइंड एंड इंटीग्रेटेड Transport and Logistics Authority will be established to study and plan all these aspects.
6: एक integrated transport and logistics authority का निर्माण किया जाएगा।
5: Mr. Vaishnav said the cabinet has also given nod to the establishment of 10,000 crore rupees Small and Medium Enterprises Growth Fund for equity investments in small and medium enterprises.
6: इसमें 10,000 करोड़ रुपीज
7: MSME ग्रोथ फंड विल बी एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल टू MSMEs विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। द फंड विल बी ऑपरेटेड विद द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड विल बी प्रोफेशनली मैनेज्ड टू इंश्योर इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ कैपिटल। द फंड विल प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड MSMEs विद नियरली हाफ ऑफ इट्स कॉर्पस एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दिस फोकस एम्स टू सपोर्ट MSMEs इन लेवल Bridging the significant growth opportunities emerging in the sector.
6: Manufacturing se related MSMEs jinke liye bahut badi opportunities abhi aa rahi hai.
5: Prime Minister Narendra Modi in a social media post said this cabinet decision is a big boost for MSME sector and a major step towards creating the next generation of Indian business leaders. He added that the Integrated Transport and Logistics Authority approved by the cabinet will bring greater coordination, data-led planning and multimodal integration across India's transport ecosystem. Prime Minister Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Mr. Modi stated this while interacting with Global System for Mobile Communications Association board members at Seva Teeth today ahead of the India Mobile Congress. The India Mobile Congress is scheduled to be held from 7th to 10th of this month in New Delhi. He emphasized the need to make technology and digital services affordable and accessible, particularly for the Global South, and highlighted the importance of taking technology to the last mile to prevent a widening digital divide. The Ministry of Defense has signed a contract worth over 660 crore rupees with Brahmos.

अब से कुछ ही देर के बाद यानी 9:20 पर एक फनकार प्रोग्राम पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आज के फनकार हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन।

मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेशे खिदमत प्रोग्राम एक फनकार। इस प्रोग्राम में आज के फनकार हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन।

एक फनकार प्रोग्राम में आज आप महसूस हो रहे थे अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गाए चंद गैर फिल्मी गजलों से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DT फ्री डिश पर हमारी नशा जारी है। शब के 9:45 हुए हैं। अब खबरें नशे की जाएंगी।

तैयार करदा हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म हैप्स की कामयाब आजमाइशी परवाज मुकम्मल की। वजारत ने बताया है कि भारतीय फजाइया सेंटर फॉर मिलिट्री एयर वर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दीगर शहरी इदारों के तालमेल के साथ ये आजमाइश अंजाम दी गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कामयाब आजमाइशी परवाज पर डीआरडीओ टीम को मुबारकबाद दी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु, पुदुचेरी और मगरबी बंगाल की 5 असेंबली सीटों और आसाम की एक लोकसभा की सीट पर जिमनी चुनाव के लिए वोटिंग पूर्ण तौर पर मुकम्मल हो गई। तमिलनाडु के मदुरंतक्कम और धारापुरम, पुदुचेरी के थट्टाचावड़ी और मगरबी बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर में वोट डाले गए। आसाम के नागांव लोकसभा हलके में भी वोटिंग हुई। वोटों की गिनती जुमे को होगी। सीनियर बीजेपी रहनुमा और पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी और लोकसभा में कायदे हिज्बे अख्तलाफ राहुल गांधी के जरिए बार बार इंतखाबी कमीशन और दीगर आईनी इदारों को निशाना बनाने पर उनकी नुक्ताचीनी की है। नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से बात करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि सियासी पार्टियों को अवाम के फैसलों को कबूल करना चाहिए और अवाम की खिदमत करना चाहिए। इससे पहले आज अपोजिशन पार्टियों ने खसूसी नजरसानी के अमल पर मुबैना बेसाबतगियों और चीफ इंतखाबी कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट से इंतखाबी कमीशन के हेडक्वार्टर निर्वाचन सदक तक एहतजाजी मार्च निकाला। तहम सिक्योरिटी अहलकारों ने इंतखाबी कमीशन की जानब बढ़ते हुए उन्हें आकाशवाणी के करीब रोक लिया। इसके बाद लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा और कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी, पार्टी लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा और दीगर हामियों के साथ आकाशवाणी भवन में दाखिल हो गए और उन्होंने अहाते में एहतजाज शुरू कर दिया। बाद में शाम में दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत उन कांग्रेस रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया जो आकाशवाणी भवन के अहाते में धरना दे रहे थे। अपोजिशन के एहतजाज के सिलसिले में आज इंतखाबी कमीशन ने वजाहत की है कि दोपहर 4 बजे तक किसी भी सियासी जमात ने अपने नुमाइंदों के जरिए उससे मुलाकात का वक्त नहीं मांगा। एक प्रेस बयान में कमीशन ने कहा कि ताहम दोपहर 4 बजे उसे दिल्ली पुलिस से इत्तला मिली कि राहुल गांधी की क्यादत में अरकान पार्लियामेंट का एक वक्त कमीशन से मिलना चाहता है और एक मेमोरेंडम देना चाहता है। तबियात का 2026 का नोबल इनाम बेल्जियम में पैदा होने वाले साइंसदान फ्रांकिस हेल्जन को दिया गया है जिन्होंने जनूबी कुतुब पर मौजूद बर्फ के एक बड़े जखीरे को खला से जमीन तक पहुंचने वाले पुरस्रार जर्रात यानी न्यूट्रिनोस की दरियाफ्त के लिए एक डिटेक्टर में तब्दील कर दिया। 82 साल प्रोफेसर हेल्जन अमरीका की विस्कॉन्सिन मेडिसिन यूनिवर्सिटी में पार्टिकल फिजिक्स के माहिर हैं। हुकूमत ने एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को एयर चीफ मार्शल के रैंक पर 29वां चीफ ऑफ एयर स्टाफ मुकरर किया है। ये तकरीरी 31 अक्टूबर की दोपहर से नाफिजुल अमल होगी। मर्दों के क्रिकेट में 5 T20 मैचों की सीरीज के तहत लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे पहले T20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत की जीत के लिए 172 रन का निशाना रखा है। वेस्टइंडीज की टीम ने 19 ओवर्स और एक गेंद में 171 रन बनाए और वो ऑल आउट हो गई। अब से कुछ देर पहले भारत ने 5 ओवर्स में 2 विकेट पर 47 रन बना लिए थे। इससे कबल भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कसीर रुखी मनसूबाबंदी को बरवकार लाने के लिए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की मरबूत अथॉरिटी कायम करने को मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने सरबराह हुकूमत की हैसियत से क्यादत के मुसलसल 25 बरस मुकम्मल करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की है। वजारत दिफा ने भारतीय बहरिया के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर्स की सरकारी खरीद के लिए 660 करोड़ रूपये के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और मर्दों के क्रिकेट में लखनऊ में 5 मैचों की सीरीज के पहले T20 मैच में वेस्टइंडीज ने भारत की जीत के लिए 172 रन का निशाना रखा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हमारी नशा जारी है, मशवरे सेहत के। इस सिलसिले के तहत कुछ बातें आपकी सेहत के हवाले से लेकर हाजिर है आपका मेजबान नईम आदाबर्स। एक्सरसाइज या वर्जिश की अगर बात की जाए तो हर इंसान चाहता है कि वो अपने आप को फिट रखे, वर्जिश करे, लेकिन क्या करें जनाब, सबके पास वक्त नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। कैसे वर्जिश की जाए, अपने आप को कैसे फिट रखा जाए? लेकिन अगर आपको हेल्थ कॉन्शियस हैं, आप अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सा संजीदा हैं, तो इस तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए और कभी ना कभी दिन में थोड़ा सा वक्त निकाल के वर्जिश जरूर करनी चाहिए। और जो लोग वर्जिश करते हैं, फिटनेस फ्रीक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा होता है। अगर माहिरीन की बात की जाए तो उनका यह मानना है कि सुबह खाली पेट या दोपहर बाद शाम से 6 बजे के दरमियान का जो वक्त होता है वो बेहतरीन होता है आपके वर्जिश करने के लिए। अब यूं तो हर इंसान का अपना एक शेड्यूल है, एक रोजमर्रा का रूटीन है जिंदगी का, उसके हिसाब से भी आपको वक्त का जो है तायुन करना होता है या एडजस्टमेंट करना होता है। लेकिन सुबह अगर आप वर्जिश करते हैं तो इसमें कई बातें सामने आती हैं। वो अफराद जो वजन घटाना चाहते हैं, सुबह खाली पेट वर्कआउट करने से फैट बहुत तेजी से बर्न होता है, यानी चर्बी जो है आपके जिस्म से जल्दी पिघलती है और आपका वजन कम होता है इस एक्सरसाइज से या वर्जिश से। और एक चीज और भी है दोस्तों, अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं खाली पेट, तो उसका एक फायदा ही होता है, एक तो आपको तवानाई मिलती है और पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहते हैं, मूड आपका बहुत अच्छा रहता है और सेहतमंद होने का एहसास भी होता है फिटनेस के साथ साथ। और एक बात और भी है, आपके अंदर खुद एतमादी जो है उसमें इजाफा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाता है। और एक चीज और भी है कि एक तो सुबह के वक्त जो है आप थोड़ा सा फुर्सत में भी होते हैं, जिससे आपके रूटीन में आसानी भी हो जाती है। अब बात करते हैं शाम के वक्त अगर वर्जिश की जाए तो उससे क्या हो सकता है। दरअसल शाम के वक्त जिस्म का जो दर्जे हरारत है वो ज्यादा होता है, जिससे आपके जो अजलात हैं, मसल्स हैं, वो लचीले रहते हैं और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी ताकत बढ़ती है। बेहतर वक्त है शाम का भी, अगर आप शाम को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वो वक्त भी बहुत बेहतर है। और मसल्स लचीले रहते हैं, इस वजह से अगर एक्सरसाइज करते वक्त कोई चोट का खतरा है तो वो खतरा भी कम हो जाता है। और दिन भर की थकान और अगर कोई थोड़ा सा भी आपका जहन मुंतशिर है और आपको कोई टेंशन है तो उसको दूर करने का ये बेहतरीन तरीका है अगर शाम को आप एक्सरसाइज करते हैं। कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, एक्सरसाइज खाना खाने के फौरन बाद कभी वर्जिश ना करें। और खाना खाने और वर्जिश करने के दरमियान कम से कम 3 से 3.5 घंटे का फर्क होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोग कुछ खाने के बाद फौरन एक्सरसाइज करने लगते हैं तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और ये इस बात पे भी इन्हिसार करते हैं कि आपका निशाना क्या है, आपका टारगेट क्या है। आप वजन घटाना चाहते हैं, मसल्स को मजबूत करना चाहते हैं, या फिर आपने आपको आप फिट रखना चाहते हैं, तो कई तरह की बातें हैं। इस बात का भी इन्हें सारे कि आप क्या, आपने क्या गोल रखा है अपने लिए वर्जिश करने के लिए, तो उसी के मुताबिक जो है आपको इस बात का तयन करना चाहिए कि आपको सुबह एक्सरसाइज करनी है या फिर शाम के टाइम एक्सरसाइज करनी, या फिर जब आपके पास खाली वक्त होता है। लेकिन उसमें यह ख्याल आपको जरूर रखना होगा कि भरे पेट पर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka swagat hai. Shrotaon, arthvyavastha aur share bazaar par charcha karne ke liye aaj hamare saath jude hain bazaar ki gehri samajh rakhne wale varishth sampadak AK Bhattacharya. Bhattacharya ji, karyakram mein aapka abhinandan.
2: Namaskar, dhanyawad.
1: Charcha shuru karenge shrotaon, magar usse pehle aaiye sunen surkhiyan.
0: Benchmark domestic indices gain nearly 1%. Sensex surges over 650 points. Nifty settles above 22,750. Cabinet approves establishment of 10,000 crore rupees fund for long-term equity investments in small and medium enterprises. And World Bank raises India's GDP growth projection to 7.1% for the current fiscal.
1: घरेलू शेयर बाजार में लगभग 1% की बढ़त दर्ज की गई. सेंसेक्स 650 अंक से अधिक बढ़ा. निफ्टी 22,750 के ऊपर बंद हुआ. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझौले उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को भी मंजूरी दी है. और वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है.
0: And before we proceed any further, here is an advisory. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब जानते हैं कि दिन के अंतराल में किस तरह से शेयर बाजार का व्यवहार रहा. घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 1% की बढ़त हुई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 685 अंक बढ़कर 73,068 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 220 अंक बढ़कर 22,776 पर स्थिर हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 1% से अधिक और स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 1.5% से अधिक की बढ़त हुई.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेज रोज नियरली 1% टुडे. द सेंसेक्स सर्ज 685 पॉइंट्स टू क्लोज एट 73,068. द निफ्टी क्लाइम्ड 220 points to settle at 22,776. In the broader market, at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index jumped 1.1% and the small-cap 100 index advanced over 1.5%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त देखी गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में ट्रेंट लगभग 13%, कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% से अधिक और हिंदुस्तान यूनिलीवर लगभग 3% बढ़े. नुकसान में रहने वाली कंपनियों के शेयरों में टेक महिंद्रा 2.3%, टाइटन 1.3% और बजाज फाइनेंस में लगभग 1% की गिरावट आई.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 21 out of 28 sectors edged upwards. Among the top gainers, telecommunication jumped 2.3%, capital goods rose 1.8%, and industrials added 1.6%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt, as well as hospitals, shed around 0.8%. Mid-small private bank fell 0.7%, and focused IT dropped 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,816 companies advanced, 1,562 declined and 245 remained unchanged.
1: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 12 पैसे कमजोर होकर ₹96.42 पर बंद हुआ. भट्टाचार्य जी, शुरुआत करते हैं चर्चा की और जानना चाहेंगे हम आपसे कि आज जो हमने बाजार में बढ़त देखी है लगभग 1% की, क्या उसमें कोई ऐसा प्रमुख कारण रहा या मिले जुले कारण थे जिससे कि बाजार में ये बढ़त हमें देखने को मिली?
2: देखिए, दो कारण साफ नजर आ रहे हैं. पहली बात तो ये है कि पिछले हफ्ते में हमने जो स्टॉक मार्केट का जो रुख देखा उसमें काफी गिरावट हमने देखी. करीबन 2% या 2.5-3% की गिरावट हमने पिछले हफ्ते में देखी
1: जी.
2: और कल उसका रिकवरी हुआ है और आज भी उसका रिकवरी हो रहा है. तो जिस स्टॉक मार्केट में जिस जो उतराव और चढ़ाव का ये सिलसिला जारी है. और दूसरा कारण ये है कि कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की द्विमासिक जो मौद्रिक समीक्षा की जो कदम वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसका ऐलान करेगी कल। उसका एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट शायद 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ जाए, तो उसके कारण जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स जो है उनकी जो वेटेज सेंसेक्स और निफ्टी में काफी अच्छी होती है, उसके लिए स्टॉक मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी हुई। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फाइनेंशियल सेक्टर को के मार्जिन में बढ़ोतरी होती है, उससे उनका जो इनकम लेवल है वो भी अच्छा होता है। और क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छा है, अगर क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है उसके साथ साथ अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो उनकी आमदनी में भी काफी इनकम में काफी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि दोनों कारणों के लिए स्टॉक मार्केट में आज एक रिकवरी और एक मौद्रिक नीति की जो एक एक्सपेक्टेशन जो है उसके लिए।
0: Maybe we'll come to the MPC later on, but first of all I'd like to draw your attention to the broader market today. In the mid cap we saw 1.1% of an uptick, and in the small cap 1.5%. As we all know, over the past 6 months or so, these two sectors, you know, the mid cap and the small cap, have bled like anything, and investors are really in a soup. So now, can we say that the green shoots are really coming up, and in the coming times it will be, you know, growing more and more from now on?
2: You are right that we have seen this duality of the Indian stock market, in the way that while the large cap stocks are not doing that well, but the mid cap and the small cap, which had seen major losses in the last few months, and now they seem to be coming back to life, so to say, and that is also because they are far less expensive than the large cap stocks. So if you are looking at value buying, or if you are an investor, if you want to get into a position in the hope of some quick gains, then large cap is slightly expensive. So therefore, whether it is the domestic institutional investor or whether

0: बाजार है, इसमें आप जो एशियाई शेयर बाजार है उस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी कि किस तरह से आप इनका प्रदर्शन का अवलोकन कर पा रहे हैं।
1: देखिए जो एशियन मार्केट जिसकी आपने जिक्र की, जापान को कहिए या हैंगसेंग हांगकांग कहिए या सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स को कहिए, सब मार्केट में जो उनकी जो एक्सटर्नल फैक्टर की जो इम्पैक्ट जो है वो काफी अच्छा है। सारे जो मार्केट है एशियन मार्केट, ये मार्केट या जापान कहें या सिंगापुर कहें या हांगकांग कहें या साउथ कोरिया कहें, उनको वो सारे एनर्जी इम्पोर्ट डिपेंडेंस है उनका काफी, जैसे भारत भी एनर्जी सेक्टर इंडिपेंडेंस है, और इस तरफ इस समय जो एनर्जी मार्केट में जो खलबली मची हुई है उसे जिनके स्टॉक मार्केट में वो उसी को वो कैप्चर दिखा रहा है, जो अनसर्टेनिटी और नर्वसनेस दिखा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब तक न ये स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का जो हंगामा चल रहा है जो और एक स्टेबल एक रेजोल्यूशन ये क्राइसिस का जब तक ना एक रेजोल्यूशन एक निर्णय इस तरफ उस तरफ ना होगा, तब तक मैं समझता हूँ एशियाई मार्केट में ये अनस्टेबिलिटी अनिश्चितता का दौर चलता रहेगा।
0: आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में इक्विटी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड की स्थापना को मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह फंड उन छोटे और मध्यम उद्योगों को लंबी अवधि की इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराएगा जिनमें विकास की अच्छी संभावना है और जो अपने कारोबार को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं।
2: ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा। लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड करना ये ग्रोथ फंड का मेजर ऑब्जेक्टिव। प्रोफेशनली मैनेज होगा, जिस तरह से ग्रोथ का पोटेंशियल हो जिन एमएसएमईज में, उन एमएसएमईज को इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। एमएसएमई मिनिस्ट्री प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स प्लस इंडस्ट्री बॉडीज प्लस बैंक्स, इन सब का इनपुट लेके एमएसएमई ग्रोथ फंड को संचालित किया जाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में अनुसंधान योजना मूल्यांकन निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा।
2: देश में जिस तरह से जीडीपी बढ़ रही है 7% 8% के बीच में, लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रही है। देश में बहुत सारे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे लाइंस बन रही है, वाटरवे बने, पोर्ट्स नए बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स नए बन रहे हैं, इन सब का एक यूनिफाइड तरह से प्लानिंग हो उसके लिए पीएम गतिशक्ति पोर्टल प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्षो पहले लागू किया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जो प्लानिंग बनानी हो उस सबको स्टडी करने के लिए एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी निर्माण किया जाएगा।
0: भट्टाचार्य जी, छोटे बड़े एंटरप्राइजेस को सरकार वैसे भी फंड देती है, लेकिन ये किस तरीके से अलग है?
1: देखिए जो ये जो है कि ये उनकी जो इक्विटी को ग्रोथ, इक्विटी का ये मतलब ये हुआ कि अगर जो छोटे और मझले उद्योग जो है उनको इक्विटी की बहुत सख्ती से उनको मिलती है और उनको उनको जिस तरह से उनको इक्विटी के लिए पैसा बटोरना पड़ता है वो काफी कॉस्टली होता है। और ये इससे दो तरह का उनको लाभ होगा। एक तो होगा कि छोटे और मझले उद्योगों को जो इक्विटी के लिए जो पैसा होगा वो कम दामों में कम इंटरेस्ट कॉस्ट में सरकार से मिलेगी। और दूसरी बात यह है क्योंकि इक्विटी होगा इसका मतलब ये है कि और मछली छोटे मछली उद्योग जो इक्विटी इस्तेमाल करके नया उद्योग लगाते हैं उसे उनकी जो नौकरी को बढ़ावा देने की एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में उनको ग्रोथ कराने की उसकी क्षमता जो है वो काफी अच्छी होती है क्योंकि वो उतना ऑटोमेटेड नहीं होते हैं। उससे जो नौकरी की संख्या बढ़ती है और उसके साथ साथ क्योंकि जो छोटे और मझले उद्योग की जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स की जो शेयर है वो करीबन 48% है, 48% मतलब ऑलमोस्ट जो हमारे सारे देश की जो एक्सपोर्ट्स होती है गुड्स की उसके आधा जो एक्सपोर्ट जो होता है वो एमएसएमई सेक्टर करता है। तो अगर उस एमएसएमई सेक्टर को

0: The time will tell that what kind of an impact finally plays out on Indian agriculture in the current year. But right now, kharif output is by and large has been kept unharmed, and rabi output, if indeed the Indian Ocean, the weather movement actually helps douse or contain the impact of the super El Nino, then hopefully we'll be better off.
1: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में देश में ऑटोमोबाइल की वार्षिक खुदरा बिक्री 31.8% बढ़कर 25 लाख इकाई से अधिक हो गई है। यह अब तक का सितंबर महीने का सबसे उत्तम रिकॉर्ड है। सितंबर में सामान्य वाहनों की बिक्री वार्षिक आधार पर 32.1% और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 37.6% तक बढ़ी। इस दौरान दोपहिया वाहनों की बिक्री में 33% और तीन पहिया वाहनों की बिक्री में 22% की वृद्धि हुई है। भट्टाचार्य जी, मैं बहुत संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगी समय की अपनी को देखते हुए।
0: देखिए, जो ग्रोथ जो है वो बहुत ही काफी स्टेबल ग्रोथ है, हाई ग्रोथ है। आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये सितंबर का ग्रोथ पिछले साल जो सितंबर की जो ग्रोथ थी उसमें थोड़ी बहुत हानि पहुंची थी, क्योंकि जीएसटी रेट जो बदले गए थे ना, उसमें काफी थोड़ी बहुत सेल्स जो है वो कम थी, क्योंकि सितंबर 3 का अनाउंसमेंट सितंबर 22 से लागू किया गया था, तो काफी जो सेल्स जो है वो पोस्टपोन हो गई थी। तो इसीलिए मुझे लगता है
2: Services sector growth accelerated to a three-month high in September, led by strong domestic demand and sharp rise in new orders. The seasonally adjusted HSBC India Services PMI Business Activity Index rose to 55.2 last month from 54.1 in August, marking the strongest expansion since June this year. It remained above the 50 mark that separates growth from contraction. And the new merchant discount rate MDR framework will come into effect from the 15th of this month. National Payments Corporation of India has said street vendors receiving up to 1 lakh rupees per month through UPI QR codes under the person-to-person merchant category will continue to enjoy zero MDR on all transactions. And global crude oil prices declined today. Brent crude was trading 2.4% down at $97.93 per barrel. West Texas Intermediate was trading over 2.4% lower at $87.25 per barrel at the time of writing this report. AKB, thank you so much for having joined us. And
1: बहुत धन्यवाद भट्टाचार्य जी कार्यक्रम में आने के लिए।
0: और थैंक यू
1: जी, जाते जाते एक नजर आर्थिक सुर्खियों पर।
2: यस, द बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज गेन नियरली 1%, सेंसेक्स सर्ज इज ओवर 650 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 22,750, द कैबिनेट अप्रूव्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज फंड फॉर लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एंड वर्ल्ड बैंक रेजेस इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन टू 7.1% फॉर द करंट फिस्कल। एंड That's all we have in this edition of Market Mantra from the entire team here. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्र का रिपीट ब्रॉडकास्ट. ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है. तामिले इरशाद, ये प्रोग्राम लेकर आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है. आप सभी को मेरा आदाब. जो आला जर्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुबह ही सरनिगु होकर भरा करती है पैमाने.

मोहम्मद रफी की आवाज में ये नगमा था आनमिर ओ सजना फिल्म का आनंद बख्शी का लिखा हुआ, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। सुनने के मुंतजर थे घंटाघर चौक खंड बसे संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया और संप्रीत पंचोलिया। और ही फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधर रामटेके और शव्य रामटेके का। इसी नगमे को सुनना चाहते थे अलीका डब्वाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार और कुलदीप गांधी। और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा का। और आप हैं प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा एमपी से आनंद जोशी, तनुजा जोशी और फाल्गुनी जोशी। इसी नगमे को सुनना चाहते थे पोर्टेगल अध्यक्ष से संजय साहू, सुजाता साहू और सीमा साहू और अहले खाना। और ये फरमाइश ईमेल मौसूल हुआ सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा का। बड़ा ही खूबसूरत ईमेल, रंग बिरंगा। और खास बात यह कि उर्दू और हिंदी दोनों में आपने ये ईमेल हमें रिसाल किया, बहुत शुक्रिया आपका। और अगला ईमेल मिला है सुरेश नारंग, आशु नारंग और विनोदपुरी का। सहारनपुर से आपने फरमाइश हमें रिसाल की है। और आप हैं जालना शहर से सागर माटोले, रेणुका माटोले और लक्ष्मी माटोले। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। और जिस नगमे की फरमाइश आपने की है थोड़ा सा उसके लिए आपको इंतजार कराएंगे। फिलहाल एक नगमा हमने आपकी नजर किया है। और बिशनपुर गिरडी झारखंड से सुनने के मुतमन्नी थे इस नगमे को हिना साबरी, आयजल इमाम और मोहम्मद हसन इमाम। राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन की फरमाइश मुल्लापुर दाखा से थी। और आप हैं अलीका डब्बाली से वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं। और अगला ईमेल किसका है जी देखना चाहेंगे। करनाल से बलविंदर सिंह सोढ़ी साहब। और ये फरमाइश मिली है पिंजौर से चंद्रमोहन और इंद्र मोहन की। और फरुखाबाद साहब गंचौराहा यूपी से हैं, सरोज चौरसिया, सुरेश चौरसिया और एसएस चौरसिया। और इसी नगमे को सुनने के मुंतजर थे उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी और गीतिका खोरवाल। और ये फरमाइश मिली ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय मेरा जहां के आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और अब आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में ये दो गाना है। फिल्म है मस्ताना, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। सुनने के मुतमन्नी है दानकी रोड उमरखेड़ से रजा खान, शबाना बेगम, जावेद खान। पश्चिम थोक गंज डुंडवारा से फरमाइश की मनोवर अल्लाह, पीरजादा, नसीन मिर्जा और अरबाज शहबाज ने। और टैगोर गार्डन नई दिल्ली से सुनने के मुंतजर इस नगमे को रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। मास्टर विट्ठल सुरोशी, मायरा सुरोशी और सुषमा सुरोशी की फरमाइश है काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से। और ये फरमाइश मिली है इसमें ईमेल आईडी किसी और की है और फरमाइश किसी और की, इसलिए माजरत चाहते हैं ये ईमेल हम शामिल नहीं कर पाएंगे। और अगले मेल लेते हैं किशोर नगर अमरावती से हीरावन शिंडे, शीला देवी शिंडे। और अगला नगमा आपकी नजर करते हैं, आप हैं दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी। अफजालता शाहीन सुल्ताना, मोहम्मद अफजाल मलिक की फरमाइश कोल सिटी बरकाकाना से मिली है। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शादाब खत्री। और ये फरमाइश ईमेल मिला है समर्थ रजक, संतोष रजक और रौनक का। और आपने बर्गी डैम कॉलोनी से ये फरमाइश हमें इरसाल की है। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं सावर रोड गंज टंडवा से मोहम्मद उस्मान अंसारी और उनके कुछ और साथी। रंजीत पुनकर, करण रंजीत पुनकर इनका पूरा नाम है, आसेगांव बाजार महाराष्ट्र से आपकी फरमाइश है। और पारस अकोला महाराष्ट्र से संतोष धर्मकार, गीता भूषण और उनके कुछ और साथी। गणेश मेघवाल, चंपा मेघवाल, मधुबाला की फरमाइश है धुंडाडा ओसियां जिला जोधपुर राजस्थान से। अगला ईमेल सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र और अभिषेक बिजारनिया का है, खारिया ढाणी सिरसा हरियाणा से। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं पश्चिम व्या दिल्ली से नीरज चक्रवाल, सचिन अग्रवाल,
डीके अलवी। और अगला ही मेल रिपीट है, इसको करते हैं साइड लाइन। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबी, राधिका गजबी, तन्मय गजबी और किशन सबकाल, आशा सबकाल, विशाल सबकाल, शास्त्री नगर बी डी शहर से सुनना चाहते हैं इस नगमे को। सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से शुभम वडतकर, आज अकेले अकेले हैं जनाब, सबको कर दिया है इन्होंने साइड लाइन। किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी और अनुराग मोहन, और ये फरमाइशी मेल मिला है। कालेमल्ला कोपरगांव से रामचंद्र रावकर, अनुरावकर और रोहित रावकर का इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया। मुझे लगता है काफी ईमेल हमने शामिल कर लिए हैं, तो अब नगमे के बारे है जनाब, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये खूबसूरत नगमा।

गीत तो जनाब हमने बहुत उम्दा छेड़े हैं और वक्त है अभी जनाब, अभी तो शुरुआत हुई है, आप हमारे साथ बने रहिए और आप तक ऐसे ही नगमे हम पहुंचाते रहेंगे। अगला नगमा किशोर कुमार की आवाज में अनोखी अदा फिल्म का नगमा है और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है। जहां तक फरमाइश की बात है तो काफी दोस्तों ने फरमाइश की है, उनके नाम हम शामिल कर लेते हैं जनाब। थोड़ा सा हम इसका भी रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद फिर शामिल करेंगे। जी हाँ, ये फरमाइश मेल मिला है शाहनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर और बीबी प्रियांशी का है, इसी नखमे को सुनना चाहते हैं। मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा और आप हैं मोहम्मद इसाक, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद अल्ताफ, छत्तीसगढ़ चोड़ी लाइन मुंगेली से आपकी फरमाइश हमें मिली है। यादव माला सनामा से दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार और योगेश मालाकार इसी नगमे को सुनने के मुतमन्नी हैं। गजन अनियले, नवदीप एले, सुशील एले, सिद्धार्थ नगर देरापुर बाबली से, शेरवानी स्कूल गंज डिंडवा से आफ्ताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर मास्टर और अगला ईमेल कोलकाता से मिला है सुब्रत चौधरी साहब का। और मुबारकबाद दे रहे हैं जनाब, 8 विकेट से वेस्ट इंडीज को हरा दिया है और काफी तारीफें लिखकर भेजी खिलाड़ियों की, हौसला अफजाई तो होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है और आज तो चक दे इंडिया वाली बात हो गई। चलिए जनाब बहुत शुक्रिया और अब आगे बढ़ते हैं, एक और ईमेल शामिल कर लेते हैं। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा, साथ में बिमला अनेजा हैं और चंद्रेश गौर, वंदना गौर, जयपाल यादव की फरमाइश अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से हैं। और आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम बेंडे और ये फरमाइश मिली है। गाड़ियांगा यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे और शैलेश लोखंडे की, सुदर्शन शाह पल्लवी शाह पिरखर की फरमाइश पद्मा टॉकीज नेपा नगर से है। उत्तम गुआ भगत, श्वेता भगत, किशुताशु की फरमाइश पाकुड़ झारखंड से मिली है और सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा साथ में निमित हैं जलालाबाद वेस्ट से इस नगमे को सुनना चाहते हैं। रमेश कटंकर, वैशाली कटंकर और धनंजय कटंकर गांधी बाग अकोला से और ये फरमाइश मिली है। गांव ढोडरी घोटिया मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रमारानी निषाद और निखिल कुमार निषाद की। गंगाधर यमेकर, प्रमोद यमेकर और प्रदीप हैं कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से जो सुनना चाहते हैं यही नगमा। और पटना बिहार से वसीम अकरम, सालिया खातून साथ में गुड़िया खातून, सैदेव दामोदर, सुमित कुमार दामोदर, साधना पवन पाटिल हैं बुल्डाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से और ये फरमाइश मिली है। मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला और आरती सुरलकर की और कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता, शिप्रा गुप्ता सुनना चाहते हैं पिपरिया से इस नगमे को और ये फरमाइश मेल मिला है मेहरनगर उमरखेड़ से। हमारे मुस्तकिल सामईन अभिजीत गौनकर रही, सरिता गौनकर साथ में, अर्जुन गौनकर डुग्गू और कुलस्वामीनी रोड, अच्छा ये दरअसल इनके रेडियो क्लब का नाम है, भवानी चौक से हैं, श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से हरिभाऊ बिडवे, शुभांगी, अनिकेत सोनवड़े और उनके बहुत सारे साथी और ये फरमाइशी मेल मिला है। अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दलका, कुमार गली श्रीरामपुर से और ओम प्रकाश है, अमित और उषा राय हैं कोटवा नारायणपुर बावपट्टी बलियर से। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा।

और अब आपकी नजर करते हैं कश्मीर के गले। फिल्म का दुकाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ एस एच बिहारी। नकमा निगार मौसीकार हैं ओपी नैयर। और सुनने के मुंतजिर हमारे बहुत सारे सामीन, उनके नाम हम शामिल करना चाहेंगे। राजकोट गुजरात से रश्मि जरना और भरत कुमार, और इसी नकमे को सुनना चाहते हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक और ईमेल शामिल कर लेते हैं। अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार की फरमाइश जमशेदपुर से मौसूल हुई है। अगले नकमे को आप भी सुनना चाहते हैं। दत्तरेंगे भाटापरा छत्तीसगढ़ के सामिन हीरामणि वर्मा और साथ में पारसमणि वर्मा, और ये फरमाइश ईमेल मिला है एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुरान, लव्य खुराना का, और आप हैं ऊंचे गांव नांदेड़ महाराष्ट्र से देवन शिंदे पाटिल। नूरमहल मैसोल सीतामणि बिहार से मुसरत जहानाज, तलत जहानाज और फरत जहां नाज। बगबुआ पथरिया से नरे नेताम, कुसुम नेताम भी सुनना चाहते हैं इसी नकमे को, और ये फरमाइश है चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा की। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखिंदर सिंह जौड़ा, सीटी देवाना और गुरुवंश सिंह जौड़ा।

0: कश्मीर की कली फिल्म का नाम आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। सालम तमिल शायद प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। यह प्रोग्राम अभी जारी है। आइए पहले सुनते हैं खबरें बरे सगीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन और उसके बाद सिलसिला जारी रहेगा आपके पसंदीदा प्रोग्राम का।
1: ये आकाशवाणी है बरे सगीर की खबरों के साथ मैं तौहीद हक्कानी। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत ने कसीर रुखी मनसूबा बंदी को बरुए कार लाने के लिए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की मरबूत अथॉरिटी कायम करने को मंजूरी दी है। उसने छोटे और मुतवस्सित कारोबारों के तरक्याती फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने इन फैसलों की ये कहते हुए सताइश की है कि इनसे एमएसएमई शोबे को खास तौर से फरोग हासिल होगा। मरकजी काबीना ने सरबराहाने हुकूमत की हैसियत से क्यादत के मुसलसल 25 बरस मुकम्मल करने पर वजीर आजम नरेन्द्र मोदी को मुबारकबाद दी है। वजारत दिफा ने भारतीय बहरिये के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर्स की सरकारी खरीद के लिए 660 करोड़ रुपए के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल के 5 असेंबली हलकों और आसाम में नागांव लोकसभा सीट के जिमनी चुनाव की पोलिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गई है। वोटों की गिनती जुमे के रोज होगी। और बेल्जियम में पैदा हुए साइंसदान फ्रांसिस हालजेन को फिजिक्स में 2026 के नोबेल इनाम से नवाजा गया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने मरबूत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक अथॉरिटी के क्याम को मंजूरी दे दी है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की सदारत में हुई काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि ऐसे में जब मुल्क की मजमू घरेलू पैदावार GDP 7-8% की शरह से तरक्की कर रही है, लॉजिस्टिक्स के लिए मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मुल्क भर में कई शाहराहें, रेलवे लाइनें, आबी गुजरगाहें, हवाई अड्डे और नई बंदरगाहें तैयार की जा रही हैं। मरबूत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी अगले 10 साल को मद्देनजर रखते हुए तवील मुद्दती कौमी ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान तैयार करेगी। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि यह इदारा मुल्क में मरबूत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी के आला तरीन इदारे के तौर पर काम करेगा। काबीना ने छोटी और दरमियानी दर्जे की कंपनियों में सरमायाकारी के लिए 10,000 करोड़ रुपए के छोटे और दरमियानी दर्जे की कंपनियों के तरक्याती फंड के क्याम को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि ये फंड कारोबार के काबिल और फलने फूलने की हामिल आला कदर वाली छोटी और दरमियानी दर्जे की कंपनियों के लिए तवील मुद्दती सरमाया फराहम करेगा। इसके अलावा ये फंड खिदमात, टेक्नोलॉजी, इख्तरा पर मबनी शोबों और स्ट्रेटेजिक वैल्यू चेन की भी मदद करेगा। काबीना ने हुकूमत के सरबराह के तौर पर 25 बरस मुकम्मल करने पर जोर पर वजीर आजम नरेन्द्र मोदी को मुबारकबाद पेश करने वाली करारदाद को भी मंजूरी दी। जनाब मोदी साल 2014 में वजीर आजम बने और कल वो हुकूमती सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल करेंगे। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की 25 साल मुद्दत कार भारतीय जमहूरियत के इस्तेहकाम की गवाह है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि काबीना मीटिंग में लिए गए फैसले एमएसएमई शोबे और अगली नस्ल के भारतीय सनती रहनुमा तैयार करने में अहम कदम हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ये फैसले एसएमईज को फलने फूलने, जदीद टेक्नोलॉजियों से हम आहंग होने, मैन्युफैक्चरिंग को वसत देने, आलमी बाजारों में पहुंच बनाने और आलमी वैल्यू चेन से मरबूत होने के प्लेटफॉर्म की पेशकश करते हैं। वजारत दिफा ने भारतीय बहरिये के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर्स की सरकारी खरीद के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से ज्यादा के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहदे पर अंदरून मुल्क डिजाइन करदा, तैयार करदा और मैन्युफैक्चर किए गए साजो सामान को खरीदने के तहत नई दिल्ली में दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। कम से कम 68% अंदरून मुल्क तैयार करदा साजो सामान के साथ ये प्रोजेक्ट एमएसएमई समेत मुख्तलिफ भारतीय सनतों की सरगर्म शमूलियत की हौसला अफजाई करता है। وزارت نے کہا کہ 3 برس سے زیادہ کے عرصے میں یہ پروجیکٹ روزگار کے مواقع پیدا کرے گا. یہ بھارتی بحری سیکیورٹی ڈھانچے اور دفاعی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ اندرون ملک جدید ٹیکنالوجی کے سلسلے میں جاری کوششوں کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا. دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے دیسی ساخت کے تیار کردہ ہائی آلٹیٹیوڈ پلیٹ فارم ایچ اے پی ایس کی کامیاب آزمائشی پرواز مکمل کی ہے. وزارت دفاع نے بتایا کہ بھارتی فضائیہ سینٹر فار ملٹری ایئر وردینس اینڈ سرٹیفیکیشن شہری ہوابازی کے ڈائریکٹریٹ جنرل

तुमसा नहीं देखा फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगारते साहिर लुधियानवी, मौसीकी ओपन अयर साहब की थी और सुनने के ख्वाहिशमंद थे हमारे बहुत सारे सामीन। अखिलेश दीवान एमपी से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी और दिलीप कुमार, और इसी नगमे को सुन रहे थे मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, पदमपुर श्रीगंगानगर राजस्थान से। और कुछ और दोस्त बस अभी शामिल करते हैं, थोड़ा सा हम इसको रिफ्रेश करते हैं। पुराना तालाब डुमरा से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मना अंसारी, मोहम्मद सुल्तान अंसारी की फरमाइश भी थी और आप हैं। मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अनिकेत भटकर और मोहम्मद रुकनुद्दीन मंडाल, शब्बीर बनट्टी, आसिफ इकबाल की फरमाइश गुलबर्गा कर्नाटक से मिली थी। इसी नगमे को सुनना चाहते थे नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा महाराष्ट्र से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल, और मारा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, नबीद हसन अब्बासी, आनम यशफ अब्बासी की फरमाइश भी थी। और आप हैं शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल और दुर्गेश्वरी जायसवाल, येताला नांदेड़ से। और अगला ईमेल रिपीट है, इसको करते हैं साइडलाइन। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से फरमाइश की थी यशमीत यशु, निरंजन सिंह और सौम्या सिंह अविरल ने। और आप हैं छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और आसलगांव बुल्डाना महाराष्ट्र से राजू माठे, गजानन माठे, ज्ञानेश्वर माठे की फरमाइश भी थी। और इसी नगमे को सुनना चाहते थे पाकुड़ झारखंड से उत्तम का भगत, श्वेता भगत, किशु ताशु और भागलपुर उस्तू से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल की फरमाइश भी थी। और आप हैं नई बस्ती गंज टनवार से मोहम्मद यासीन हाशमी, मोहम्मद आसिफ हाशमी और अहल खाना। और अगला मेल रिपीट हो गया, इसको भी साइडलाइन कर देते हैं। गाढ़ा थाना पंजाब

से हरजिंदर छिंदा जसवी जस्सी और सीता की फरमाइश भी थी और आप हैं अल्तमश समीना और मुदस्सर जुम्मा नगर खंडवा से। तामिशात प्रोग्राम का अगला नगमा आप तमाम सामिन की नजर महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म है जब याद किसी की आती है, मदन मोहन की यह मौसीकी सुनना चाहते हैं। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम वंदना कुमार डॉक्टर वंदना कुमार माफ कीजिएगा और साथ में बिट्टू कुमार भी हैं और इसी नगमे की फरमाइश गुरप्रीत सिंह तंगोरे जसबीर कौर और सहजप्रीत कौर ने की मोहाली चंडीगढ़ से। सहजप्रीत सिंह दरअसल इनका नाम है और कवाईबारा राजस्थान से सती श्रीवास्तव प्रेमलता श्रीवास्तव और अभिषेक भी सुनना चाहते हैं। इसी नगमे की फरमाइश आपने भी की है। आप हैं जमाने गाजीपुर से सुरेश जायसवाल उर्मिला जायसवाल और दीपक जायसवाल जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान मोहिनी चौहान और कल्पित की फरमाइश पे और अगला ईमेल मिला है न्यू केशव नगर उदयपुर से कोमल भारद्वाज अनुषा भारद्वाज शांतनु भारद्वाज का और भाटापारा छत्तीसगढ़ से बचकामल डॉक्टर बसंत फिरगू और साथ में मोतीलाल यादव पीएस नाहौकर निर्मला नाहौकर विशाल की फरमाइश है। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पोषण बंचो चंद किरण और छाया बंचो हैं पहरा दुर्ग छत्तीसगढ़ से और ये फरमाइश मिली है। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिना से और साजिद शाहिद की बबलेश पवार डेनी पवार मास्टर मनीष है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से और ये फरमाइश ईमेल मिला है। गांव जाखोज से शमुदयाल खटक विमला देवी और दीपक कुमार खटक का रोशन लाल देवांगन कौशल्य देवांगन हेमलता देवांगन ने भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से प्रेम सिंह जोड़ा मंजीत कौर जोड़ा करणवीर करण की फरमाइश मिली है करणवीर हाउस भुचो कैचा बठिंडा पंजाब से। और आप हैं साईनगर आरबी महाराष्ट्र से नरेंद्र मिर्गे प्रियदर्शी मिर्गे डॉक्टर प्रियंका काल पांडे और अगला ईमेल मिला है खान मंजिल गंज डुंडवारा से आगा खान आगा ऊद खान और बेबी अमल खान का और सतबाड़ा यूपी से सलोनी चौरसिया सुबोध चौरसिया और पूजा पिंकी चौरसिया डॉक्टर गजेंद्र कुमार पद्मावती कुमार मधुरा हैं अकोला महाराष्ट्र से सुनने के मंतजर अगले नगमे को गांव बिटोडा भोयर तहसील मंगरूल पीर वाशिम पश्चिम विदर्भ से योगीराज मस्के श्रीहरि मस्के और इंदुमती मल्हार और उनके बहुत सारे साथी विनोद मंडलकर वीना मंडलकर और विविधा मंडलकर हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। तेलंगाना निजामाबाद से फरमाइश की शेख अल्लाह बख्श बेगम रावे शेख शेख रहीम मुन्ना ने और अगला ईमेल टोरोवाल नवाशहर से मिला है गगनदीप ठांडी तृप्ता कुमारी ठांडी डॉक्टर प्रियंका ठांडी का और साथ में कुछ और साथी भी हैं। अगले ईमेल रिपीट है इसको करते हैं साइडलाइन और ये फरमाइश मिली है सौरभ निषाद प्रकाश निषाद बल्लू निषाद की रायगढ़ छत्तीसगढ़ से और तेलंगाना भोंगी से मोहम्मद बुरहानुद्दीन साथ में मोहम्मद यूसुफुद्दीन और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहिब साथ में कुलदीप सिंह होरा और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शरीश गहनकर एकांत सुमित गहनकर और अहले खाना हमारी महाराष्ट्र से फरमाइश की अनूप कुमार और उद्धव पाटिल ने। तो आइए सुनते प्रोग्राम का अगला नगमा।

राजा मेहदी अली खां का लिखा हुआ ये नगमा आपने सुना, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म थी जब याद किसी की आती है। अगला नगमा आप तमाम सामेन की नजर, मांगनवाड़ी महाराष्ट्र से। वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं इसमें मुख्तलिफ नाम है और सब किसी न किसी ईमेल में शामिल हो चुके हैं, तो लिहाजा इसको साइड लाइन करते हैं। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया की फरमाइश बागपत यूपी से मिली और आप हैं मुमताज मोहल्ला नवगछिया से, इसराइल अंसारी।

नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश पाटिल और अहले खाना गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, लेवाई छत्तीसगढ़ से इंतजार अंजुम साथ में है आलमारा जाफरगंज जहानाबाद बिहार से और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिरा परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा बिशनपुर गिरडी झारखंड से, प्रदय नगर सिद्धपुरा टाउन से फरमाइश की है जुबैर अली खान, सबिया जुबैर और अंजुमन खान ने। तानिशाद प्रोग्राम का अगला नगमा आपकी नज़्म करते हैं, आपने जॉन डी कैस्टो, रोजी डी कैस्टो साथ में विलिस जनकपुरी सहारनपुर से और इंदिरा चौक दिल्ली से फरमाइश की अजीम वकार, निशा अजीम, माहिर अजीम ने और आप हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक और अहले खाना लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से। खेल बाजार पानीपत से सुनना चाहते हैं इस नगमे को नरेश मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, अनिल कटारिया और ये फरमाइशी मेल बठिंडा रोड मंडी डबाली से मिला राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग का और ये फरमाइश ईमेल चमनपुरा उदयपुर से मिला है सबिया खाना, फरीदा बानो और अहले खाना का। नास पैलेस अजमेर शरीफ राजस्थान से हैं सैयद आलम हाशमी, गुल्लास सलमा हाशमी, मोहम्मद आलम हाशमी भी साथ में शामिल हैं और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं विरमगाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रेमला भावसार और भावेश कुमार भावसार और इसी नगमे की फरमाइश आपने भी की। आप हैं महादेव घाट अमलेश्वर के सामीन डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, ज्योति और उनके कुछ और साथी। अगला मेल रिपीट हो गया, इसको करते हैं साइड लाइन। कस्बा बराड़ा अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर साथ में जयप्रकाश राहुल, सांगली जतशहर से अल्ताफ हुजे, सैफुल्ला और सबाखत हुजरे और ये फरमाइश मिली सीमा गांधी और मनोहर गांधी की सिटी सेंटर गाजियाबाद से। मोहनपुर कमालगंज फरुखाबाद से सुनना चाहते हैं इस नगमे को तस्नीम अहमद फारूकी और अयान अहमद फारूकी।

फैमिली शायद प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश आप तमाम सामिन की नजर। नथुराम शर्मा, ललित शर्मा, इंदिराज शर्मा हैं, मंडी हरजी राम मलोट से, और ये फरमाइश ईमेल मिला है। शिवाजी चौक कटनी से अनिल तामरकार, अमरता तामरकार और विपिन गुप्ता और उनके बहुत सारे साथियों का, और आप हैं विजेंद्र विश्वकर्मा, तारादेवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, बन्ने बुजुर्ग पलेरी पलेरा टीकमगढ़ से, और सुभाष योगी, राजू मिगलानी, बब्बू टप्पू हैं कृष्णा कॉलोनी हांसी से। इसी नाक में सुनना चाहते हैं गंज डिंडवारा यूपी से मास्टर खिलू परवेज, बेगम इमरान अनाज, साथ में नवाजी शेख, और ये फरमाइश मिली है नाभा पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव और गुरमंत कौर मनु की। और इसी नगमे को सुनने के मतमन्नी है किशोर वानखेड़े, उषा वानखेड़े, विशाल वानखेड़े, चांदूर बिस्वा बुल्डाना महाराष्ट्र से, और सिमगा छत्तीसगढ़ से रमेश कुमार यादव, माया देवी, साथ में कोमल यादव। थाना रोड बक्सर से फरमाइश की ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता ने, और गांव नथाना ये पहले शामिल हो चुके हमारे दोस्त। आगे बढ़ते हैं आदर्श नगर मलोर पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, साथ में निवान शर्मा और विजय महोबिया, कविता महोबिया, पेंटर बाबू हैं। रामगंज खंडवा से आपकी फरमाइश मिली है हमें, और अगला ईमेल हमें मौसूल हुआ है, काफी नीचे जाकर ये मिलेगा जनाब, बालकेश्वर कॉलोनी आगरा से हैं सरिता चौरसिया, सुमित चौरसिया और वीर चौरसिया। चिरमिरकुरा से काली से इंदभान सिंह, अनुभव सिंह, साथ में हैं उनके ऋषभ सिंह, नाना डोंगर दीवे, रमताई डोंगर दीवे, राहुल डोंगर दीवे हैं, टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से, और मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, मुरादाबाद के दुल्हापुर गांव से आपने फरमाइश की, अस्तुपुरा जिला मऊ से मदर अली अंसारी, रजबेगम अंसारी, मोहम्मद सादे।

और उनके कुछ और साथी बैलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ से शिव प्रसाद देवदास, मोहित कुमार और साथ में युवती देवदास और उनके कुछ और साथी हराबो मटकरी बरेली से शारून अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी और पटेले रोड गंज चटनवा से खरी कुरेशी, नुसरत बेगम, बेबी अरिबा हबीबा की फरमाइश भी हुई है मुकम्मल और लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह साथ में गुरनूर और उनके बहुत सारे साथी। और यह प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आरती फिल्म से।

नागपुर महाराष्ट्र से कमल सानी, पिंकी सानी और डॉक्टर अफजाल मलिक। कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, साथ में ओंकार गायकवाड़।

श्री 420 फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजों में, और लिजा सोनिया मन्ना डे का गाया हुआ प्यार का सागर फिल्म का ये नगमा।

मिस्टर मिसेज 55 फिल्म का ये नगमा सुन रहे हैं मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में नगमा निगार मशरू सुल्तानपुरी मौसीकी ओपी नैयर की, और ये थी प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल एप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी रेडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। शब के 12:50 हुए हैं, अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप तौहीद हक्कानी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत ने कसीर रुखी मंसूबा बंदी को बरूए कार लाने के लिए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की मरबूत अथॉरिटी कायम करने को मंजूरी दी है। उसने छोटे और मुतवसित कारोबारों के तरक्याती फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए भी मंजूर किए हैं। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने इन फैसलों की ये कहते हुए सताइश की है कि इनसे एमएसएमई शोबे को खासतौर से फरोग हासिल होगा। भारत ने बहीरे अस्वद और आबनाए हुर्मुज में उन तिजारती बहरी जहाजों पर हमले की मजम्मत की है जिसमें 2 गैर मुल्की जहाज रहा हलाक हो गए और भारतीय शहरियों समेत अमले के कई अराकीन जख्मी हो गए। यमन में कल लड़ाई में उस वक्त शिद्दत आ गई जब सऊदी अरब की क्यादत में इतिहादी फोर्सेज ने हौसियों के खिलाफ नई कार्रवाइयां अंजाम दी। भारत ने अफगानिस्तान के इकतदार आला इतिहाद और इलाकाई सालमियत के तई अपनी हिमायत का इजहार किया है और बेल्जियम में पैदा हुए साइंसदान फ्रांसिस हालजेन को फिजिक्स में 2026 के नोबेल इनाम से नवाजा गया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने मरबूत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक अथॉरिटी के क्याम को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की सदारत में हुई काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि ऐसे में जब मुल्क की मजमू घरेलू पैदावार जीडीपी 7 से 8% की शरह से तरक्की कर रही है, लॉजिस्टिक्स के लिए मांग भी लगा

लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मुल्क भर में कई शाहराएं, रेलवे लाइनें, आबी गुजरगाहें, हवाई अड्डे और नई बंदरगाहें तैयार की जा रही हैं। मरबूत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी अगले 10 साल को मद्देनजर रखते हुए तवील मुद्दती कौमी ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लान तैयार करेगी। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि ये इदारा मुल्क में मरबूत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक अथॉरिटी के आला तरीन इदारे के तौर पर काम करेगा। काबीना ने छोटी और दरमियानी दर्जे की कंपनियों में सरमायाकारी के लिए 10,000 करोड़ रूपये के छोटे और दरमियाने दर्जे की कंपनियों के तरक्याती फंड के क्याम को भी मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने कहा कि ये फंड कारोबार के काबिल और फलने फूलने की हामिल आला कदर वाली छोटी और दरमियानी दर्जे की कंपनियों के लिए तवील मुद्दती सरमाया फराहम करेगा। इसके अलावा ये फंड खिदमात, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा पर मबनी शोबों और स्ट्रेटेजिक वैली चेन की भी मदद करेगा। काबीना ने हुकूमत के सरबराह के तौर पर 25 बरस मुकम्मल करने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश करने वाली करारदाद को भी मंजूरी दी। जनाब मोदी साल 2014 में वजीर आजम बने और आज वो हुकूमती सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल कर लेंगे। इत्तलात नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने मजीद कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की 25 साल मुद्दतकार भारतीय जमहूरियत के इस्तेकाम की गवाह है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि काबीना मीटिंग में लिए गए फैसले एमएसएमई शोबे और अगली नस्ल के भारतीय सनती रहनुमा तैयार करने में अहम कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ये फैसले एसएमईज को फलने फूलने, जदीद टेक्नोलॉजियों से हम आहंग होने, मैन्युफैक्चरिंग को वसत देने, आलमी बाजारों में पहुंच बनाने और आलमी वैल्यू चेन से मरबूत होने के प्लेटफॉर्म की पेशकश करते हैं। वजारत दिफा ने भारतीय बहरे के जहाजों के लिए ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर्स की सरकारी खरीद के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 660 करोड़ रुपए से ज्यादा के एक मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। इस मुआहिदे पर अंदरून मुल्क डिजाइन करदा, तैयार करदा और मैन्युफैक्चरिंग किए गए साज सामान को खरीदने के तहत नई दिल्ली में दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। कम से कम 68% अंदरून मुल्क तैयार करदा साज सामान के साथ ये प्रोजेक्ट एमएसएमई समेत मुख्तलिफ भारतीय सनतों के सरगर्म शमूलियत की हौसला अफजाई करता है। दिफा और तरक्की के इदारे डीआरडीओ ने देसी साख्त के तैयार करदा हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म एचएपीएस की कामयाब आजमाइशी परवाज मुकम्मल की। वजारत दिफा ने बताया कि भारतीय फिजाइया सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दीगर शहरी इदारों के तालमेल के साथ यह आजमाइश अंजाम दी गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कामयाब आजमाइशी परवाज पर डीआरडीओ टीम को मुबारकबाद दी। तमिलनाडु, पुडुचेरी और मगरबी बंगाल की 5 असेंबली सीटों और आसाम की 1 लोकसभा की सीट पर जिमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग पुरअमन तौर पर मुकम्मल हो गई। तमिलनाडु के मदुरांतकम और धारापुरम, पुडुचेरी के तथा चारवादी और मगरबी बंगाल के नंदीग्राम और राजीनगर में वोट डाले गए। आसाम के नागांव लोकसभा सीट में वोटिंग हुई। वोटों की गिनती जुमे को होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। भारत ने बहीर अस्वद और आबनाए हुरमुज में उन तिजारती बहरी जहाजों पर हमलों की मजम्मत की है जिसमें 2 गैर मुल्की जहाज हलाक हो गए और भारतीय शहरियों समेत अमले के कई अराकीन जख्मी हो गए। बहीरे अस्वद में एमवी रोयाद मामदोव पर हुए हमले में 2 गैर मुल्की जहाज रानों की मौत हो गई थी। वजारत खारजा ने कहा कि इस हमले में भारतीय शहरियों समेत अमले के कुछ अराकीन जख्मी भी हुए हैं। रोमानिया के हुकाम ने जख्मी अफराद को बचा लिया और जख्मी लोगों का इलाज जारी है। बहरी जहाज पर सवार 3 भारतीय शहरी जो हमले का हिस्सा थे महफूज हैं। नई दिल्ली में इस मामले में फौरी कार्रवाई करने पर रोमानिया के हुकाम का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका जाती तौर पर ख्याल है कि दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट दुबई की परवाज में ओमान से ताल्लुक रखने वाले मुआविन पायलट की तरफ से किए गए दहशतगर्दाना हमले के लिए ईरान जिम्मेदार है। ट्रंप ने यह बात व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कही। यमन में कल लड़ाई में उस वक्त शिद्दत आ गई जब सऊदी अरब की क्यादत में इत्तेहादी फोर्सेज ने हौसियों के खिलाफ नई कार्रवाई अंजाम दी। सऊदी इत्तेहादी फोर्सेज के मुताबिक उनकी बहरी अफवाज ने जदीद
حدیدہ میں ایک کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ کے ذخائر، دھماکہ خیز مواد سے لیس کشتیوں اور بحری بارودی سرنگوں کو

0: बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सेवा उत्पादन सूचकांक के दायरे को बढ़ाने के लिए कार्य योजना का मसौदा जारी किया है। इसका उद्देश्य मौजूदा कमियों को दूर करना और सेवा क्षेत्र का व्यापक सूचकांक तैयार करना है। मंत्रालय ने कहा कि सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि के मुख्य इंजन के तौर पर स्थापित हो चुका है और देश के सकल मूल्य वर्धन में आधे से ज्यादा योगदान देता है। असम में भारतीय जनता पार्टी ने सिलचर नगर निगम चुनाव में बहुमत हासिल किया है। कल 40 वार्ड के लिए वोट की गिनती हुई। बीजेपी ने इनमें से 3 वार्ड में जीत दर्ज की। इसके अलावा वार्ड नंबर 9 और 20 से बीजेपी के 2 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। इस तरह 42 सदस्यीय नगर निगम में बीजेपी की कुल सीट की संख्या 32 हो गई है। इसके साथ ही पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। वहीं 6 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। कांग्रेस और असम गण परिषद ने 2-2 वार्ड में जीत दर्ज की। विपक्ष के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस मार्च के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली इलाके में नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया है और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध हैं, स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी लोगों से शांति बनाए रखने तथा पुलिस के निर्देश का पालन करने की अपील की गई है। मेघालय सरकार का वाणिज्य उद्योग विभाग कल से 8 अक्टूबर से शिलांग में रिवर्स बायर सेलर मीट का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य मेघालय के छोटे और मझोले कारोबारियों को देश विदेश के खरीदारों से जोड़ना है। मेघालय में करीब 98,000 पंजीकृत एमएसएमई हैं। इस कार्यक्रम में स्थानीय कारोबारियों और खरीदारों के बीच सीधे व्यापारिक संपर्क का मौका मिलेगा। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Union Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing the media in New Delhi yesterday after the cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistics planning in the country. Mr. Vaishnaw said the cabinet has also given its note to the establishment of a 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund for equity investments in small and medium enterprises.
2: इसमें 10,000 करोड़ रुपीस एमएसएमई ग्रोथ फंड विल बी एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल टू एमएसएमईज विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। द फंड विल प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड एमएसएमईज विद नियरली हाफ ऑफ इट्स कॉर्पस एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
3: मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एमएसएमईज जिनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज अभी आ रही है।
1: Prime Minister Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Mr. Modi made the statement while interacting with members of the Global System for Mobile Communications Association, GSMA Board, ahead of the India Mobile Congress scheduled to be held from today until the 10th of this month in New Delhi. Senior BJP leader and Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has criticised the Congress Party and leader of the opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi for repeatedly targeting the Election Commission of India and other constitutional bodies. Talking to the media in New Delhi, Mr. Rijiju said political parties should serve the people.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वक्त हो चला है 1:10 और 7 सेकेंड और श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे का।

0: श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। रात्रि के 2 बजने को है, आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
2: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी वीबीजी रामजी के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन कामों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। इसके अंतर्गत 40 घंटे से अधिक की यात्रा वाली 11 लंबी दूरी की रेलगाड़ियों की पहचान की गई है। इन रेलगाड़ियों में पूरे सफर के दौरान साफ सफाई और यात्री सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल रेलवे को पत्र भेजा है।

विपक्ष के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस मार्च के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली इलाके में नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने कानून के अंतर्गत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इलाके में सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध हैं, स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और सभी लोगों से शांति बनाए रखने तथा पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तैनाती में कथित तौर पर हेरफेर के आरोपों की भी जांच की जाएगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में 8 जगहों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप केंद्र शासित प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। विधि विभाग ने बताया कि यह निर्णय जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद लिया गया। मंत्रिपरिषद ने 22 सितंबर 2026 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। सुबह के 3 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
2: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी यानी VBG रामजी के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन कामों को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। रेलवे ने लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में साफ सफाई और यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। इसके अंतर्गत 40 घंटे से अधिक की यात्रा वाली 11 लंबी दूरी की रेलगाड़ियों की पहचान की गई है। इन रेलगाड़ियों में पूरे सफर के दौरान साफ सफाई और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनल रेलवे को पत्र भेजा है। हरियाणा की अनाज मंडियों में धान की आवक लगातार जारी है। 5 अक्टूबर तक मंडियों में करीब 7,35,000 मीट्रिक टन धान पहुंच चुका है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार खरीद एजेंसियां अब तक 2,57,000 मीट्रिक टन धान खरीद चुकी हैं। केंद्र सरकार ने इस साल हरियाणा से 58 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में देश में ऑटोमोबाइल की वार्षिक खुदरा बिक्री के आधार पर 31.8% बढ़कर 25 लाख से अधिक इकाई हो गई है। सितंबर

0: सामान्य वाहनों की बिक्री वार्षिक आधार पर 32.1% और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 37.6% तक बढ़ी। इस दौरान दो पहिया वाहनों की बिक्री में 33% और तीन पहिया वाहनों की बिक्री में 22% की वृद्धि हुई। विपक्ष के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे इस मार्च के लिए कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के प्रबंध किए गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से वापस जाने की अपील की, लेकिन उन्होंने निर्देश नहीं माना। इसके बाद पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। इन लोगों को दिल्ली के अलग अलग थानों में ले जाया गया है और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 रन बनाए, जबकि ईशान किशन 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The UN Cabinet has approved the setting up of the Integrated Transport and Logistics Authority to streamline multimodal planning. Briefing the media in New Delhi after the Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the body will prepare a long-term national transport master plan with a horizon of 10 years. He said it will serve as the apex body for integrated transport and logistics planning in the country. Mr. Vaishnaw said that the Cabinet has also given its nod to the establishment of a 10,000 crore rupees small and medium enterprises growth fund for equity investments in small and medium enterprises.
2: इसमें 10,000 करोड़ रुपीस एमएसएमई ग्रोथ फंड विल बी एस्टैब्लिश टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल टू एमएसएमईज विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। द फंड विल प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड एमएसएमईज विद नियरली हाफ ऑफ इट्स कॉर्पस एक्सपेक्टेड टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर।
3: मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एमएसएमईज जिनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी आ रही है।
1: Prime Minister Modi has emphasized that technology must become a tool for inclusive and sustainable development. Mr. Modi made the statement while interacting with members of the Global System for Mobile Communications Association, GSMA board, ahead of the India Mobile Congress, scheduled to be held from today until the 10th of this month in New Delhi. The government has notified the schedule of permissible works under the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen Act 2025, providing for 375 permissible works under the new Rural Works Framework. The Ministry of Rural Development said that the new schedule of works have been reorganized around 4 thematic pillars, including water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure and special works for extreme weather events and disaster preparedness. With regard to the opposition protest, the Election Commission said that no political party had sought an appointment to meet it before 4 p.m. In a statement, the Commission said that around 4 p.m, Delhi Police informed the Commission that a delegation of about 240 MPs led by Rahul Gandhi wanted to meet the Commission and a summit, a memorandum at the Parliament House Annex. The ECI called the request unusual and declined it and said that as per its protocol, such meetings are held only at the Commission's premises. Delhi Police said that no Commission was sought or granted for the opposition march. It said that in view of this, Section 163 of the BNSS was imposed in New Delhi and protesters were asked to disperse. Delhi Police said to control the situation and maintain the law and order, it detained the protesters in accordance with the law. The police said that the situation is being monitored and people have been urged to maintain peace and follow police instructions.

बेगम अख्तर की आवाज में गई इस गजल के बाद सुनेंगे पंकज उदास को गजल एक नया चांद में।

गजल। मैं अभी आप सुन रहे थे चित्रा सिंह की आवाज में गजल, और अब आपके लिए हम लेकर आए हैं जगी सिंह को। गजल है हर तरफ हर जगह है।

0: मैं हारिका सिन्हा की आवाज में इस गजल के साथ ही आज का गजल हुआ कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIL लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे एस सिद्धार्थ का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए आपको सुनवाते हैं पुरंदर दास की रचना जया जानकी कांता।

0: साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।

यही आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे लय विन्यास ताल वाद्य कचहरी। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे आदि तालम, तीन ताल और विलंबित और द्रुत ताल में निबद्ध है। प्रतिभागी कलाकार हैं मृदंगम पर MV चंद्रशेखर, वायलिन पर R श्रीधर, घटम पर N कनन, तबले पर बाबर लतीफ, पखावज पर मोहन श्याम शर्मा और सारंगी पर एहसान अली।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मेरी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आश्विन मास की 15वीं तिथि तदनुसार 7 अक्टूबर 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आज आप सुनेंगे योग अर्ध मत्स्येन्द्रासन के बारे में। 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति गीत का। 5:30 सुनेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन, कलाकार होंगी सुधा माथुर, आप प्रस्तुत करेंगी राग यमनी बिलावल। उसके 10 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर चिंतन में आज सुनिएगा नेल्सन मंडेला के विचार। 6:45 का समय रहेगा रामचरितमानस से पाठ का। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 71। 7:10 पर संगीतिका के अंतर्गत आज आप सुनेंगे संयुक्ता मुखर्जी के गाय भजन। 7:30 गीतों भरी गुड मॉर्निंग आप सुन सकेंगे। 8:45 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम सुरंग प्रसारित किया जाएगा। आप सुनेंगे गायन, कलाकार होंगी अनिशा रे जो प्रस्तुत करेंगी राग नट भैरव। 9:15 पर सुनेगा कार्यक्रम साइंस मैगजीन। 9:30 मटेरी महक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 10:00 पर सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:10 पर सवरस प्रसारित किया जाएगा। 11:30 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी सुनेगा। आगे सुनेंगे दिव्यांश श्रीवास्तव का संतूर वादन। 7:00 ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:00 वाले कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: It's a bit

जंपा गुण बिमल सो जान जान के रे अमे नाम जाको फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन पुर धरिया हर नाम रस के गोविंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कवि कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे छुटत परवाह अमे अमरा पदे अमृत सरोवर साध परे।

जिन्हो सेवा करिया तिन पौनवार अन पद दीना शब्द मात्र ते उतार तरे कवि कल ठाकुर हर दास तने गुरु रामदास हर अपार परे सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कवल सहज पर काश्या अपै निरंजन करहे लहा सतगुर दयाल हर नाम त्रिणाया तिस प्रसाद वस पंच करे कवि कल ठाकुर हर दास तने गुर रामदास हर अपर परे कवि कल ठाकुर हर दास तने गुर रामदास हर अपर

अनुमान अकल लिवलागी पारस पेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे मिटिया जनमान मरण पो भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपार परे अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारे ओ दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत् बिचारे ओ सदा चाहे हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर के प्रसाद सहज छेती रंग माने नानक प्रसाद अंग सुमत गुरु अमर अमर वरताए ओ गुरु रामदास कल उचरे तै

0: Prit pembelina ta satgur shabdayatha ameta rasgutta matamata santokh pita sarsahasmayo ayunne sambhavyo जगत गुर बचन तरायो अवगात अगोचर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल चरा तैं जगत उदारन पायो अवगात अगोचर पर मन गुर शब्द वसायो गुरु रामदास कल चरा तैं जगत उदार न पायो
1: जगत उदार नव निदान भगत पव तारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज तरोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बट भागे ते मुक्ते पे सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उचरे तै शब्द निशान बजायो सेज सदा सह शावान संतोख सराय चौ सदा शीर्ष ना सोह गुरु शब्द समाचरयो नाम टेक संगाद बोह अजोनियो पाला मल सतगुरु संग निवास गुरु रामदास कल उचरे तो सहज सरोवर बास गुरु

चतुर्थ दूर अंतर नास गुर जिनको सो परसन मान अभिमान निवार जिनको गुर सो परसन शब्द लग पव जल तार पर

0: सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग।
1: सतगुर खेमा ताणिया जुग जूत समाणे अनुभव निजा नाम टेक जित भगत काणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे इहो राज जो गुरु रामदास तुमहु रस जाने। जनक सोए जिन जाणिया उन मन रस धरिया सत संसोख समाचरे अपराध सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सुपावे इह जनक राज गुरु रामदास तुझ ही माने आवे।
0: सतगुर नाम एक ले मन जपे धरा तिन जन दुख पाप कहो कत हो जियो तारण तरण खेणा मातर जा को दृष्ट तार शब्द रद विचार काम करो दिखो जियो जियो न सब न दाता अगम ज्ञान देखे आता है न सत्यान तावे पल का न सोवे जियो जाको देख तो जदर जावे नाम सो निदान पावे गुरु मुख ज्ञान दुरो मत मैले तोवे जियो सत गोरे नाम एक मन जपे धरा तिन जन दुख पाप कहे कत होवे जियो। गुरु अर्जुन पर प्रमाण पाथो चाले नहीं नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारो भवजल सहर से नाम हरि का बोता तू सतगुरु समेत नाम लाग जग गुदरियो।
2: एक मन पुरख त्याय बरदाता संत सहार

अमृत छाड़ बिख खाई माया मोह परम पुले सत धारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संगत मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास।

0: व्यास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखू सरना
1: सुकहु टल गुर सेविया पहनिस सहज सो भाए दर्शन परसय गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।

सज्जन सच्चा पातशाह सरशाह दशाह जस पास बैठिया सोहिया सब

सोहिया सब नावे सा